नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के समक्ष अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली स्थित पूसा परिसर में पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस अवसर पर वे देश भर से आए लगभग 17,000 वृक्ष मित्रों से संवाद करेंगे। श्री सिंह वृक्ष मित्रों के साथ पूसा परिसर में वृक्षारोपण अभियान में भी हिस्सा लेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार एक विशाल अभियान में आज 35 करोड़ पौधे लगाएंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ 2026 का शुभारंभ करेंगे। वे एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और आरकेबीके के पास ताल रिंग रोड के किनारे पौधे लगाएंगे। मध्य प्रदेश में आज मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 38वीं मासिक किस्त जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 1,25,00,000 से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित करेंगे। इसके अतिरिक्त 83 करोड़ रुपए से अधिक की 16 नई लोक कल्याणकारी परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2026 के अंतर्गत नियमों का उल्लंघन करने के आरोपों से संबंधित कई उपभोक्ता शिकायतों के बाद स्विगी इंस्टामार्ट को 9 नोटिस जारी किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में FSSAI ने कहा है कि स्विगी को विस्तृत स्पष्टीकरण और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है और ऐसा न करने पर उचित कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। उपभोक्ता शिकायतों में स्विगी इंस्टामार्ट पर उत्पादों के निर्धारित अवधि समाप्त होने, खराब, सड़े, दूषित और अन्य प्रकार के असुरक्षित खाद्य उत्पादों की आपूर्ति का आरोप लगाया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों को अपने पक्ष में करने के जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के आरोप की आलोचना की है। दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि श्री अब्दुल्ला का यह बयान अत्यंत गैर जिम्मेदाराना है और इसकी निंदा की जानी चाहिए। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट कल वियतनाम के फूकवोक द्वीप के पास पलट जाने से 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि मृतकों में 13 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मृतकों की सूची साझा करते हुए कहा कि ये नाम वियतनामी अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। दूतावास के अनुसार मृतकों से 10 तमिलनाडु से और 3 आंध्र प्रदेश से जबकि 2 केरल से थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नागरिकों के साथ हुई दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जलडमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद अमेरिका ने ईरान पर नए हमले शुरू कर दिए हैं। अमेरिकी सेना ने कहा है कि ये हमले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर किए गए। इस बीच ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को अगली सूचना तक बंद कर दिया है। और खेलों में इंग्लैंड ने कल रात साउथैम्पटन में 5वें और अंतिम टी20 क्रिकेट मैच में भारत को 56 रन से हराकर श्रृंखला 4-0 से जीत ली है। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने आज तड़के फ्लोरिडा के मियामी स्टेडियम में नॉर्वे को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में

प्रवेश कर लिया है। स्पेन और फ्रांस पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना चुके हैं। उधर लंदन में कल रात विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में 21 वर्षीय लिंडा नोस्कोवा ने चेक गणराज्य की करोलिना मुकोवा को हराकर महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया। महिला डबल्स के फाइनल में आज गुओ हान्यो और लुइसा स्टेफेनी की जोड़ी का मुकाबला क्रिस्टीना माल्डिनोविच और ग्रेबेलिया डाब्रोवस्की की जोड़ी से होगा। यह मैच शाम 5:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, प्रस्तुत है कार्यक्रम वंदनवार। आज का चिंतन, भर्तृहरि के नीति शतकम के अनुसार धन की केवल तीन ही गति होती है, दान, भोग और नाश। जो मनुष्य धन को परोपकार में नहीं लगाते या स्वयं नहीं भोगते, उनके धन की केवल तीसरी गति होती है, अर्थात धन का विनाश हो जाता है। तात्पर्य ये कि हमें धन का सदुपयोग करना चाहिए। आइए अब सुने भक्ति संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन झरोखा के अंतर्गत सुनिए आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। अब से थोड़ी देर में सुबह 6:35 से सुनेगा श्री रामचरितमानस गान भाग 247। सुबह 6:45 और संध्या 6:45 से आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम संगीत सरिता। इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। आज इस श्रृंखला की 12वीं कड़ी सुनिएगा। कलाकार बांसुरी वादक पंडित रोणु मजुमदार, संवादिका ममता सिंह, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। सुबह 7 से भूले बिसरे गीत 7:30 से सुनिएगा हम है राही प्यार के। सुबह 8:15 से त्रिवेणी, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सुबह 8:30 से चित्रलोक। सुबह 9:30 और रात्रि 9:30 से आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेता राजेंद्र कुमार पर, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।

श्रोताओं, आपको बता दें कि आज सुबह 9:30 से आपको सुनवाएंगे आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेता राजेंद्र कुमार पर। प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। सुबह 10 बजे से पिटारा के अंतर्गत सुनेगा बॉम्बे टॉकीज। इसके अंतर्गत लेखिका निर्देशिका सीमा कपूर से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का पहला भाग, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। सुबह 11 बजे और रात्रि 11 बजे से विविधा के अंतर्गत आपको सुनवाएंगे सेवानिवृत्त केंद्र निदेशक गीतकार और शायर राजेश रेड्डी से यूनुस खान की बातचीत, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। दोपहर 12:05 से यादों की महफिल, दोपहर 1 बजे से सुरीला सफर, दोपहर 2 बजे से आपको सुनवाएंगे त्रिवेणी, 2:30 से आपको सुनवाएंगे सदाबहार नगमे। दोपहर 3 बजे से मन चाहे गीत, दोपहर 3:30 से आपको सुनवाएंगे नाट्य तरंग। इसके अंतर्गत सुनेगा नाटक सूखा पेड़, लेखन लोकेंद्र शर्मा का, निर्देशन लोकेंद्र शर्मा का। शाम 4 बजे से पिटारा के अंतर्गत उजाले उनकी यादों के, इसके अंतर्गत रीमा अमरापुरकर से यूनुस खान की बातचीत का चौथा भाग सुनेगा, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। शाम 5 बजे से छाया गीत का पुनर्प्रसारण। शाम 5:30 से आपको सुनवाएंगे तराने नए पुराने। झरोखा शाम में आप सुनते हैं शाम 6:30 से। शाम 6:35 से संध्या रंजन।

शाम 7 बजे से फौजी साथियों का कार्यक्रम विशेष जयमाला सुनिएगा। इसके अंतर्गत सैनिकों की शौर्य गाथा, इसके अंतर्गत महावीर चक्र से सम्मानित शिपॉय इमलियाकुम एओ की शौर्य गाथा सुनिएगा। शाम 7:45 से इंद्रधनुष के अंतर्गत साज और आवाज में अकॉर्डियन वादन रेवा चंद्र शर्मा का। रात 8 बजे हवा महल के अंतर्गत हास्य नाटिका कॉलोनी कल्याण मंडल, लेखन MP लेले, निर्देशन स्वतंत्र।

कुमार ओझा का चित्रलोक कार्यक्रम रात 8:15 से। रात 9 से आपके लिए रात्रि 9:30 से आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित होगा निर्माता निर्देशक बिमल रॉय पर, प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। रात 10 से छाया गीत आलेख एवं स्वर यूनुस खान का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। और रात 10:30 से सुनेगा ढलती जाए रात। अभी आप सुन रहे थे झरोखा के अंदर कार्यक्रम विवरण। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए रामचरितमानस गान भाग 247।

अगस्त्य मुनि के एक परम ज्ञानी शिष्य थे सुतीक्ष्ण। उन्हें ये विश्वास नहीं होता था कि उन्हें भक्ति, वैराग्य अथवा ज्ञान कुछ भी प्राप्त है। चित्रकूट से पंचवटी जाते हुए श्री राम, सीता तथा लक्ष्मण के दर्शन जब मुनि सुतीक्ष्ण को प्राप्त हुए तो अपने आश्रम में ले आकर उन्होंने अनेक प्रकार से अपने आराध्य की पूजा अर्चना की। फिर भी उन्हें संतोष नहीं होता था कि वे किस प्रकार प्रभु की विनती करें। नील कमल के समान श्री राम का शरीर है, जिस पर मुनियों जैसा वेश और सिर पर जटाओं का मुकुट सुशोभित है। सुतीक्ष्ण की कामना है कि मोह रूपी वन को भस्म करने वाली आग तथा संत रूपी कमलों के वन को प्रफुल्लित करने वाले सूर्य के समान प्रभु सदा मुनिगण की रक्षा करें। संशय रूपी सूर्य को ग्रसने के लिए प्रभु गरुड़ हैं। अत्यंत कठोर तर्क से उपजने वाले विषाद का वो परिष्कार करते हैं। यद्यपि उनका निर्मल, व्यापक तथा अविनाशी रूप भक्तों के हृदय में सदा निवास करता है, फिर भी मुनि सुतीक्ष्ण प्रभु के वनवासी रूप को ही अपने हृदय में बसाना चाहते हैं।

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम श्री रामचरितमानस गान भाग 247।

0: श्रोताओ नमस्कार, संगीत सरिता कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार। आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सिंह। लीजिए सुनिए इस श्रृंखला की 12वीं और अंतिम कड़ी।
1: श्रोताओं नमस्कार, पंडित जी आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
2: नमस्कार
1: पंडित जी, ये जो बांसुरी दिख रही है, पांच तरह की बांसुरी है इसमें, तो ये जो एक तो शंख बांसुरी है
2: जी,
1: और एक सबसे छोटी वाली बांसुरी को क्या कहेंगे?
2: ये हाई तार सप्तक।
1: गजब,
2: यहाँ तक चला गया, इसके ऊपर भी मैं जा सकता हूँ।
1: हाँ।
2: थोड़ी सी शार्प हो जाएगी।
1: अरे गजब,
2: मैं पीछे।
1: हाँ।
2: सिक्किम का जो ये है
1: जी, जी बिल्कुल। हाँ,

0: जी, क्या बात है, बढ़िया। और उससे जो बड़ी वाली है उस वो कौन सी
1: ये
0: है?
1: पन्ना बाबू की बनाई हुई मेन क्लासिकल सोलो इसमें बजता है।
0: जी
1: पन्ना बाबू के बांसुरी जो बनाई है ये, उनको श्रद्धांजलि देते हुए मैं थोड़ा सा हंस ध्वनि आपको सुना रहा
0: जी
1: हूं।
0: जी सुनाए
1: और बंदिश मेरे गुरुजी की है।
0: जी प्लीज
1: कल्पेश भाई आप शुरुआत करिए।

0: वाह, राघवन सिद्ध ध्वनि पे ये बांसुरी की तान थी, अद्भुत थी, मोहित कर दिया, मंत्रमुग्ध कर दिया आपने। तो हम आखिर में विदा के रूप में विदा नहीं करेंगे, बल्कि आप इस कड़ी को, इस श्रृंखला की विदा में आमद करेंगे कि आप फिर आते रहिए।
1: बहुत अच्छी बात कही आपने। हमारे शास्त्रीय संगीत में एक परंपरा है, राग भैरवी से अंत करते हैं
0: जी।
1: आज की कड़ी आखिरी कड़ी है, इसी उम्मीद के साथ जा रहा हूँ कि फिर आना है
0: जी।
1: तो भैरवी में एक जगजीत सिंह जी के भी बहुत सारे सुपरहिट गजलों में मैंने बजाया, उस स्टेज में गाते थे फयाज खान साहब को याद करके
0: जी।

0: अद्भुत तान छेड़ी आपने पंडित जी, और साथ में जो गायन का सुर भी साधा, बड़ा ही मोहक था, बहुत अच्छा लगा। तीन ताल में निबद्ध ये बंदिश थी, अजीत जी ने बड़ी खूबसूरती से इसे अंजाम दिया, और आज ये इस श्रृंखला की आखिरी कड़ी है। अब हमें तो ऐसा लग रहा है कि इस कड़ी को, इस श्रृंखला को खत्म न होने दे, और कड़ियां इसमें जोड़ते जाएं और मालाएं पिरोते जाएं, लेकिन समय की बाध्यता है। तो आज इस आखिरी कड़ी में हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं, सबको धन्यवाद कहते हैं। अजीत पाठक जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बड़े मनोयोग से आपने तबला संगत की, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद, नमस्कार। कल्पेश जी, आपने बहुत ही मोहक ढंग से बांसुरी पर संगत कर रहे थे पंडित जी के साथ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: नमस्कार, धन्यवाद।
0: रोनू दादा, आज इस श्रृंखला में जितनी कड़ियां पिरोई गई हैं, इन कड़ियों में जो बांसुरी की तान आपने छेड़ी है, जो जानकारियां दी हैं, इसके लिए मेरे पास फिलहाल शब्द नहीं है, बस इतना श्रोताओं को बता दें कि ये अद्भुत श्रृंखला है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपका ममता जी, हम लोग भी यहाँ पर आकर बहुत प्रसन्न हुए, और लगा ही नहीं कि कैसे पूरा दिन बीत गया, और हम चाहते हैं कि विविध भारती के स्टूडियो में बार बार आए और इसी तरीके से माँ सरस्वती की सेवा करें।
0: जी, हम सबका सौभाग्य है, पूरे विविध भारती परिवार की ओर से आप सभी का बहुत बहुत आभार, नमस्कार,
2: धन्यवाद।
3: शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। श्रोताओ, संगीत सरिता कार्यक्रम में आज आपने सुनी इस श्रृंखला की 12वीं और अंतिम कड़ी। इस श्रृंखला के लिए आमंत्रित कलाकार थे सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार। आपसे बातचीत की ममता सिंह ने। आपको बता दें, बांसुरी संगत कल्पेश सांचला की और तबला संगति अजीत पाठक की। श्रोताओ, आपको ये श्रृंखला कैसी लगी? हमारे फेसबुक पेज के माध्यम से अपने उद्गार हम तक अवश्य पहुंचाएं। आपको बता दें, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोग

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, भूले बिसरे गीत। इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: भूले बिसरे गीत कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं लता मंगेशकर, मन्ना डे और साथियों की आवाजों में दो बीघा जमीन फिल्म के गाने के साथ। शैलेंद्र के बोल और तर्ज बनाई है सलिल चौधरी ने।

0: सुनिए
1: कहिए
2: सुनिए एक खुशखबरी
1: कहिए ना
2: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
1: शुक्रिया शुक्रिया।
2: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपने पसंद के गाने। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई गांवों में खिली कलियां।
2: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी।
2: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज। सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
1: तुम्हारी याद सताते हैं
2: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। लीजिए अब सुनिए तलत महमूद की आवाज में सुजाता फिल्म का गाना। गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार हैं SD बर्मन।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: और अब आज के भोले पिसे गीत कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवा रहे हैं मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में दारा सिंह फिल्म का ये गाना।

0: इस गीत के साथ ही आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम संपन्न हुआ। अपने दोस्त राजेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: हल्दी के गुणों से भरा वीको टर्मरिक WSO क्रीम, जो आपके चेहरे के कील और मुहासे दूर करे और आपको दे प्राकृतिक सुंदरता।
2: अब सिर्फ 10 रुपए की सैशेट।

0: बैठ में भी। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम के प्रायोजक थे विको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट। मशहूरों में जान तो दांतों की शान, यही है विको की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। हम है रही प्यार के इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में सूरज फिल्म के गाने के साथ। गीतकार हैं हसरत जयपुरी और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
2: सखी सहेली।
3: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में गूंज उठी शहनाई फिल्म का गाना। इसे लिखा है भरत व्यास ने और संगीत से संवारा है वसंत देसाई ने।

लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में ससुराल फिल्म का गाना बोल हैं शैलेंद्र के और तर्ज शंकर जयकिशन की।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच

0: रेन अभियान से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की तीन देशों की यात्रा संपन्न। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ विस्तृत वार्ता के बाद स्वदेश रवाना। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। वियतनाम सरकार ने स्पीड बोट दुर्घटना की जांच के आदेश दिए। दुर्घटना में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत। अमेरिका ने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जल डमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद ईरान पर नए हमले शुरू किए। ईरान ने जल मार्ग को अगली सूचना तक किया बंद। मौसम विभाग ने अगले चार दिन तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। इंग्लैंड ने नॉर्वे को 2-1 से हराकर फीफा विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश किया और लिंडा नोसकोवा ने कैरोलिना मुकोवा को हराकर अपना पहला विंबलडन टेनिस खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। इस दौरान श्री मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ व्यापक बातचीत की। भारत और न्यूजीलैंड ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया है। इस दौरान रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन और डेयरी तथा पशुपालन सहित कई प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। ऑकलैंड में सामुदायिक कार्यक्रम में भारतीय मूल के 10,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। श्री मोदी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और न्यूजीलैंड का भविष्य आपस में जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को विश्वसनीय मित्र बताते हुए न्यूजीलैंड की प्रगति में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की भी उन्होंने प्रशंसा की। श्री मोदी ने श्री लक्सन के शानदार आतिथ्य के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से भारत न्यूजीलैंड संबंधों में एक नया अध्याय शुरू हुआ है। श्री मोदी ने 40 वर्ष बाद भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा के बारे में कहा कि अगली यात्रा में इतना समय नहीं लगेगा।
2: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है। इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है। पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे।
1: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की तीन देशों की यात्रा के महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं। प्रधानमंत्री मोदी की तीन देशों की यात्रा के दौरान भारत ने इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ व्यापार, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा, नवाचार, शिक्षा और लोगों के बीच आपसी संबंधों जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार किया है। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली स्थित पूसा परिसर में पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस अवसर पर वे देश भर से आए लगभग 17,000 वृक्ष मित्रों से संवाद करेंगे। श्री सिंह वृक्ष मित्रों के साथ पूसा परिसर में वृक्षारोपण अभियान में भी हिस्सा लेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की जन केंद्रित विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि गृहमंत्री कार्यक्रम के दौरान अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर में महत्वाकांक्षी सामूहिक पौधारोपण अभियान की शुरुआत भी करेंगे।
3: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने संसदीय क्षेत्र को देश में सबसे हरा भरा बनाने के लिए महत्वाकांक्षी गांधीनगर हरियाली लोकसभा अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, जिसके तहत इस साल गांधीनगर संसदीय क्षेत्र में 1.25 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। इस अभियान के तहत वन विभाग अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में वन कवच मॉडल के माध्यम से लगभग 60 लाख स्वदेशी पौधे लगाएगा, जो त्वरित पर्यावरण सुधार के लिए जापानी मियावाकी पद्धति का गुजराती स्वदेशी संस्करण है। अपने दौरे के आखिरी दिन श्री शाह कल गांधीनगर में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी परिसर में 11वीं इंटरपोल डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट ग्रुप बैठक और पहली अंतर्राष्ट्रीय अन्वेषक अपराध प्रतियोगिता का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वे देहगांव में नवनिर्मित एपीएमसी

0: सब्जी मंडी का भी लोकार्पण करेंगे। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: उत्तर प्रदेश सरकार व्यापक पौधारोपण अभियान के अंतर्गत आज 35 करोड़ पौधे लगाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ 2026 का शुभारंभ करेंगे। वे एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और आरकेबीके के पास ताल रिंग रोड के किनारे पौधे लगाएंगे। एक रिपोर्ट।
2: 27 विभागों के समन्वय से चलाए जाने वाले इस विशाल वृक्षारोपण अभियान में वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग सर्वाधिक 15 करोड़ 50 लाख पौधारोपण करेगा। ग्राम्य विकास विभाग 10 करोड़, कृषि विभाग 3 करोड़ 25 लाख, उद्यान विभाग 1 करोड़ 50 लाख और पंचायती राज विभाग 1 करोड़ 22 लाख पौधे लगाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे भी 5.5 लाख पौधे लगेंगे। महाअभियान 2026 में इस वर्ष समरस वन, समृद्धि वन, कृषि वन, ऊर्जा वन, कपि वन समेत अनेक नवीन वन तैयार किए जाएंगे। महर्षि चरक औषधि वन की शुरुआत 5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस पर की गई है। इस अभियान का प्रमुख हिस्सा मिशन छाया, अविरल धारा पौधारोपण, सहजन भंडारा और आम भंडारा भी होगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित प्रस्तावित विधेयकों की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति ने गोवा में अपनी 2 दिवसीय परामर्श प्रक्रिया पूरी कर ली है। इस दौरान समिति ने राज्य सरकार, राजनीतिक दलों, विधायकों, संवैधानिक विशेषज्ञों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, नागरिक समाज के प्रतिनिधियों और मीडिया से विचार विमर्श किया। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
2: पहले दिन समिति

0: सुशासन को बढ़ावा मिलेगा, चुनावी खर्च कम होगा और बार बार होने वाले चुनावों से होने वाले प्रशासनिक व्यवधान में कमी आएगी। समिति अब अपने राष्ट्रव्यापी परामर्श अभियान के अगले चरण में लखनऊ का दौरा करेगी। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हुन ने फुकवोक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। इस हादसे में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। ये हादसा उस समय हुआ जब 36 लोगों को लेकर जा रही स्पीड बोट फुकवोक द्वीप के पास रटनगोवाई टापू के निकट अचानक ऊंची लहरों की चपेट में आकर पलट गई। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने मृतकों की सूची जारी की है। इनमें 10 लोग तमिलनाडु, 3 आंध्र प्रदेश और 2 केरल के रहने वाले थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जल डमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद अमरीका ने ईरान पर नए हमले शुरू कर दिए हैं। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका की सेना ने कहा है कि हमले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर किए गए हैं। इस बीच ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को अगली सूचना तक बंद कर दिया है। ईरान की नौसेना ने कहा कि इस इलाके में अमेरिका का दखल खत्म होने तक किसी भी जहाज को इस रास्ते से निकलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नौसेना ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य की इस घटना को लेकर अमेरिका की किसी भी कार्रवाई का कड़ा जवाब दिया जाएगा। अमेरिका ईरान से सार्वजनिक रूप से होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर हमला नहीं करने का आश्वासन चाहता है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि तनाव के बावजूद ईरान के साथ बातचीत जारी रहेगी। ईरान ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य उसके नियंत्रण में ही रहेगा और इस मार्ग से गुजरने वाले जहाजों को शुल्क देना होगा। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही के लिए 2 अलग अलग रास्तों का प्रस्ताव दिया है, लेकिन ईरान ने इस तरह के प्रस्ताव को पहले ही खारिज कर दिया था। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिष्ठित पार्श्व गायिका एस जानकी अम्मा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एस जानकी अम्मा का निधन संगीत और संस्कृति जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ मुकेश कुमार बल।
3: फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने आज तड़के फ्लोरिडा में नॉर्वे को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इंग्लैंड के जूड बेलिंगहम ने अतिरिक्त समय में 2 गोल करके इंग्लैंड को जीत दिलाई। इंग्लैंड तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। स्पेन और फ्रांस पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुके हैं। उधर लंदन में कल रात विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में 21 वर्षीय लिंडा नोस्कोवा ने चेक गणराज्य की करोलिना मुकोवा को 6-2, 5-7, 6-3 से हराकर महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। इस बीच पुरुष सिंगल्स के फाइनल में आज विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी यैनिक सिनर का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार आज रात 8:30 से खेला जाएगा। महिला डबल्स के फाइनल में आज 10वीं वरीयता प्राप्त गुओ हान्यू और क्रिस्टीना म्लाडेनोविच की जोड़ी का मुकाबला दूसरी वरीयता प्राप्त गैब्रियला डब्रोवस्की और लुइसा स्टेफनी की जोड़ी से होगा। ये मैच शाम 5:30 से शुरू होगा। और इंग्लैंड ने कल रात साउथहैम्पटन में 5वें और अंतिम T20 क्रिकेट मैच में भारत को 56 रन से हराकर श्रृंखला 4-0 से अपने नाम कर ली है।
1: और अभी अभी प्राप्त समाचार के अनुसार अमेरिका के कंसास में जारी क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड 1-1 गोल से बराबरी पर हैं। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। इनमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश और ओडिशा शामिल हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
4: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाई है। नवभारत टाइम्स ने प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को प्राथमिकता देते हुए लिखा है, आतंकवाद पर बनाएंगे ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप, प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के पीएम के बीच सहमति। पंजाब केसरी ने INS महेंद्रगिरी के जलावतरण पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान को प्रमुखता दी है, भविष्य के युद्ध सिर्फ AI से नहीं सैनिकों के दम पर जीते जाएंगे। जनसत्ता ने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा का बयान दिया है, चढ़ावा चोरी कलंक, व्यवस्था में जल्द सुधार। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर बरसात में बेहाल होते शहरों पर विश्लेषण दिया है। हर बरसात में देश के शहरों में लोग जलभराव और उससे जुड़ी समस्याओं से जूझते हैं। इसके बाद भी नगर निकायों

0: کا کام کرنے کا طور طریقہ نہیں بدلا ہے. اخبار نے لکھا ہے کہ اب یہ ضروری ہو گیا ہے کہ سنسد میں ایک وشیش ستر بلا کر بگڑتے شہری کرن کو سنوارنے کے لیے کوئی سارتھک بحث کی جائے. دینک بھاسکر نے راشٹریہ راجدھانی کے موسم کا مزاج دیا ہے, کمزور پڑا مانسون اب ایک ہفتے جھیلنی پڑے گی گرمی.
1: اور انت میں مکھیہ سماچار ایک بار پھر. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की तीन देशों की यात्रा संपन्न. देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा. वियतनाम सरकार ने स्पीड बोट दुर्घटना की जांच के आदेश दिए, दुर्घटना में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत. अमेरिका ने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जल डमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद ईरान पर नए हमले शुरू किए. ईरान ने जल मार्ग को अगली सूचना तक किया बंद. मौसम विभाग ने अगले चार दिन तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया. और इंग्लैंड ने नॉर्वे को 2-1 से हराकर फीफा विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है. इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ. नमस्कार.

नमस्कार। आज त्रिवेणी में उस तैयारी की बात जो भीड़ में भी अलग से पहचान बनाती है। ये तो सच है कि भीड़ में भी केंद्र बिंदु बन के ज्यादातर तैयारी पहली तैयारी पहनावे की होती है। ये सच है कि सुरुचिपूर्ण पहनावे और रखरखाव से व्यक्तित्व प्रभावशाली बनता है और पहले पहल ध्यान भी आकर्षित करता है। लेकिन असली प्रभाव का पता तब लगता है जब कोई सूटेड बूटेड व्यक्ति या सजी सवरी महिला मुंह खोलते हैं, यानी बात करते हैं। बात करने का सलीका सिर्फ समाज में ही नहीं, घर में भी कमाल का असर दिखाता है। क्रोध में आपाद मस्तक डूबा घर का कोई सदस्य भी प्यार मनुहार से मान जाता है। यही तो है संवाद कौशल, यानी बातचीत का ढंग। बात कहने की कला का मतलब ना तो बातें बनाना है और ना ही बातों में उलझाना है, बल्कि अपनी बात इस तरह रखना है कि सुनने वाले व्यक्ति पर उसका पूरा असर हो। ये तभी होगा जब विचार स्पष्ट, शब्द और टोन संयत हो और अपनी बात कहने के साथ ही दूसरे को भी कहने का मौका मिलेगा।

0: सुनिए
1: कहिए कहिए
0: सुनिए सुनिए
1: कहिए हाँ हाँ
0: सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा।
2: पहले सोचो फिर बोलो, बचपन की ये सीख बड़े काम की है, क्योंकि इसी से समय स्थान और परिस्थिति का ध्यान रखकर बोलने की आदत पड़ती है। सामने सामने बातें हो रही हो या मंच से अपनी बात कही जा रही हो, बोलते वक्त समय पर नजर रहे, साथ ही किस तरह बात करनी है इसका भी ध्यान रहे, तभी तो बातों में वजन आता है। बिना सोचे समझे बोलने के बजाय चुप रहकर सुनना कहीं अच्छा है। बहुत पुरानी या पहले की बातों पर ध्यान देना यूं तो जरूरी है, उदाहरण के लिए अतीत का जिक्र किया जा सकता है अगर कोई सलाह देनी हो, लेकिन बातचीत का संदर्भ वर्तमान से जुड़ा रहे तभी बातों का असर होता है।

बातचीत में टोन यानी लहजा भी बहुत खास भूमिका निभाता है। कैसे किसी को संबोधित किया जाता है, किसी बात पर कैसे असरदार ढंग से हामी भरी जाती है या बिना किसी को चोट पहुंचाए असहमति प्रकट की जाती है, ये जताने में टोन साथ देती है। बात संयत ढंग से मीठे लहजे में कही जाए तो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपनी बात रखी जा सकती है। तुलसीदास जी ने कहा भी है, कोयल काको देत है कागा कासो लेत, तुलसी मीठे वचन ते जग अपनो कर लेत।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
3: मैं और मेरी तन्हाई,
2: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन है ये। चित्रलोक कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: श्रोता मित्रों 93.9 मेगाहर्ट्ज पर आप ट्यून कर्यू छे विविध भारतीनू वडोदरा केन्द्र। श्रोता मित्रों सवारे 8:30 लोकप्रिय हिंदी फिल्मी गीतोनो कार्यक्रम चित्रलोक जेना प्रायोजक छे
2: केजे इंस्टीट्यूट ऑफ एंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी।
1: डिप्लोमा बीई तथा डी2डी एंजीनियरिंग ना अभ्यास माटेनो श्रेष्ठ विकल्प जेमा मळे छे 100% जॉब प्लेसमेंट नी खात्री।
2: केजेआईटी सावली। अशोका द ग्रेट एक्सक्लूसिव एथनिक एंड दुल्हा कलेक्शन वडोदरा नो आधुनिक शोरूम नवरंग सिनेमा रोड रावपुरा वडोदरा।
1: एम के फर्निचर 5 माड नो भव्य शोरूम प्रतापनगर ब्रिज नीचे वडोदरा। सवारे 10 फोन इन तथा अन्य लोकप्रिय कार्यक्रमों जेना प्रायोजक छे
2: आर्क ब्लाइंड्स शिवाकृति बिल्डिंग दांडिया बाजार वडोदरा।
1: सेहत आपकी सुरक्षा हमारी अब नहीं रहेगी मच्छरों से परेशानी
2: ये है आर्के ब्लाइंड्स की जिम्मेदारी।
0: प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं रेखा भारद्वाज की आवाज में डेर इश्क फिल्म के गाने के साथ। गुलजार के बोल विशाल भारद्वाज के तर्ज और इस गाने में नृत्य के बोल हैं पंडित बिरजू महाराज के स्वर में।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है।

सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे 14 फेरे। इस फिल्म का गाना राजीव भल्ला, रिया दुगल और राशि हरमलकर की आवाजों में। लीजिए सुनिए मनाली चतुर्वेदी की आवाज में एक्टिंग का भूत। इस फिल्म का गाना, गीतकार हैं काशी कश्यप और संगीतकार हैं काशी रिचर्ड।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया, शुक्रिया।
0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
1: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। चित्रलोक कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से अंतराल का, तुरंत हाजिर होते हैं।
4: विविध भारती नो वडोदरा केंद्र आप सांभळी रह्या छो। सारा गणदेवीकर ज्वेलर्स टाइम अत्यारे सवारना 9:08 थई छे। शुकननुं सोनू तो सारा गणदेवीकरनुं ज, सारानुं सोनू सुख शांति अने समृद्धिनुं सोनू। सारा गणदेवीकर ज्वेलर्स दांडिया बजार अने वागोडिया रोड वडोदरा।
5: એન્જિનિયરિંગમાં પાકું કરિયર બનાવવું છે તો ડિપ્લોમા બીઈ કે D2D માટે બેસ્ટ ઓપ્શન છે KJ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ એન્જિનિયરિંગ એન્ડ ટેકનોલોજી સાવલી।
6: KJIT સાવલી આપે છે 100% જોબ પ્લેસમેન્ટની ગેરંટી।
5: વિઝિટ અવર વેબસાઇટ kjit.org ટુડે।
7: બ્રો, લગ્નની શોપિંગ થઈ?
8: હા, વરસાદમાં।
7: યસ, અને એ પણ પૂજા પ્લસ સાથે ડિઝાઇનર અને સ્પેશિયલ વેડિંગ કલેક્શન પર છે up to 50% ઓફ। વિઝિટ

0: पूजा प्लस नवरन सिनेमा रोड रावपुरा वडोदरा।
1: हर रोज सुबह 7 बजे सुनिए कार्यक्रम भूले बिसरे गीत, जिसके प्रायोजक है वीको वज्रदंती। मजेदार नहीं असरदार, भारत का गम एक्सपर्ट।
2: प्रोग्राम चित्रलोक में लीजिए अब सुनिए श्रेया घोषाल और जावेद बशीर की आवाजों में प्रसून जोशी का लिखा और शंकर एहसान लॉय का संगीतबद्ध किया गाना, फिल्म का नाम भाग मिल्खा भाग।

दोस्तों, आज है इंटरनेशनल डे ऑफ होप, यानी अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस। आशा हमें सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, आशा अंधकार में एक दीपक के समान हमारा जीवन पथ आलोकित करती है। आज चारों ओर तनाव है, भागदौड़ है, प्रतिस्पर्धा है, ऐसे में आशा हमारा संबल बन जाती है। एक आशावान व्यक्ति अपनी सकारात्मक ऊर्जा से सिर्फ अपना ही नहीं, बल्कि पूरे समाज और देश का भी भला करता है।

0: अभी आप सुन रहे थे के सलीम मर्चेंट और साथियों की आवाज़ों में इकबाल फिल्म का गाना। इरफान सिद्दकी ने लिखा इसे और संगीत से संवारा था सलीम सुलेमान ने। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरी गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। वक्त हो गया एक छोटे से अंतराल का, तुरंत हाजिर होते हैं।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए सुनिए हैप्पी फिर भाग जाएगी फिल्म का ये गाना।

दोस्तों आज है इंटरनेशनल डे ऑफ कॉम्बैटिंग सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म्स यानी रेत और धूल भरी आंधी से निपटने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इसे संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2023 से मनाना शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य पर्यावरण पर रेत और धूल भरी आंधियों के असर के प्रति जागरूकता फैलाना है।

इस चुनौती से निपटने के लिए वृक्षारोपण, भूमि संरक्षण, जल संरक्षण आदि आवश्यक है। इस वर्ष की थीम है स्रोत से प्रभाव तक, रेत एवं धूल भरी आंधियों से भूमि और जीवन की रक्षा। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए चित्रलोक कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए देहाती डिस्को फिल्म का ये गाना

अभी आप सुन रहे थे दिव्या कुमार की आवाज में देहाती डिस्को फिल्म का गाना। गीतकार थे प्रणव वत्स और संगीतकार थे गणेश आचार्य। और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश अमर आरशी बादशाह और नेहा कक्कड़ की आवाजों में गीतकार हैं अमरीक सिंह और कुमार, और संगीतकार हैं जसलीन रॉयल। फिल्म का नाम बार बार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना

0: ये गाना
1: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान
1: और बीच में एक गैप था, लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं, गाते गाते आप इस दीवार से जाते हैं, जंप कर जाते हैं। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

दोस्तों, फिल्में बॉक्स ऑफिस से चाहती हैं प्यार का आसरा, लेकिन सभी फिल्मों के खाते में सफलता के सिक्के नहीं खनकते। आज जिस तरह से बॉक्स ऑफिस से फिल्में धराशायी हो रही हैं और त्राहिमाम त्राहिमाम की गूंज सुनाई दे रही है, तो कौन विश्वास करेगा कि एक जमाने में उन्होंने सम्मोहित कर रखा था दर्शकों को, जो हैं हमारे आज के फनकार। बूझिए तो भला,

अब तो पहचान गए होंगे, हमारे आज के फनकार हैं जुबली कुमार यानी अभिनेता राजेंद्र कुमार। इतनी सुनहरी है राजेंद्र कुमार की दास्तां कि आपकी इस रेडियो सखी का एक मन तो ये हुआ कि बस एक लाइन से फिल्मों के नाम गिनाएं और सुनवाते जाएं उनकी फिल्मों के सुरीले।

दोस्तों, मैंने कहा कि आपकी रेडियो सखी का मन तो ये हुआ कि फिल्मों के नाम बताएं और गीत बजाते जाएं, पर भला ये सदाबहार अभिनेता

राजेंद्र कुमार की दास्ता कहाँ रहती? तो फिर सुनिए। राजेंद्र कुमार तुली जन्मे तो 20 जुलाई 1929 को थे सियालकोट में, जो अब सरहद के उस पार है। फिल्मों से उनका नाता जुड़ा विभाजन के बाद, जब परिवार आया मुंबई और जब राजेंद्र कुमार निर्देशक एचएस रवैल के सहायक बन गए। शुरुआत केदार शर्मा की फिल्म जोगन के छोटे से रोल से हुई, पर सही मायनों में तूफान और दिया बतौर नायक उनकी पहली फिल्म थी।

0: और तूफान की।
1: सचमुच राजेंद्र कुमार का करियर दिए और तूफान की लड़ाई की तरह थी। फिल्म जोगन से जो दिया जला उसे सितारा बनने में कुछ ज्यादा वक्त नहीं लगा। सन 1957 में राजेंद्र कुमार महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया में नजर आए।

0: दुख भर दिन बीतर भैया बीतर भैया।
1: अपने जमाने की तमाम चर्चित अभिनेत्रियों के पीछे लहराते हुए गीत गाने का मौका मिला था इस अलबेले नायक राजेंद्र कुमार को। आइए हम भी भीगें प्यार की इन मस्त फुहारों में और चले उस फ्लैशबैक पर जहां हैं अभिनेता राजेंद्र कुमार के साथ अलग अलग तारिकाएं। फिल्म संगम, राजेंद्र कुमार और बैजंती माला।

0: दोस्तों बात चल रही है राजेंद्र कुमार की उस मोहब्बत भरी छेड़छाड़ की जो उन्होंने रजत पट पर की थी अपनी नामचीन अभिनेत्रियों के साथ। फिल्म आरजू, राजेंद्र कुमार और साधना।
1: वो नाजुक लबों से

0: सदाबहार गानों का जिक्र चल रहा है तो आपको ये बता दें कि अभिनेता राजेंद्र कुमार ने सन 1963 और 1966 के बीच लगातार 6 हिट गोल्डन जुबली फिल्में दी थी और इस दौरान उनकी कोई भी फिल्म फ्लॉप नहीं हुई थी। इसे कहते हैं किस्मत।
1: सारे जमाने पे मौसम सुहाने पे इस दिल दिवा

0: कुल मिलाकर अपनी फिल्मी यात्रा में राजेंद्र कुमार एक ऐसे आधार स्तंभ बन गए जिसे डिगाना आसान नहीं था। एक लंबे समय तक मेलोड्रामा यानी अति नाटकीयता, त्रासदी और आंसू बहाव फिल्मों का दौर जारी रहा, जिनका संगीत ऊंचे पायदानों पर टिका रहा। बीच बीच में बाद के दौर की कुछ फिल्में फ्लॉप भी हुईं। विडंबना देखिए कि सदाबहार अभिनेता राजेंद्र कुमार के सिंहासन को जिस रोमांटिक आंधी ने हिलाया, उसका नाम था राजेश खन्ना, जिन्होंने बाद के दिनों में राजेंद्र कुमार का बंगला भी खरीद लिया।
1: हुस्न वाले

0: गीतकार और निर्देशक सावन कुमार की यादों में राजेंद्र कुमार आज भी बसे हैं। साजन बिना सुहागन फिल्म की एक घटना को याद करते हुए सावन कुमार कहते हैं,
1: एक दिन राजेंद्र कुमार जी का बर्थडे था और मैं उनके घर गया तो उनकी वाइफ मुझे जानती थी, बोली भाई साहब आइए आप बैठिए मैं उनको खबर करती हूँ। तो उनको खबर किया तो वो कहने लगे सावन जी को यहीं भेज दो। तो पीछे मैं गया जहाँ वो बैठे हुए थे तो वहाँ राज कपूर साहब बैठे थे उनके साथ। तो मैंने देखा इतने बड़े आदमी का बर्थडे है, कोई है नहीं, और चंद बुके पड़े थे फ्लावर्स के भी। तो मैंने इधर उधर देखा, मैंने अपना बुके दिया और उनको विश किया कि भैया हैप्पी बर्थडे आपको, तो मैं आपके लिए उन्होंने कहा एक और गिफ्ट लाया हूँ और वो है कि एक पिक्चर आप मेरी कर रहे हैं। जबकि वो चार साल से घर बैठे थे, कोई फिल्म नहीं थी उनके पास, जुबली स्टार थे। तो सबसे पहले राज कपूर साहब खड़े हो और उन्होंने मुझे गले लगा लिया कि भाई तुमने आज मेरे दोस्त को ऐसा बर्थडे गिफ्ट दिया है जो मैं नहीं दे सका, मेरी हिम्मत नहीं है इस वक्त इनके साथ फिल्म बनाने की, अगर तुम बना रहे हो तो मेरी दुआ है तुम्हारी फिल्म गोल्डन जुबली होगी। तो मैंने उनसे फिर कहा कि राज साहब आप मेरी पिक्चर का क्लैप दीजिए। उन्होंने कहा कि क्लैप नहीं दूंगा, मैं सिल्वर जुबली की ट्रॉफी बांटने आऊंगा इस फिल्म की। और उनकी मुबारक जुबान जो है ना अल्लाह ने कबूल की और पिक्चर सुपर हिट हुई और वही ट्रॉफी बांट के गए मेरी इस फिल्म की।

0: सावन कुमार साहब, अभिनेता राजेंद्र कुमार को आप किस रूप में याद करना पसंद करते हैं, किस रूप में वो आपको याद आते हैं?
1: वो खाली एक अभिनेता ही नहीं थे, बड़े अच्छे इंसान थे और मेरे लिए तो बड़े भाई की तरह थे। उन्होंने मेरे को बहुत गाइड किया, अपने एक्सपीरियंस, अपनी बातें बता बता के सारी चीजें। मैंने अपने आप को बड़ा एजुकेट किया इस तरह से। ऐसे कई बार राज साहब से बातें होती थी तो उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता था। पर राजेंद्र कुमार जी के साथ मैंने 3 फिल्में बनाई और हमने वो 3 फिल्में इतना अच्छा लगा उनके साथ काम करते हुए। ऐसा लगा नहीं को किसी बहुत बड़े स्टार के साथ काम कर रहा हूँ या बहुत बड़े आदमी के साथ काम कर रहा हूँ। बहुत अच्छा लगा और हर वक्त वो एक फिलोसोफर, गाइड और फ्रेंड, अच्छे दोस्त की तरह हमेशा साथ रहे मेरे।
0: साजन बिना सुहागन, साजन की सहेली और ओ बेवफा, यही फिल्में थी ना? हम ये जानना चाहते हैं कि शूटिंग के दौरान या फिर जब वो डांस करते थे या डायलॉग डिलीवरी होती थी तो उस वक्त वो कैसे होते थे? मतलब बड़े संजीदा होते थे या हंसमुख?
1: बिल्कुल संजीदा इंसान नहीं थे वो, बिल्कुल हंसमुख और कॉमेडियन कैरेक्टर थे लाइफ के अंदर।
0: अच्छा।
1: हमेशा हंसते रहना और हंसी मजाक करते रहना, मैंने कभी उनको जिंदगी में सीरियस होते देखा ही नहीं।
0: संवाद अदायकी के वक्त
1: वो एक कैरेक्टर है ना जो प्ले करते हैं, फिर वो जिस तरह का कैरेक्टर था वो। फिल्मों में काफी संजीदगी के रोल किए हैं उन्होंने और साजन बिना सुहागन में भी।

0: उनका बड़ा संजीदा रोल था, तो वो तो एक एक्टर की क्वालिटी है ना, उसको किस तरह से परफॉर्म करता है वो, बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे। और उनके साथ एक और बात थी खास कि नूतन जी भी सुपरस्टार थी और वो भी सुपरस्टार थे, कभी दोनों ने साथ नहीं काम किया था। तो वो पहली फिल्म थी जब नूतन जी भी एक्चुअली रिटायर हो चुकी थी फिल्मों से, तो मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट की थी कि आप ये फिल्म कीजिए। तो जब वो सुपरस्टार थे दोनों ने साथ काम नहीं किया, जब वो स्टार नहीं रहे थे दोनों, फिर एक पिक्चर में साथ काम किया, फिर वो पिक्चर गोल्डन जुबली हुई।
1: पहले राजेंद्र कुमार एक सदाबहार नायक रहे, फिर चरित्र अभिनेता बने, फिर 80 के दशक में बने प्रोड्यूसर और अपने बेटे कुमार गौरव को फिल्म संसार में उतारा। फिल्म थी लव स्टोरी।

मिलाकर भारतीय फिल्मों के अति भावुक ढांचे में से राजेंद्र कुमार के रूप में एक ऐसा नायक निकल कर आया था जिसने अपनी फिल्मों के जरिए हमें हंसाया और रुलाया।

नायक को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है उससे जुड़े किसी दर्शन को याद किया जाए। और आपकी रेडियो सखी के लिए वो दर्शन ये है।

0: आज के फनकार ये कार्यक्रम केंद्रित था अभिनेता राजेंद्र कुमार पर।
1: शोध और आलेख आपकी रेडियो सखी ममता सिंह का था, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले की। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: आज के फनकार।

0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
1: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
1: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पूरी कर आज नई दिल्ली लौट आए हैं। 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी ने 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया का दौरा किया। इस दौरान श्री मोदी ने राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और दोनों देशों के बीच साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ 3रे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। यात्रा के तीसरे और अंतिम चरण में प्रधानमंत्री ने 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड के ऑकलैंड का दौरा किया। वहां उन्होंने प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को प्रधानमंत्री मोदी की 3 देशों की यात्रा के दौरान हुए महत्वपूर्ण समझौतों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र में महत्वपूर्ण भागीदार देश बनकर उभरा है।
1: हम एक स्टेबिलाइजिंग फोर्स बन के इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन में आज उभर पाए हैं, इसी को प्रधानमंत्री एक साथ लेके आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने परिश्रम से, अपने स्टेट्समैनशिप से अपने पॉलिसी को भारत में लागू करके बाकी देशों को दिखाया और सभी देशों ने एक्सेप्ट किया कि यस, लेट दिस बी द फ्रेमवर्क, लेट इंडिया डिसाइड द फ्रेमवर्क। हम इस फ्रेमवर्क पे एक लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन, आप सोचिए ये कितनी बड़ी जीत है।
0: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने माफी योजना 2026 शुरू की है। इसके तहत आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त छूट के साथ भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने का एक मुश्त अवसर प्रदान किया गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि ये योजना 6 महीने की अवधि तक लागू रहेगी। मंत्रालय के अनुसार पात्र प्रतिष्ठानों को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को ईमेल के माध्यम से औपचारिक आवेदन प्रस्तुत करना होगा। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। गुजरात में गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की जन केंद्रित विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। श्री शाह ने कार्यक्रम के दौरान अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर में पौधारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इधर उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के व्यापक पौधारोपण अभियान के अंतर्गत आज 35 करोड़ पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित प्रस्तावित विधेयकों की जांच कर रही संयुक्त संसदीय

0: ये समिति ने गोवा में 2 दिन की चर्चा पूरी कर ली है। इस दौरान समिति ने राज्य सरकार, राजनीतिक दलों, विधायकों, संविधान विशेषज्ञों, सरकारी उपक्रमों, सामाजिक प्रतिनिधियों और मीडिया के साथ बातचीत की। खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने उपभोक्ता शिकायतों के बाद स्विगी इंस्टामार्ट को 9 नोटिस जारी किए हैं। ये नोटिस खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत नियमों के कथित उल्लंघन के मामले में जारी किए गए हैं। प्राधिकरण ने स्विगी इंस्टामार्ट को विस्तृत स्पष्टीकरण और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। ऐसा नहीं करने पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हुन ने फू क्वोक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। इस हादसे में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। ये हादसा 36 लोगों को लेकर जा रही स्पीड बोट के अचानक ऊंची लहर की चपेट में आकर पलटने से हुआ। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने मृतकों की सूची जारी की है। इनमें से 10 लोग तमिलनाडु, 3 आंध्र प्रदेश और 2 केरल के रहने वाले थे। विदेश मंत्रालय ने वर्ष 2017 में जारी यमन यात्रा संबंधी अधिसूचना वापस ले ली है। यह अधिसूचना यमन में गृह युद्ध और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के कारण भारतीय नागरिकों की यात्रा पर प्रतिबंध लगाने के लिए जारी की गई थी। हालांकि मंत्रालय ने परामर्श जारी कर भारतीय नागरिकों को यमन की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहला सेमीफाइनल बुधवार को फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे से शुरू होगा। दूसरा सेमीफाइनल गुरुवार को इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच खेला जाएगा। दोनों सेमीफाइनल मुकाबलों के विजेता 20 जुलाई को न्यूयॉर्क के न्यूजर्सी स्टेडियम में खिताबी मुकाबले में आमने सामने होंगे। टेनिस में आज विम्बल्डन के पुरुष सिंगल्स और महिला डबल्स के फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम एक या दो नहीं कई सारे कलाकारों को याद करने वाले हैं। तो यादों की महफिल में बहुत सारे कलाकारों की यादों के साथ हाजिर हूं मैं विधि जैन। नमस्कार। पहला गीत हम सुन रहे हैं अभिनेता प्राण जी, इन पर फिल्माया गया यह गीत हम सुनते हुए आज याद करते हैं अभिनेता प्राण को उनकी पुण्यतिथि विशेष दिवस पर।

हम सुन रहे थे विमल रॉय कृत फिल्म बंदिनी से आशा भोसले की आवाज में, शैलेंद्र की बोल और सचिन देवर्मन के संगीत के साथ यह गीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल का अगला गीत, जिस फिल्म को भी सजाया है विमल रॉय ने। फिल्म है सुजाता, एस डी वर्मन, सचिन देवर्मन ने इसे गाया है और सचिन देवर्मन ने ही उसे संगीतबद्ध किया है। मजरूह सुल्तानपुरी के हैं बोल।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल, और आज हमने यादों की महफिल में सबसे पहले सुना अभिनेता प्राण पर फिल्माया गया यह गीत, और अब हम सुन रहे हैं फिल्मकार विमल राय पर के द्वारा सजाई गई फिल्मों के गीतों को। इसके बाद और भी कई किरदार हैं जिनको आज हम याद करने वाले हैं, तो आइए सुनते हैं विमल राय कृत फिल्म दो बीघा जमीन। इस फिल्म से लता मंगेशकर मनाडे और साथियों की आवाज में शैलेंद्र के बोल और सलिल चौधरी का है संगीत। आइए सुनते हैं ये गीत।

आइए हम सुनते हैं एक और गीत जो कि है विमल रॉय कृत फिल्म परख से। लता मंगेशकर की आवाज़ है, शैलेंद्र के हैं बोल और सलिल चौधरी का है संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम है यादों की महफिल। अभी तक हमने सुना अभिनेता प्राण पर फिल्माए गए गीतों को, हमने सुना विमल रॉय एक बहुत खूबसूरत फिल्मकार के द्वारा फिल्माई गई फिल्मों के गीतों को, और अब हम चल रहे हैं आज याद कर रहे हैं अभिनेता राजेंद्र कुमार को। तो आइए सुनते हैं अभिनेता राजेंद्र कुमार पर फिल्माए गए इन गीतों को।

0: हम सुन रहे हैं झुक गया आसमान, फिल्म से सुन रहे थे ये गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, हसरत जयपुरी के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ सजा हुआ है यह गीत। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर। अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
3: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
1: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल में आस का पंछी फिल्म से लता मंगेशकर मुकेश की आवाजों में, हसरत जयपुरी के हैं बोल और शंकर जयकिशन का है संगीत। सुनते हैं ये गीत।

0: हम सुन रहे थे गोरा और काला, फिल्म से यह गीत मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ यह गीत। आइए सुनते हैं संदेश।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
3: सखी सहेली।
2: आलस भरी सुबह,

0: जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का

0: सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल। जैसा हमने आपसे कहा था कि आज हम बहुत सारे कलाकारों को याद करेंगे, तो आज हम याद करने जा रहे हैं कुछ गीतों के साथ गायिका अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित को। आज उनका जन्मदिवस है, आइए सुनते हैं उन्हीं की आवाज में ये गीत।

हम सुन रहे थे अपनापन फिल्म से यह गीत सुलक्षणा पंडित किशोर कुमार की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ में।

हम सुन रहे थे उलझन फिल्म का यह गीत किशोर कुमार सुलक्षणा पंडित की आवाज में, और आज का कार्यक्रम यादों की महफिल समाप्त होता है यहीं पर। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम सुरीला सफर आरंभ होगा बस थोड़ी ही देर के बाद।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सुरीला सफर में। मैं हूं आपके साथ विधि जैन। नमस्कार स्वीकारें। चलिए हम शुरू करते हैं हमारा सुरीला सफर। और आप जानते हैं, हम जानते हैं, सभी जानते हैं कि सुरीला सफर में हम भेजते हैं आप तक एक इबारत हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से, और वहां से आपके साथ होती हैं बहुत सारी बातें। तो जो इबारत हमने भेजी है उसे हम आपके सामने पढ़ देते हैं। इबारत कुछ ऐसी है कि एक जीवन में किसी का साथ मिल जाए तो वही हमें 2 से 11 बना देता है। कभी कोई तीसरा उस साथ को पूर्णता देता है तो कभी वही उसे विच्छिन्न भी कर देता है। 4 लोग कभी प्रशंसा की थपकी देते हैं तो कभी अपने वचनों से हमें परखते भी हैं। 5 इंद्रियां कभी जीवन पथ की सहचरी बनती हैं तो कभी कभी साथ छोड़ती प्रतीत होती हैं। और 6 इंद्रिय वो भी अपने संकेत देती रहती है। 7 समुद्रों से सुसज्जित यह वसुंधरा फिर भी अपनी ही लगती है क्योंकि इसमें हमारी स्मृतियां और अनुभूतियां बसी होती हैं। 8, 9, 10 न जाने कितने अंक और कितने संबंध जीवन की गणना में जुड़ते जाते हैं। कभी 100 पीड़ाएं भी धैर्य से सह लेते हैं और कभी सहस्रों प्रसन्नताएं भी मन को आनंदित नहीं।

नहीं कर पाती हैं। और इस इबारत को हमने पढ़ने के बाद बहुत सारे संदेश जो हमारे श्रोताओं ने पहले से भेजे हैं, उन संदेशों में से कुछ संदेश हम आपके साथ साझा करते हैं। अब उन संदेशों में से एक संदेश, जैसे हमारे एक बड़े प्यारे से श्रोता लिख रहे हैं कि जो जीवन दर्शन की विभिन्न झांकियां हैं ना, वह प्रदर्शित करती अंकीय विश्लेषण पूर्ण अलंकृत गद्यांश है। अनेकों के बीच फलता फूलता एकाकी जीवन कालांतर में पुनः संख्या गरिष्ठ परिवार में परिणत हो सहस्त्रादि दुखों सुखों में भवर को पार करते हुए अतिक्रम करता है, अंततः पुनः एकाकी महाप्रयाण कर जीवन के सफर को अंजाम देता है। जीवन सफर को संगीतमय सफर का आह्वान करती कार्यक्रम का इंतजार रहेगा। जी बिल्कुल, हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि संख्याएं अंक एक दो शब्दों आ आ ई ई उ ऊ आदि की पूर्वज हैं। शब्द तो अंकों के बहुत बाद में आए और आते ही चले जा रहे हैं, जबकि संख्याएं सबकी सब आ चुकी हैं। क्या कोई नई संख्या बता सकता है? देखिए, अंक से कैसे बना है एक शब्द, एक से बना एका, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते और एक दूसरे के बिना इस दुनिया की शुरुआत भी नहीं हो सकती। कितनी बढ़िया बात ये हमारे साथ कह रहे हैं। ऐसी बहुत सारी बातें कही हमारे श्रोताओं ने, तो हम आपको ये सारी बातें भी सुनाएंगे, लेकिन सुनाते हैं ये गीत। और इस गीत के पहले हमारा एक छोटा सा प्रश्न है आपसे, और वो प्रश्न ये है कि जीवन में अगर अंक ना हो तो क्या होगा? जरा विचार कीजिए कि अंक गायब कर दिए जाएं तो हम क्या कर पाएंगे और क्या नहीं कर पाएंगे, जरा सोचिए, बताइए। हालांकि हमारे एक श्रोता ने इस बात का उत्तर पहले ही दे दिया है, पर बाकी श्रोताओं को तो भी उत्तर देना बनता है। तो बताइए, अगर जीवन में अंक नहीं है तो जीवन कैसा होगा? चलिए सुनते हैं ये गीत।

हम सुन रहे थे मुकेश और साथियों की आवाज में यह गीत, जिसे हमने लिया फिल्म धर्म करम से, और इसे लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने, राहुल देववर्मन का है संगीत। और हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था, और बड़ा प्यारा सा प्रश्न था कि ये बताइए कि अगर आपके जीवन में, हम सबके जीवन में अगर अंक नहीं है तो हमारा जीवन कैसा होगा। हमारे श्रोता ने पहले ही हमें उत्तर दिया है, जिसे हमने सुरक्षित कर लिया और आप सबके साथ उसे हम साझा करने वाले हैं। पर कुछ बड़े प्यारे प्यारे प्रश्न, बड़ी प्यारी प्यारी बातें हमारे श्रोताओं की आई हैं। तो हमारे एक श्रोता ने लिखा है, अंक नहीं होंगे तो हम समय, तारीख, उम्र, रुपयों का हिसाब नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही बात है, बगैर अंक के मैसेज भेज पाना और पाना और भेजना असंभव होगा, और संचार व्यवस्था नहीं चलेगी, और विविध भारती राष्ट्रीय सेवा की ओर से सुरीला सफर भी ठप हो जाएगा। नहीं, हम इसको कुछ और तरीके से कर लेंगे ना, लेकिन पता तो पिन कोड पर ही आता है ना, तो नंबर तो चाहिए, अंक तो चाहिए। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि अंकहीन जीवन शून्य होता है, गणित में भी शून्य की जिससे गुना किया जाए, फलसफा फलफलाफल शून्य ही होता है, शून्यता की पूर्ति संख्या ही करती है, और बस जोड़ घटाव करते रहते हैं, और त्वरित फल के लालच में गुणा मत करें। बिल्कुल सही बात है। हमारे श्रोता कहते हैं कि अंक, वह कल्पना ही नहीं कर सकते अंक के बिना। अंक है तो नदी की लंबाई, गहराई, पर्वतों की ऊंचाई, सागर की विशालता, फूलों की रचना, पत्तों की सजावट, हाथ की उंगलियों की, सभी तरफ अंक बैठे हैं बिना अंक के। सही बात है, दुनिया तितर बितर हो जाएगी। हमारे श्रोता कहते हैं कि हार जीत का निर्णय भी नहीं कर सकते। सही बात है, भगवान शिव ने तो द्वितीय चंद्र को मस्तक पर धारित किया है, और वह कहते हैं कि चंद्रमा की गति विधि भी अंक पर आधारित है। जी बिल्कुल, सब कुछ अंक पर ही आधारित है। हमारे श्रोता कहते हैं कि जीवन में अंक नहीं तो जीवन शून्य हो जाएगा, और ज्योतिष विधा अपना अस्तित्व खो देगी। आप भी सही हैं। हमारे एक और श्रोता ने लिखा है कि अंक नहीं होंगे तो बिना अंकों के, रंगों के बिना, जैसे चित्रकारी संगीत के बिना किसी एक धुन की तरह होगा। अंक केवल गणित का हिस्सा नहीं है, वह हमारे जीवन, अस्तित्व, समय, भावनाओं सबके हिस्सा है। घड़ी की सुइयां, कैलेंडर, तारीखें सब अर्थहीन हो जाएंगी। हम सभी अपनी आयु का हिसाब नहीं रख पाएंगे, ना किसी खास पल का जश्न मना पाएंगे। बिना अंकों के पते, बैंक खाते, पहचान पत्र सब गायब हो जाएंगे। आर्थिक व्यवस्था

0: रास्ता बिखर जाएगी, प्यार दूरी भावनाओं को माप नहीं पाएंगे। अंक एक दूसरे को जोड़ते हैं, लय देते हैं, बिना उनके बिना दुनिया केवल एक अराजक और दिशाहीन कोहरा बनकर रह जाएगी। बहुत बढ़िया, हमारे एक श्रोता ने बढ़िया उत्तर दिया। उन्होंने लिखा है, अंक ना होते तो हमें मैथ्स से छुट्टी मिल जाती, क्योंकि मैं मैथ्स में बहुत वीक हूँ। कितने स्वार्थी होते हैं ना लोग, गणित से छुट्टी पाने के लिए अंकों को ही खत्म करने की बात करते हैं। पर फिर भी वह बहुत अच्छा लिख रही हैं। वैसे तो अंकों का आइडिया मानव मन में प्राचीन काल से ही होगा, बस उसकी प्रणाली आर्यभट्ट और अन्य गणितज्ञों ने बनाया है। इसके बिना सब कुछ अधूरा रहता, उम्र का कुछ पता ही नहीं चलता, है ना। कितनी अच्छी बात है। और प्रश्न बड़ा दिलचस्प है, कहती है बहुत कुछ लिखा जा सकता है लेकिन पोस्ट बड़ा हो जाएगा। जी, हमारी एक श्रोता ने लिखा है, आज का सुरीला सफर अंकों से जुड़ा है। अगर देखा जाए तो अंक गणित का आविष्कार किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया, इसकी शुरुआत प्राचीन काल मेसोपोटामिया सुमेरियन मिश्र और भारत में लगभग 3000 वर्ष पूर्व पहले व्यापार और निर्माण की जरूरत करने के लिए पूरी की गई थी। इसे व्यवस्थित वैज्ञानिक रूप देने के लिए ब्रह्मगुप्त ने 7वीं सदी में शून्य के उपयोग को स्पष्ट किया, ऋणात्मक संख्याओं के साथ अंकगणितीय नियमों को लिपिबद्ध किया। चलिए, आपने बहुत सही बात कही है। उसके साथ अंक नहीं होगा तो क्या होगा, हम सब जो जुड़ रहे हैं जुड़ नहीं पाएंगे, ऐसा लिखा। दशमलव शून्य हमने दिया है तो चांद पर नहीं जा पाएंगे, ये भी हमारे श्रोता कह रहे हैं। ऐसी बहुत सारी बातें हमारे श्रोताओं ने कही हैं कि अंक नहीं होंगे, तो एक बड़ी सी इबारत भी लिखी है, लेकिन उस इबारत में से हम वही छोटी बात करते हैं कि वो कहते हैं कि संतुलन नहीं हो पाएगा, ब्रह्मांड नहीं चलेगा, अंकहीन होगा तो हम पाषाण युग में पहुंच जाएंगे। बिल्कुल, अक्षर हमें बोलना सिखाते हैं, अंक हमें जीवन जीने का ढंग सिखाते हैं, और अंक ना हो तो जीवन शून्य हो जाएगा। बहुत सारी बातें आप सभी ने बताई, और इन सभी बातों के बाद में हम आप तक गीत पहुंचाना चाहते हैं, जो अगला गीत है। एक बात मन में आती है कि किसी श्रोता ने लिखा कि अंकों की गिनती 3000 वर्षों पहले हुई, पर उसके पहले भी भारत में सभ्यता थी, वो सभ्यता बिना अंकों के कैसे होती। जरा विचार कीजिएगा, सभ्यता बहुत पुरानी है, जब विश्व कुछ नहीं जानता था तब भारत में महाभारत हो रही थी, और उसके पहले भी हमारी सभ्यताएं हुई हैं, तो अंक जाने कब से हैं और जाने कब तक रहेंगे। और हमने कहा था, हमारे एक श्रोता ने पहले ही उत्तर दे दिया है, तो उनका उत्तर ऐसा है कि आज के कार्यक्रम में बातें अंकों में होंगी, और मुझे लगता है अधिकांश गाने भी अंकों में ही बजेंगे। जीवन से यदि अंक निकाल दिए जाए तो उम्र का आकलन नहीं होगा, न समय की गणना होगी, न रुपए पैसों की गिनती होगी, न दूरियों का अंदाजा लगा पाएंगे। बिना अंकों के आधुनिक टेक्नोलॉजी भी असफल हो जाएगी। आज मोबाइल, कंप्यूटर, एटीएम, सारी मशीनें अंकों पर आधारित हैं। आज का जो विकास है उस पर सर्वाधिक योगदान अंकों का है। फिल्मी गीतों में भी अंकों के पर आधारित बहुत गीत बने हैं, और उन्होंने कुछ गीतों का नाम लिखा है। ये गीत आपके और आपके देश के नाम बस बता दीजिए, इस गीत में अभिनेता कौन है, अभिनेता का नाम बताइए, और सुनिए ये गीत और विचार कीजिए अंकों के ऊपर। अगला प्रश्न आपके लिए यह देकर जा रही हूं कि आपके जीवन में कौन सा अंक बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा कोई एक अंक होता है, उसे कहीं भी लिखा हुआ देखकर, या घड़ी में देखकर, या चलते फिरते किसी गाड़ी में देखकर ऐसा लगता है, हाँ ये मेरा अंक है, ये मेरे पिता का जन्मदिन भी हो सकता है, ये मेरी बहन का कोई दिन हो सकता है, ये मेरा अपना कोई दिन हो सकता है, मेरे अपने का कोई दिन हो सकता है। जरा विचार कीजिए, वो कौन सा अंक है जो आपके जीवन में बड़ा प्यारा है, आपको बड़ा प्यारा है, बताइए वो अंक, साझा कीजिए हमारे साथ, और बताइए इस गीत के अभिनेता कौन है।
1: जी।

और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया, भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले।

और हम सुन रहे थे महुआ फिल्म का यह गीत मोहम्मद रफी की आवाज में, जो हमने आपसे पूछा कि गायक कलाकार कौन है, और आप सबने बिल्कुल सही उत्तर दिया और आपने तो गीतकार और संगीतकार का नाम भी बता दिया। आपने बताया कमर जलालाबादी इसके गीतकार हैं और सोनी कोमी इसके संगीतकार, तो बिल्कुल सही बताया आपने, दोनों बातों को आपने बिल्कुल सही तरीके से बताया। और हमने आपसे पूछा एक बड़ा साधारण सा प्रश्न कि हमारे भारत की संख्याएं जो हैं वो कितनी ज्यादा हो सकती हैं, कहाँ तक हो सकती हैं, आप क्या सोचते हैं? तो हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छे उत्तर दिए हैं कि वो लिखते हैं कि एक कल्प आखिरी संख्या जब विष्णु भगवान की आंख खुलती है और युग परिवर्तित होता है। ठीक है, आपने धर्म के हिसाब से उत्तर दिया, ठीक है। इसके अलावा हमारे श्रोता लिखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार,

10,000 लाख, 10 लाख करोड़, 10 करोड़ अरब, 10 अरब खरब, 10 खरब नील, 10 नील पद्म, 10 पद्म शंख, महाशंख, और इसके बाद ये रुक जाते हैं। तो अंत्य और महाअंत्य दो संख्याएं भी सुनने में आती हैं, और सागरोपम आयु की बात भी आती है। सागर, 6 सागर, 10 सागर, 15 सागर, 33 सागर, ये बात भी बड़ी आती है। हमारे श्रोता लिखते हैं, मुझे 2 खरब तक पता है, 1 खरब, 100 अरब, उसके बाद उन्होंने एक के बाद बहुत सारे शून्य लगाए हैं, और वो लिखते हैं इसमें बहुत सारे नंबर होते हैं, आखिरी में इन्फिनिटी होता है। बहुत सही बात है, भारत की संख्या अनंत है, खत्म ही नहीं होती, ये भाव भी बड़ा अच्छा है। हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं, अक्षौणी भी एक संख्या है। महाभारत के युद्ध में कौरव के पास 11 अक्षौणी सैनिक, तो पांडवों के पास 7 अक्षौणी सैनिक थे। और भी है, जैसे कल्प महाकल्प समय गिनती के लिए भी गिने जाते हैं। हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी चीजें बहुत अच्छे से बताई हैं, और बहुत तकनीकी रूप से बहुत सही तरीके से आपने बताई हैं, और उनको पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, अरब खरब नील पद्म शंख, और इसके बाद बुंदेलखंडी में अटैया बटैया भगवान की चुटैया। जी, ऐसे कई सारे अंक होते हैं बड़े प्यार से, और जिन्हें हम अपना लेते हैं। हमारे एक श्रोता बता रहे हैं, आज संडे की छुट्टी है, बेटी भी घर पर है, गवर्नमेंट बैंक में जॉब करती है, बैंक ऑफिसर है, तो वो लिख रही है रेडियो की पर आपकी प्रस्तुति सुन रही है, और हंसते हुए कह रही है कि अंक नहीं होंगे तो बैंक बंद हो जाएंगे, तो मेरी जॉब का क्या होगा। ये भी बड़ी चिंता है, चिंता का विषय है। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि बहुत ज्यादा तो नहीं पता, करोड़ तक तो पता है, उसके बाद खरब का भी पता है, शंख महाशंख बिंदु कुछ सुने हैं, एग्जैक्ट यूनिट नहीं पता है। तो एक काम करते हैं ना, कि आज जब हम ये सुन रहे हैं तो इसके बाद एक विचार कर लेते हैं कि भारतीय अंकों को जरा एक बार पढ़कर देखते हैं कि वो कहाँ तक जाते हैं और कैसे बनते हैं। क्योंकि हमारे घरों में हमको सुनाया जाता था कि बड़े प्यार से एक ताना भी होता था, फूटी कोणी में भी नहीं लेगा कोई ये सामान, कई सारी चीजों की बात आती थी, तो कहीं से शुरू होकर कहीं तक चला जाता था। और अब हम चल रहे हैं अगले गीत की तरफ, और अगला गीत हम आपको सौंप रहे हैं, और सौंपते सौंपते एक प्रश्न है आपसे, क्या आप किसी ऐसे ग्रंथ के बारे में जानते हैं जो केवल अंकों पर बना हो, अंकों से ही बना हो, ग्रंथ हो, किताब हो, कोई भी चीज हो, आपने कभी ऐसा कुछ काम किया है, पजल सॉल्व किए होंगे अंकों के, वर्ग पहेली भी एक आती है समाचार पत्र में, उसमें भी अंकों की आते हैं, तो आपने कभी ऐसा कुछ काम किया है, या ऐसा कोई ग्रंथ, ऐसी कोई किताब पढ़ी है जो केवल अंकों से बनी हो और केवल अंकों पर आधारित हो, अगर आपके पास कोई जानकारी है तो जरूर बताइएगा। और ये वाला गाना जो है ये एक पहेली है, इस पहेली का उत्तर भी दे दीजिए और बता भी दीजिए, और ये बता दीजिए कि इसके गीतकार कौन है।

हम सुन रहे थे मेरा नाम जोकर फिल्म से यह गीत आशा भोसले मुकेश और सिमी की आवाज में शंकर जयकिशन के संगीत के साथ। आपसे हमने प्रश्न पूछा था कि इस गीत के गीतकार कौन है, तो आप सभी बहुत समझदार हैं और बहुत अच्छे से उत्तर देते हैं। आप सभी ने बताया हसरत जयपुरी, तो बिल्कुल सही उत्तर है, उसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद। और ये गीत ऐसा लिखते हैं, मुझे तीतर की आवाज़ बहुत पसंद है, पूरी वादियां गूंजती हैं इस आवाज़ में। बिल्कुल सही बात है। हाँ, हमारे श्रोता लिख रहे हैं भास्कराचार्य द्वारा रचित ग्रंथ लीलावती अंक पर आधारित है, और एक ग्रंथ है आर्यभट्ट आर्यभट्टीय, यह भी अंक पर आधारित है। बिल्कुल सही। विष्णु धर्मोत्तर पुराण यह एक प्रमुख पुराण है जिसे विश्वकोश माना जाता है। संख्या गणना इसमें खगोल शास्त्र गणित काल समय विभाजन के अलावा ब्रह्मांड के माप का विस्तृत वर्णन भी है। इसके साथ न्यूमरोलॉजी सिर्फ अंकों पर ही आधारित होती है जी, हम इसे मान सकते हैं। हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छे से जिक्र किया है लीलावती ग्रंथ का, फिर से बात आई है, इन्हीं सभी ग्रंथों की बात फिर से आई है, और इस बात के लिए बहुत अलग अलग परंपराओं की बातें कही हैं और उन ग्रंथों के बारे में भी बताया है कि सुंदरी विद्या जो थी वो अंक विद्या कही जाती है, जो प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव ने अपनी पुत्री सुंदरी को 1 से 9 तक के अंकों को सिखा कर दी थी, ऐसा कहा जाता है। दशकुमार चरितम पंचतंत्र की कहानी पर आधारित मगर शीर्षक संख्या पर है। क्या बात है, इतनी सारी जानकारी मुझे भी मिल रही है, कई चीजें तो मुझे भी नहीं पता थी। मैं एक शिक्षक हूं, मगर आज बच्चों को 1, 2, 3 तो आते हैं, पर हिंदी के अंक 1, 2, 3, 4 ना पढ़ने में आते हैं ना लिखने में आते हैं। बहुत विचारणीय बात आपने कही है, और इसके साथ ही हमारे श्रोताओं ने इस बारे में बहुत सारे बातों को बताया है। और एक जानकारी मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ, भी थोड़े दिन पहले ये जानकारी मुझे भी कहीं से मिली थी, क्योंकि एक श्री भूवलय ग्रंथ है, इस ग्रंथ के बारे में बहुत सारी जानकारी सुनने में पढ़ने में आई है कि ये जो ग्रंथ है यह ग्रंथ भी ना केवल और केवल अंकों पर आधारित है, और इस ग्रंथ में बहुत सारी चर्चाएं की गई हैं, और इस ग्रंथ में जो भी बातें हैं जैसे तात्विक विचार है, वैद्यक अणु विज्ञान, खगोल शास्त्र, गणित शास्त्र, इतिहास, संस्कृति विवरण, वेद, भगवद गीता, सब कुछ समाहित है। और इसे लिखा था, पहले इस ग्रंथ को जो लिखा था वो कुमुदेंदु सूरी ने इसकी रचना की है, और इसके कई सारे अनुवाद किए गए हैं, और पहला कन्नड़ लिपि में 2003 में अनुवाद किया गया था, और इसमें 6 लाख पद्य हैं, और इस आकार के हिसाब से बहुत बड़ा ग्रंथ है। इसके बारे में भी जानकारी मुझे मिली थी, तो ये सारी जानकारियां आप जो दे रहे हैं, मैं जो दे रही हूं, हम सब इकट्ठी करते हैं और इन ग्रंथों के पढ़ने के लिए भी आगे बढ़ते हैं, ताकि हमें भी अपने इतिहास के बारे में जानकारी मिल जाए। और अब हमारे श्रोताओं ने कहा कि वो सुडोकू सॉल्व करते हैं, और मैं आपको बताऊं कि आप तो सॉल्व करते हो, कई सारे बच्चे सॉल्व करते हो, इस बात को देखा गया है कि जो सुडोकू सॉल्व करते हैं वो बच्चे बहुत होशियार होते हैं, क्योंकि उनको बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। हमारे श्रोता ने

का पहले जमाने में कोई इंसान को राजदंड के गुनाह में दंडित यानी दंड दिया जाता था, कोड़ी का दंड करते थे। तो हमारे यहाँ कहावत ये हो गई कि आदमी कोड़ी का भी नहीं है। जी, पांच सिद्धांतिका गणितीय पुस्तक है, विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे, वराह मिहिर के द्वारा रचित ये रचना है। जी बिल्कुल सही है। तो चलिए अब हम आपको अगले गीत की तरफ बनाते पहुंचाते हैं। और हमारे श्रोता ने बताया कि वो वर्ग पहेली सुलझाती हैं, बहुत अच्छी बात है। अंकों से वो दूर दूर तक नहीं जाती क्योंकि उन्हें कठिन लगती है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जब आप अंकों के पास जाते हैं तो अंक आपके दोस्त बन जाते हैं और ये अंक आपके जीवन में बहुत बड़ा किरदार निभाते हैं। तो अंकों से दोस्ती कीजिए। और सुनते हैं हम अगला गाना, पांच रुपया बारह आना। ये इस गीत के गायक कलाकारों के नाम बता दीजिए और सुनिए ये गीत।

तो आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरीला सफर विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर। तो ये प्यारा सा गाना हम सुन रहे थे चलती का नाम गाड़ी फिल्म से, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, सचिन देववर्मन का संगीत और गायक कलाकारों के नाम हमने आपसे पूछे थे तो आपने बड़ी मजेदार तरीके से उत्तर दिए हैं, किशोर कुमार और आशा भोसले। बिल्कुल सही। अब हम चल रहे हैं अगली कुछ बातों की तरफ और मैं आपके लिए दो प्रश्न देने वाली हूँ। हमारे श्रोताओं ने लिखा है कि भगवान स्वामीनारायण ने अपने ग्रंथ वचनामृत में भूगोल का वर्णन किया है। बिल्कुल सही है। बचपन में एक आना पांच पैसे का एक सिक्का और एक पैसे का तांबे का सिक्का मिलता था जी, छह पैसे का मिलता था जिसमें मलाई बर्फ पोकचा मिल जाता था जी। बिल्कुल सही बात है। 1978 में मैट्रिक इम्तहान में गणित कंपलसरी और ऑप्शनल दोनों में 100 में से 100 नंबर आए थे और इनका पसंदीदा विषय त्रिकोणमिति था। चलिए जल्दी से बताइए अगला प्रश्न यही है कि आपको गणित में कितने आए थे। ऐसे ऐसे सबके सामने गणित के अंक नहीं पूछने चाहिए, इस बात को मैं भी समझती हूँ, तो क्षमा कीजिएगा। हमारे श्रोताओं ने बताया कि ये फिल्म उन्होंने कल रात ही देखी और आज रात ही मतलब यानी कल रात ही उन्होंने देखी और बहुत हंसी वो इस बात पे। हमारे श्रोता ने बताया कि 18 अध्याय हैं श्रीमद् भागवत गीता में और 18 अध्याय को पढ़ना समझना बहुत बढ़िया बात है। आपने भी बहुत रोचक बात साझा की। हमारे श्रोता लिखते हैं, अरे वो संभा कितने आदमी थे सरदार, दो देखा, गब्बर का फेमस डायलॉग भी अंकों पर आधारित जी। बहुत सुंदर सुंदर बातें हमारे श्रोताओं ने लिखा है और हमारे श्रोताओं ने मैं जिस ग्रंथ की बात कर रही थी उस ग्रंथ के बारे में जिक्र भी किया था जिसके बारे में उन्होंने मुझे बताया। मैं आपके सामने अगला प्रश्न रख रही हूं क्योंकि मैंने इतने सारे गीत आपको सुनाए हैं और तो एक दर्द देना तो बनता है और वो दर्द ये है कि बताइए रोमन अंकों में एक एक्स लिख दिया जाता है, एक्स अंग्रेजी अल्फाबेट का एक्स वाई जेड का एक्स है ना, तो एक्स का मतलब क्या होता है? जल्दी से बताइए कि एक्स का मतलब क्या होता है और ये दर्द मेरी तरफ से आपके लिए।

इस गीत के साथ ही हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि एक्स का अर्थ क्या होता है रोमन अंकों में, और आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया, 10 होता है। और इस 10 के साथ मैं एक अंतिम प्रश्न में आप तक पहुंचा रही हूं, और ये अंतिम प्रश्न ये है कि अंकों की दुनिया में एक कविता है अंकों की, गुलजार ने लिखी है, वो कविता का शीर्षक अगर आप मुझे देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और ये जो अगला गीत है, इस गीत के गीतकार का नाम बता दीजिए, और सुनिए ये गीत जो आप सबको पसंद है।

the table.

हम सुन रहे थे तेजा फिल्म का यह गीत अलका याग्निक और साथियों की आवाज में। हमने आपसे पूछा कि इसके गीतकार कौन हैं। गीतकार हैं जावेद अख्तर। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजा हुआ ये गीत।

और हमने आपसे पूछा था गुलजार की वो कविता जिसे आप सुनते हैं और जिसमें अंकों की बात की गई है, तो एक शरीर में कितने दो, दस तोला, बोसाकी का पंचतंत्र, ऐसी कई सारी कविताएं हैं और केवल एक ने नहीं कई सारे लोगों ने लिखी हैं और हम उन सबको सुन रहे हैं। ऐसे ही गणित और अंक आपके जीवन में सदा साथ रहे। हमारी श्रोता ने बताया कि उनको गणित में कम नंबर आते थे लेकिन उनके जो बच्चे हैं वो शत प्रतिशत अंक लगभग लेकर आने लगे हैं और ये बात सच है कि बच्चे मेहनत करते हैं तो माता पिता को बहुत प्रसन्नता होती है। आज के इस कार्यक्रम सुरीला सफर में बस इतना ही। गणित के साथ पले बढ़े, खेले और आगे बढ़े, बस यही जीवन है। बहुत धन्यवाद।

नमस्कार। आज त्रिवेणी में उस तैयारी की बात जो भीड़ में भी अलग से पहचान बनाती है। ये तो सच है कि भीड़ में भी केंद्र बिंदु बन के ज्यादातर तैयारी पहली तैयारी पहनावे की होती है। ये सच है कि सुरुचिपूर्ण पहनावे और रखरखाव से व्यक्तित्व प्रभावशाली बनता है और पहले पहल ध्यान भी आकर्षित करता है। लेकिन असली प्रभाव का पता तब लगता है जब कोई सूटेड बूटेड व्यक्ति या सजी सवरी महिला मुंह खोलते हैं, यानी बात करते हैं। बात करने का सलीका सिर्फ समाज में ही नहीं, घर में भी कमाल का असर दिखाता है। क्रोध में आपाद मस्तक डूबा घर का कोई सदस्य भी प्यार मनुहार से मान जाता है। यही तो है संवाद कौशल, यानी बातचीत का ढंग। बात कहने की कला का मतलब ना तो बातें बनाना है और ना ही बातों में उलझाना है, बल्कि अपनी बात इस तरह रखना है कि सुनने वाले व्यक्ति पर उसका पूरा असर हो। ये तभी होगा जब विचार स्पष्ट, शब्द और टोन संयत हो और अपनी बात कहने के साथ ही दूसरे को भी कहने का मौका मिलेगा।

0: सुनिए
1: कहिए कहिए
0: सुनिए सुनिए
1: कहिए हाँ हाँ
0: सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा।
2: पहले सोचो फिर बोलो, बचपन की ये सीख बड़े काम की है, क्योंकि इसी से समय स्थान और परिस्थिति का ध्यान रखकर बोलने की आदत पड़ती है। सामने सामने बातें हो रही हों या मंच से अपनी बात कही जा रही हो, बोलते वक्त समय पर नजर रहे, साथी किस तरह बात करनी है इसका भी ध्यान रहे, तभी तो बातों में वजन आता है। बिना सोचे समझे बोलने के बजाय चुप रहकर सुनना कहीं अच्छा है। बहुत पुरानी या पहले की बातों पर ध्यान देना यूं तो जरूरी है, उदाहरण के लिए अतीत का जिक्र किया जा सकता है अगर कोई सलाह देनी हो, लेकिन बातचीत का संदर्भ वर्तमान से जुड़ा रहे तभी बातों का असर होता है।

बातचीत में टोन यानी लहजा भी बहुत खास भूमिका निभाता है। कैसे किसी को संबोधित किया जाता है, किसी बात पर कैसे असरदार ढंग से हामी भरी जाती है या बिना किसी को चोट पहुंचाए असहमति प्रकट की जाती है, ये जताने में टोन साथ देती है। बात संयत ढंग से मीठे लहजे में कही जाए तो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपनी बात रखी जा सकती है। तुलसीदास जी ने कहा भी है, कोयल काको देत है कागा कासो लेत, तुलसी मीठे वचन ते जग अपनो कर लेत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 2:15 होने वाले हैं, बस थोड़ी ही देर में हम समाचार प्रसारित करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत जीएफएस गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की। 10 भारतीय सुरक्षित बचाए गए, एक लापता। क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर भारत ने चिंता जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे, इस दौरान कई समझौते हुए। गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने निजी भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने के लिए 6 महीने की माफी योजना शुरू की। विंबलडन टेनिस में आज शाम पुरुष सिंगल्स के फाइनल मुकाबले में यानिक सिनर और अलेक्जेंडर ज्वेरेव होंगे आमने सामने। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड और अर्जेंटीना ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। भारत ने आज ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत जीएफएस गैलेक्सी पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक अब भी लापता है। मंत्रालय ने बताया कि ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर चिंता जताई है। मंत्रालय ने तनाव तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए जारी वार्ता को जल्द पूरा करने का आह्वान किया है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप क्षेत्र के समुद्री मार्गों पर निर्बाध और सुरक्षित नौवहन तथा व्यापार जल्द से जल्द बहाल किए जाने की बात कही है। अमेरिका ने आज सुबह ईरान पर फिर से हवाई हमले किए हैं। ये हमले ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर हमला किए जाने के बाद किए गए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि हमलों में ईरान के लगभग 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इस बीच ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने अगली सूचना तक होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की है और चेतावनी दी है कि यदि अमरीकी हमले जारी रहे तो वो भी जवाबी कार्रवाई करेगा। विदेश मंत्रालय ने वर्ष 2017 में जारी यमन यात्रा संबंधी अधिसूचना वापस ले ली है। ये अधिसूचना यमन में गृहयुद्ध और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के कारण भारतीय नागरिकों की यात्रा पर प्रतिबंध लगाने के लिए जारी की गई थी। हालांकि मंत्रालय ने परामर्श जारी कर भारतीय नागरिकों को यमन की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की सफल यात्रा पूरी कर स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी की

0: इस महत्वपूर्ण यात्रा की प्रमुख उपलब्धियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीन देशों के दौरे के पहले चरण में इंडोनेशिया का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और दोनों देशों के बीच चल रहे सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों देशों ने रक्षा, दुर्लभ खनिज, कृषि, समुद्री सुरक्षा और अंतरिक्ष जैसे कई क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्ण से सम्मानित किया गया। इस दौरे के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, जहां उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस यात्रा के दौरान ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम की आपूर्ति का रास्ता भी साफ हुआ। साथ ही ऑस्ट्रेलिया सुपर ने भारत के नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 50 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश की घोषणा की। अपने दौरे के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत की घोषणा की। इसके अलावा दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक आपसी व्यापार को दुगना करने का लक्ष्य तय किया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि भारत हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक मजबूत और विश्वसनीय शक्ति के रूप में उभरा है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत के रणनीतिक संबंध और मजबूत हुए हैं।
2: हम एक स्टेबिलाइजिंग फोर्स बनके इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन में आज उभर पाए हैं, इसी को प्रधानमंत्री एक साथ लेके आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने परिश्रम से, अपने स्टेट्समैनशिप से अपने पॉलिसी को भारत में लागू करके बाकी देशों को दिखाया और सभी देशों ने एक्सेप्ट किया कि यस, लेट दिस बी द फ्रेमवर्क, लेट इंडिया डिसाइड द फ्रेमवर्क। हम इस फ्रेमवर्क पे एक लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन, आप सोचिए ये कितनी बड़ी जीत है।
0: श्री संबित पात्रा ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने बताया कि भारत और ऑस्ट्रेलिया ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया है। इसके तहत दोनों देशों के युद्धपोत एक दूसरे के डॉक पर सर्विसिंग करा सकेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने माफी योजना 2026 शुरू की है। इसके तहत छूट प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट चलाने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने का एक मुश्त अवसर दिया गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बताया कि यह योजना 6 महीने तक लागू रहेगी। इसका लाभ उन प्रतिष्ठानों को मिलेगा जो आयकर अधिनियम 1961 के तहत मान्यता प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट का संचालन कर रहे हैं। ऐसे ट्रस्ट में कर्मचारी भविष्य निधि का प्रबंधन सीधे ईपीएफओ के बजाय संबंधित प्रतिष्ठान अपने निजी ट्रस्ट के माध्यम से करता है।
3: ईपीएफओ की यह मिनिस्ट योजना मान्यता प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट चला रहे पात्र संस्थानों को नियमित करने का एक और अवसर प्रदान करती है। इस योजना के तहत वे अपने ट्रस्ट की स्थिति को पिछली तारीख से नियमित करा सकते हैं। इसका उद्देश्य ऐसे ट्रस्टों को एक समान वैधानिक व्यवस्था के दायरे में लाना और सभी लागू कानूनी प्रावधानों के पालन को सुनिश्चित करना है। कर्मचारियों के लिए यह योजना उनके नियोक्ता के भविष्य निधि ट्रस्ट की कानूनी स्थिति को लेकर अधिक स्पष्टता और भरोसा प्रदान करेगी। योजना के तहत निर्धारित राहत का लाभ तभी मिलेगा जब सदस्यों के खातों में निर्धारित अवधि के दौरान अंशदान जमा किया गया हो और उस पर ईपीएफओ की वैधानिक ब्याज दर के बराबर या उससे अधिक ब्याज दिया गया हो। छूट प्राप्त पीएफ ट्रस्टों को नियमित किए जाने से भविष्य निधि लाभों का प्रबंधन अधिक सरल, सुव्यवस्थित और कानूनी प्रावधानों के अनुरूप होने की भी उम्मीद है। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: योजना का लाभ लेने के लिए पात्र प्रतिष्ठानों को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में ईमेल के माध्यम से औपचारिक आवेदन भेजना होगा। देशभर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के व्यापक पौधारोपण अभियान के अंतर्गत 35 करोड़ पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सतत भविष्य सुनिश्चित करने तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने को लेकर चिंतित है।
4: वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा, वनों की कटाई, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में 405 करोड़ रुपए की लागत वाली नगर निगम की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर

0: पर श्री शाह ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से अधिक पौधे लगाए गए। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: गृह मंत्री ने बरगद, पीपल, जामुन और अर्जुन जैसे स्वदेशी पौधे लगाने पर जोर दिया, जिससे शहर के तापमान में 5% की कमी आएगी और भावी पीढ़ियों के लिए एक रहने योग्य पर्यावरण सुनिश्चित होगा। उन्होंने पर्यावरण स्थिरता में योगदान देने के लिए हर घर और आवासीय सोसाइटी से सोलर रूफटॉप अपनाने का भी आह्वान किया। इस पर्यावरण अभियान के तहत आज 101 नए ऑक्सीजन पार्क का भी उद्घाटन किया गया और उनकी जानकारी देने वाली एक विशेष ई बुक भी जारी की गई। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए AMTS और BRTS के बेड़े में आज 333 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की गई, जिससे अहमदाबाद BRTS देश का पहला 100% इलेक्ट्रिक और शून्य प्रदूषण वाला बेड़ा बन गया है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज कहा कि देश के समाज सुधारकों की महान विरासत का सम्मान करना और उसे बनाए रखना हर नागरिक का कर्तव्य है। श्री राधाकृष्णन ने नई दिल्ली के द्वारका में मन्नम इंटरनेशनल सेंटर में मन्नम स्मृति मंडपम का उद्घाटन के अवसर पर यह बात कही। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत एक पौधा भी लगाया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने आज बताया कि फू क्वोक द्वीप के निकट कल हुई नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन सिटी ले जाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने कहा कि वहां आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पार्थिव शरीरों को भारत लाया जाएगा। इससे पहले दूतावास ने बताया था कि नौका दुर्घटना में घायल 15 भारतीयों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और वे भारत लौट रहे हैं। दक्षिण की कोकिला के रूप में प्रसिद्ध रही गायिका एस जानकी अम्मा का कर्नाटक के मैसूर में एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे 88 वर्ष की थीं।
2: छह दशक से अधिक लंबे अपने संगीत सफर में एस जानकी ने कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी सहित कई भाषाओं में लगभग 48,000 गीतों को अपनी आवाज दी। अपनी बहुमुखी गायकी और भावपूर्ण प्रस्तुति के कारण उन्हें नाइटिंगेल ऑफ द साउथ के नाम से जाना जाता है। एस जानकी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका के लिए 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुए। इसके अलावा उन्हें 33 राज्य फिल्म पुरस्कार भी मिले। वर्ष 2013 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इस जानकी के निधन से भारतीय फिल्म संगीत जगत ने एक ऐसी महान स्वर साधिका को खो दिया है, जिनकी आवाज आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा और विरासत बनी रहेगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एस जानकी अम्मा का निधन संगीत और संस्कृति जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने खाड़ी देश को कूटनीति, मीडिया और निवेश के क्षेत्र में प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया था। उन्होंने अल जजीरा समाचार नेटवर्क की भी शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के पूर्व अमीर शेख के निधन पर दुख व्यक्त किया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ है आनंद पाठक।
3: फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहला सेमीफाइनल बुधवार को फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 12:30 बजे से शुरू होगा। दूसरा सेमीफाइनल गुरुवार को इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड ने नॉर्वे को अतिरिक्त समय में 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की, जबकि अर्जेंटीना ने आज सुबह स्विट्जरलैंड को 3-1 से हराया। दोनों सेमीफाइनल मुकाबलों के विजेता 20 जुलाई को न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में खिताबी मुकाबले में आमने सामने होंगे। सेमीफाइनल की दोनों पराजित टीमें 19 जुलाई को मियामी में तीसरे स्थान के लिए प्लेऑफ खेलेंगी। टेनिस में आज विंबलडन के पुरुष सिंगल्स और महिला डबल्स के फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। पुरुष सिंगल्स के फाइनल में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी यानिक सिनर का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे शुरू होगा। महिला डबल्स के फाइनल में चीन की गुओ हनयू और फ्रांस की क्रिस्टीना मलादेनोविक की जोड़ी का मुकाबला कनाडा की ग्रेबियेला ड्रोवास्की और ब्राजील की लुइसा स्टेफनी की जोड़ी से होगा। ये मैच शाम 5:30 बजे खेला जाएगा।
0: और अब बात मौसम की।

0: मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गंगा के मैदानी इलाकों, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर आज तेज वर्षा हो सकती है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, पंजाब और उत्तराखंड में भी आज इसी तरह की स्थिति बने रहने का अनुमान है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत जीएफएस गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की। 10 भारतीय सुरक्षित बचाए गए, एक लापता। क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर भारत ने चिंता जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे, इस दौरान कई समझौते हुए। गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने निजी भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने के लिए 6 महीने की माफी योजना की शुरुआत की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की।
2: आकाशवाणी अहमदाबाद वडोदरा, प्रादेशिक समाचार जयेश पटेल वाचे छे। केन्द्रीय गृह ने सहकार मंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में महानगरपालिका 405 करोड़ रूपया विकास कार्यो उद्घाटन और खातमुहूर्त कर। आ प्रसंगे श्री शाहे एक पेड़ मां के नाम अभियान हेठ एक विशाळ वृक्षारोपण अभियान शुरू कर्यू, जेमां आजे तेमना लोकसभा मतविस्तार गांधीनगर में 1,25,00,000 थी वधु छोड़ वावेतर करवामां आव्यु। सभा ने संबोधता श्री शाहे 2029 की चूंटणी सुधी में मतविस्तार हरित आवरण ने 20% सुधी वधारवा माटे लांबा गाळाना पर्यावरणीय रोडमेप पर प्रकाश पाड्यो अने नागरिकों ने सोलर रूफटॉप अपनावा अनुरोध कर्यो।
3: गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में साणंद, गांधीनगर, कलोल और अमदावाद शहर ए बधु विस्तृत मलिन आपणे 11.23% ग्रीनरी वधारी छे। हूँ 2029 नी चूंटणी सुधी में 20% ग्रीनरी वधारवानो मारो व्यक्तिगत संकल्प।
2: मंत्रीए भार मूक्यो कि वड, पीपळो, जांबु अने अर्जुन जेवी स्वदेशी प्रजातिओनो वावेतर शहेरना तापमानमां 5% घटाडो करवामां, ओझोन स्तरने मजबूत बनावामां अने भावी पेढ़ीओ माटे रहेवा योग्य वातावरण सुनिश्चित करवामां मदद करशे। मिशन 5 मिलियन ट्री अंतर्गत शहेरमां हरियाळी अने पर्यावरण संरक्षणने प्रोत्साहन आपता हेरिटेज पार्क तेमज 101 ऑक्सिजन पार्क अने अर्बन फॉरेस्टनो लोकार्पण करता तेमणे कह्युं कि आजे अमदावाद महानगरपालिकाए वातावरणने स्वच्छ बनावा माटेनो भगीरथ कार्य कर्युं छे।
3: गांधीनगर क्षेत्र में 12 ऑक्सीजन पार्क था, आजे नवा 61 ऑक्सीजन पार्क खुला मुक्या। टोटल 73 ऑक्सीजन पार्क गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में था। आजे एक दिवसे अमदावाद म्युनिसिपल कोर्पोरेशने 101 ऑक्सीजन पार्क नु उद्घाटन कर्यु।
2: पर्यावरणीय प्रोत्साहन भागरूपे श्री शाहे 101 नवा ऑक्सीजन पार्कन उद्घाटन कर्यू अने तेमनी विगतों मैपिंग करती समर्पित ई बुक बहार पाड़वामां आवी। जाहिर परिवहन ने मोटो प्रोत्साहन आपता एमटीएस अने बीआरटीएस काफला में 333 नवी इलेक्ट्रिक बसों समावेश करवामां आव्यो, जेनाथी अमदावाद बीआरटीएस 100% इलेक्ट्रिक शून्य प्रदूषण काफला संचालन करनार देशनो प्रथम शहर बन्यो। आवतीकाले गृहमंत्री गांधीनगरमां नेशनल फोरेन्सिक सायन्स युनिवर्सिटी खाते 11मी इंटरपोल डिजिटल फोरेन्सिक एक्सपर्ट ग्रुप मीटिंग अने प्रथम आंतरराष्ट्रीय तपासकर्ता गुना स्पर्धानो उद्घाटन करवाना छे। राज्यपाल आचार्य देवव्रतनी अध्यक्षतामां जामनगरना चेम्बर ऑफ कॉमर्स खाते गर्भ संस्कार, गर्भ विज्ञान प्रशिक्षण दीक्षांत समारोह अने राष्ट्रीय संगोष्ठी कार्यक्रमनो आयोजन करवामां आव्युं हतुं। आ कार्यक्रममां राज्यपाले जणाव्युं कि भारतनी वैदिक ज्ञान परंपरा, ऋषि मुनिओनुं संशोधन अने प्राचीन शास्त्रो मानवजातना सर्वांगी विकास माटेनो अमूल्य वारसो छे। आधुनिक विज्ञान अने प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरानो समन्वय करीने संशोधन करवामां आवे तो समग्र विश्वने नवी दिशा मळी शके तेम छे। મહેસાણાના પ્રખ્યાત ઊંઝાના જીરૂને ભૌગોલિક સંકેત જીઆઈ ટેગ મળ્યો છે। અમારા પ્રતિનિધિ જયંતિ ચૌધરી જણાવે છે કે ઊંઝા માટે આ ઐતિહાસિક ગૌરવ છે કે ભારત સરકારની જીઆઈ નોંધણી સંસ્થા દ્વારા ઊંઝાના જીરૂને સત્તાવાર જીઆઈ ટેગ એનાયત કરાયો છે। ઊંઝાના ખેડૂતો, વેપારીઓ અને કૃષિ ક્ષેત્ર માટે આ ઐતિહાસિક સિદ્ધિ છે, જેનાથી હવે વિશ્વભરમાં ઊંઝાનું જીરૂ ઊંઝા જીરા નામથી આગવી ઓળખ મેળવશે। મહેસાણા

0: हम सुन रहे थे राजहट फिल्म से यह गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में, हसरत जयपुरी के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
2: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
1: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। सुन रहे हैं कार्यक्रम

सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं सदाबहार नगमे का अगला गीत, जो है फिल्म झनक झनक पायल बाजे से। मोहम्मद रफी, आशा भोसले और साथियों की आवाजें हैं। हसरत जयपुरी के हैं बोल और वसंत देसाई का है संगीत।

थे तत आ थे तत मुरली की धुन सुन आई दा थे जमुना के तट पर नीरत करत उत हिरत फिरत उत हिरत फिरत ऐसे चंद्र तपन दिग्नाद दिग्नाद दिग्नाद दिग्नाद दिग्नाद दिग्नाद दिग्नाद दिग्नाद दिग्नाद दिग्नाद दिग्नाद दिग्नाद दिग्नाद दिग्नाद दिग्नाद दिग्नाद दिग्नाद दिग्नाद दिग्नाद दिग्नाद दिग्नाद दिग्नाद दिग्नाद दिग्नाद दिग्नाद दिग्नाद दिग्नाद दिग्नाद दिग्नाद दिग्नाद दिग्नाद दिग्नाद दिग्नाद दिग्नाद दिग्नाद दिग्नाद दिग्नाद दिग्नाद दिग्नाद दिग्नाद दिग्नाद दिग्नाद दिग्नाद दिग्नाद दिग्नाद दिग्नाद दिग्नाद दिग्नाद दिग्नाद दिग्नाद दिग्नाद दिग्नाद दिग्नाद दिग्नाद दिग्नाद दिग्ना

या लहकी मृदंग ठनका झट झट झट झट नगिन दे दे सगन नदादा किट झट झट झट झट झट झट सगन का सगन का किट झट झट सगन का जी सगन नदा साधा किट झट सगन का साधगन का मान गई राधा मान गई राधा मान गई राधा साथ यथ यथ साथ यथ यथ साथ यथ यथ।

0: हम सुन रहे थे परिवार फिल्म का यह गीत, लता मंगेशकर मन्ना डे की आवाजों में, शैलेंद्र के बोल और सलिल चौधरी के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर। कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगर।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे में मिस्टर एंड मिसेस 55 फिल्म से गीता दत्त मोहम्मद रफी की आवाजों में मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और ओपी नैयर के संगीत के साथ।

हम सुन रहे थे ये गीत बड़ा भाई फिल्म से। आशा भोसले और तलत महमूद ने इसे गाया, प्रेम सक्सेना ने इसे लिखा और नाशाद ने इसे संगीतबद्ध किया। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का अंतिम गीत, जो है नया दौर फिल्म से। मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ें हैं, साहिर लुधियानवी के बोल हैं और ओपी नैयर का है संगीत।

0: बढ़ाना।
1: और इसी के साथ समाप्त होता है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में प्रस्तुत होगा कार्यक्रम मनचाहे गीत।

0: मन चाहेगी।
1: मन चाहेगी,
0: मन चाहेगी।
2: मन चाहे गीत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं कुछ नियम मन चाहे गीत कार्यक्रम के।
3: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
4: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियां एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
3: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
4: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
5: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजने कहाँ है?
3: कार्यक्रम मन चाहेगी,
4: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
5: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।

मन चाहे गीत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। सभी पसंद करते हैं इस कार्यक्रम को, इंतजार करते हैं अपनी बारी के बारे में भी कि हमारी बारी कब आएगी और हमारा गीत कब आएगा। तो चलिए चलते हैं इस गीत की तरफ जो कि है थोड़ी सी बेवफाई फिल्म से। लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाजें हैं, गुलजार के बोल हैं, खयाम का संगीत है। जानेंगे इस गीत के बाद कि पसंद किया है किसने।

थोड़ी सी बेवफाई फिल्म का यह गीत हम सुन रहे थे और हमने कहा था कि बाद में बताएंगे कि पसंद किसकी है, तो पसंद किया है कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज ने। ये कई बार हमारा मन होता है ना कि हमारा नाम रेडियो पर आ जाए, या कई बार मन होता है कि हमारा पसंदीदा गीत हमारे कानों में पड़ जाए, और शायद इन दोनों की पूर्ति करने का नाम ही है मनचाहे गीत। तो चलिए मनचाहे गीत में आपका मनचाहा गीत यानी आपकी पसंद में से किसी एक की

पसंद का अगला गीत हम आपके को सुनाने वाले हैं. बड़ा प्यारा सा गीत है और इसे मांगा है चंडीगढ़ पंचकुला सेक्टर 9 से आशु अश्विनी गोविंद चुद परिवार ने और टोनी दीवान ने. ये बहुत सुंदर सा गीत है, आइए सुनते हैं इसे और आप अपनी फरमाइशें यानी अपनी पसंद हमारे पास यूं ही उसी डाकिया उसी पोस्ट कार्ड उसी लाल काले डब्बे के साथ भेज सकते हैं. ढेर सारी आशीर्वाद प्रेम और स्नेह के साथ भेजिएगा जरूर अपनी पसंद.

सौतन फिल्म का गीत हम आपको सुनवा रहे थे। ये लता मंगेशकर ने गाया, सावन कुमार ने इसे लिखा और उषा खन्ना ने इसे संगीतबद्ध किया। इस गीत को मांगने वालों की बात, इनकी इस गीत को पसंद करने वालों के बारे में हम आपको बता चुके हैं, लेकिन अब हम चल रहे हैं हमारे अगले गीत की तरफ। कई बार हमारे श्रोता हमें ही हैरत में डाल देते हैं और कहते हैं कि आप अपनी पसंद का कोई गीत सुना दीजिए। तो चलिए, हमारे जिन श्रोताओं ने हमसे हमारी पसंद के गीत मांगे हैं उनका नाम हम आपके सामने बता देते हैं और उसके बाद सुनवा देते हैं अपनी पसंद का एक गीत। हमारे श्रोताओं में गांव नागड़ावास तहसील मालिया या मियाना से कुछ हमारे श्रोता हैं। गुलाम रसूल राउमा, दिलावर राउमा, रियाज राउमा, इरसाद राउमा और शम्स राउमा, इन सभी ने हमारी पसंद का गीत सुनने को कहा। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

हम सुन रहे थे मेरा साया फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में, राजा मेहंदी अली खान के बोल और मदन मोहन के संगीत के साथ ये गीत। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और बड़ा प्यारा सा कार्यक्रम मनचाहे गीत, जो हम सभी पसंद करते हैं। और उसी मनचाहे गीत में एक और चिट्ठी हमारे पास आती है, और बड़ा अच्छा लगता है जब ये पोस्ट कार्ड हमारे हाथों में बहुत समय के बाद वापस आते हैं, तो बड़ी खुशी मिलती है। और हमारे श्रोता हैं बोरोले नगर चौपड़ा महाराष्ट्र से, उनका नाम है मच्छिंद्र पाटिल, कल्पना पाटिल। उन्होंने फरमाइश की है अगले गीत की, यानी अगला गीत मांगा है उन्होंने, तो आइए सुनते हैं वो अगला गीत उनकी पसंद का।

हम सुन रहे थे वापस फिल्म का यह गीत मोहम्मद रफी लता मंगेशकर की आवाज में, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। आइए सुनते हैं अगला गीत हमारे अगले श्रोता की पसंद का, जो कि उन्होंने भेजा है उदयपुर से। ये खत हमारे पास आया है, एक पीला पोस्ट कार्ड जिस पर बहुत मोहब्बत से लिखा गया है कि ये गीत उन्होंने हमसे मांगा है। नाम है अशरफ खान, जब्बार मोहम्मद, नजीब खान और मंजू निम्मी, इन सब ने मांगा है ये गीत नाग मंदिर फिल्म से। बहुत खूबसूरत सा गीत है, आइए सुनते हैं।

0: हम सुन रहे थे नाग मंदिर फिल्म का यह गीत मोहम्मद रफी की आवाज में असद भोपाली के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। और कार्यक्रम मनचाहे गीत यहीं पर समाप्त होता है। आगे भी आपकी इसी तरह के पोस्ट कार्ड और चिट्ठियों का इंतजार रहेगा हमें। आप अपनी चिट्ठियां भेजते जाइए और हमारे साथ जुड़ते जाइए मनचाहे गीत कार्यक्रम में। नमस्कार।
1: मनचाहे गीत।

सूखा पेड़ किसी को छाया भी नहीं दे सकता, लेकिन यदि कोई स्वयं छाया बनकर सूखे पेड़ को धूप से बचाना चाहे तब उसे क्या करना चाहिए? इसी भाव भूमि पर खड़ा है ये सूखा पेड़, यानी आज का हमारा नाटक। तो आइए सुनते हैं लेखक और प्रस्तुतकर्ता लोकेंद्र शर्मा का नाटक सूखा पेड़।

0: रिकॉर्ड प्लेयर? रिकॉर्ड बजाकर कहाँ चले गए सब?
1: सब नहीं गए, मैं हूँ।
0: ओहो जीजा जी, मगर आप ये अंधेरा करके क्यों बैठे हैं?
1: यूं ही बत्ती जलाने को मन नहीं किया, वैसे भी अंधेरे में संगीत अच्छा लगता है, नहीं?
0: अच्छा तो लगता है बाबा, मगर ये है गलत।
1: गलत क्यों? अरे ये बंद क्यों कर दिया?
0: गलत इसलिए श्रीमान जीजा जी, क्योंकि अब आप अकेले नहीं हैं, मैं घर आ चुकी हूँ। और बंद इसलिए किया क्योंकि आप शाम के समय सुबह का राग सुन रहे थे। देखिए देखिए खिड़की से बाहर।
1: भाई अब हम तुम्हारी तरह संगीत का हिसाब किताब तो जानते नहीं, बस कुछ सुनने को जी किया सो तुम्हारी अलमारी में से रिकॉर्ड निकाला और बजाने लगे। अब अकेले बैठे बैठे दीवार आखिर कब तक घूरे?
0: अकेले? मगर पल्लू कहाँ है?
1: कहकर तो गई थी कि क्लब जा रही है, मगर इस समय कहाँ है वो नहीं मालूम।
0: ओहो ये अच्छी छुट्टियाँ बिताने आए हैं आप दोनों मियाँ बीबी नैनीताल, एक पूरब को जाता है दूसरा पश्चिम को, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता।
1: समझ में तो मेरी भी कुछ नहीं आता मीनाक्षी, इसलिए मैंने तो समझने की कोशिश ही छोड़ दी है। पर एक बात बताओगी?
0: पूछिए।
1: कुछ चाय वाय पिलाने का प्रोग्राम हो सकता है क्या?
0: ओ श्योर श्योर, क्यों नहीं, जरा कपड़े बदल लूं, दिन भर के पहनी हुई साड़ी है ना।
1: अच्छी बात है, तुम साड़ी बदल कर आओ, तब तक मैं किचन में जाकर गैस पर पानी रखता हूँ।
0: क्यों, आप क्यों, ये काम आपका नहीं है और आप तो वैसे भी मेहमान है मेरे।
1: मेहमान तो इस दुनिया में सभी है मीनाक्षी देवी।
0: बस बस रहने दीजिए, अब फिलोसफी की क्लास मत शुरू कीजिए, वैसे ही दिन भर स्कूल में पढ़ा कर आ रही हूँ।
1: पढ़ा कर आ रही हो क्या, इसीलिए मुझे भी स्टूडेंट समझकर डांटोगी?
0: नहीं बाबा, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि आप चुपचाप बैठिए, चाय मैं बनाऊंगी।
1: चाय भले ही तुम बनाओ मीनाक्षी, पर चुपचाप बैठने के लिए मत कहो, सारा दिन बीत गया है बिना बोले।
0: पल्लू क्या सुबह ही चली गई थी?
1: गई तो तीसरे पहर थी, मगर दो पहर तक सोई, उसके बाद घंटे भर नहाई, फिर घंटे भर सिंगार किया, फिर चली गई।
0: दिल्ली में भी ऐसे ही चलता है क्या?
1: कभी खुद ही आकर देखो ना।
0: यानी अगर खुद आकर देखना मुमकिन नहीं हो तो आप बताएंगे नहीं?
1: बताने जैसा कुछ है ही क्या।
0: सच कह रहे हैं, कुछ नहीं है।
1: देखो अब तुम चाय बनाने की बात को गोल मत करो।
0: ओह सॉरी, मैं चेंज करके ये आई
1: और मैं किचन में ये गया।
0: जाइए मगर कीजिएगा कुछ नहीं।
1: नहीं करूंगा बाबा, मगर वहाँ बैठकर तुम्हें चाय बनाते हुए देख तो सकता हूँ।
0: ओहो मुझे देखने का प्रोग्राम है, तब तो जरा बन संवर कर आना पड़ेगा।
1: जैसे भी जाइए, अब आप जल्दी से जाइए और खटा

0: पल्लू, क्या तुम सचमुच खाना नहीं खाओगी?
1: अरे कहा ना बाबा, मिसेस सिन्हा ने मुझे आज इतना इतना खिला दिया है कि लगता है कल तक भूख ही नहीं लगने वाली।
0: हम लोग तो तुम्हारा इंतजार कर रहे थे।
1: अच्छा,
0: मालूम है आज जीजा जी ने अपने हाथों से आलू के पराठे बनाए हैं।
1: ओहो, तो फिर अभी तक खाए क्यों नहीं?
0: तुम्हारा इंतजार कर रहे थे ना।
1: लेकिन प्रभाकर को तो मालूम था कि आज मेरा डिनर मिसेस सिन्हा के साथ है।
0: ये मिसेस सिन्हा से बड़ी जल्दी दोस्ती कर ली तुमने।

0: अभी 10 दिन ही तो हुए हैं तुम्हें नैनीताल आए हुए।
1: अरे 10 दिन तो बहुत है यार, दोस्ती तो 10 मिनट में हो सकती है।
0: कभी कभी तो 10 बरस में भी नहीं होती पल्लू।
1: हाँ नहीं होनी हो तो 10 जन्म तक नहीं होती। पर तू जाना, जाके पराठे खा ले, मैं तो जरा देर रजाई में बैठूंगी। हाथ पांव तो सुन हुए जा रहे हैं। बाप रे बाप, तेरी नैनीताल की रातें तो बहुत ही ठंडी हैं यार।
0: कॉफी पियोगी क्या?
1: कॉफी तो ऐसा कर, पहले तुम लोग जाके खाना खा लो।
0: मेरी एक बात मानिए जीजा जी।
2: कौन सी?
0: आप एक पराठे की दुकान खोल लीजिए, गर्मा गर्म आलू के पराठे। मजा आ गया।
2: अच्छे लगे तुम्हें?
0: कह तो रही हूँ, मैं आपकी दुकान की परमानेंट ग्राहक बनने को तैयार हूँ।
2: ना बाबा ना, तुम जैसी पेटू को ग्राहक बनाकर दिवाला नहीं निकालना मुझे अपनी दुकान का।
0: क्यों क्यों क्यों?
2: क्योंकि तुम खाओगी उधार और मेरा हो जाएगा बंटा ढार।
0: बंटा ढार तो लगता है आज अपना हो गया है। ओह, इतना खा लिया है कि अब उठा भी नहीं जा रहा।
2: तुम मत उठो ना, बैठी रहो, कुछ देर और बातें करते हैं।
0: यहाँ डाइनिंग टेबल पर? मालूम है क्या टाइम हो गया है? 9 बज चुके हैं रात के, और सर्दी के मारे कुल्फी जमी जा रही है। चलकर बिस्तर में सोइए, पल्लू आपका इंतजार कर रही है।
2: करने दो, मैं भी तो करता हूँ रोज रोज उसका इंतजार।
0: 10 दिन हुए हैं आपको नैनीताल आए हुए, और इन 10 दिनों में एक दिन भी आप दोनों को नॉर्मल नहीं देखा। इतने खींचे खींचे, आखिर बात क्या है?
2: बात क्या है यही तो मेरी समझ में नहीं आता मीनाक्षी, कि आखिर बात क्या है। कभी कभी जिंदगी में बात बस इतनी ही होती है कि कोई बात नहीं होती। नो कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बना रहे तो बात भी बनी रहती है, लेकिन
0: क्या हुआ? कुछ कह रहे थे आप, लेकिन क्या?
2: इस लेकिन के आगे कुछ नहीं है मीनाक्षी। जिंदगी में आदमी बहुत कुछ चाहता है, पर उसके रास्ते में जगह जगह लेकिन खड़े होते हैं। सारी कामनाएं एक लेकिन तक आकर रुक जाती हैं। मैंने भी शादीशुदा जिंदगी के बहुत मीठे मीठे सपने देखे थे। सपनों में प्यार के बादलों पर उड़ा था, रोमांस की हवाओं में तैरा था, लेकिन लेकिन सपना तो बंद आंखों से देखा जाता है ना। आंखें खोलने पर तो कमबख्त जिंदगी नजर आ जाती है।

0: जीजा जी, अरे कहाँ हैं?
1: मैं यहाँ हूँ मीनाक्षी, छत पर।
0: ओ ऊपर, मैं आपके लिए कॉफी लाई थी।
1: यहाँ ऊपर ही ले आओ, आज की धूप बहुत मजेदार लग रही है।
0: वो तो होगा ही, आज संडे जो है, संडे तो सूरज का दिन होता ही है।
1: संडे छुट्टी का दिन भी तो होता है, जिसकी बदौलत तुम दिन भर घर में ही होती हो।
0: लेकिन मैं दिन भर घर में हूँ, क्या इसलिए आप ऊपर छत पर आ गए?
1: वो बात नहीं है, एक तो धूप में अच्छा लग रहा था, दूसरे तुम्हारे घर की इस छोटी सी छत पर आकर लगता है जैसे यहाँ से सारी दुनिया दिखाई देती है। देखो ना, दूर दूर तक बिछी चांदी के माथे वाली पहाड़ियां, पहाड़ियों से गलबैया डालकर लेटे रास्ते, और ऊपर इस कोने से उस कोने तक तना हुआ नीला कच्चा आसमान। सच मीनाक्षी, इतना बड़ा आसमान मैंने कभी नहीं देखा। शहर के आसमान को तो इमारतों की ऊंचाइयां खा जाती हैं, लेकिन यहां बैठकर जी करता है कि इस ढेर सारे आसमान की ताजी हवा को तलछट तक पी जाऊं।
0: लेकिन श्रीमान जीजा जी, फिलहाल आपको ये कॉफी पीनी है।
1: कॉफी? हाँ, लाओ लाओ लाओ भाई, इस कुनमुनी धूप में गुनगुनी कॉफी जानती हो कैसी लगती है?
0: जैसे रजाई ओढ़कर पानी के टब में बैठे हो।
2: भाई हंसो मत, अपन तो पहले ही कहते हैं कि कविता बाजी में बात करना

0: अपने बस का नहीं। आपकी तरह कोई कवि या फिलोसफर तो है नहीं हम, बस सीधे साधे म्यूजिक टीचर हैं। सरगम चाहे सीधी गवा लो चाहे उल्टी, वही सात सुर आते हैं अपन को तो।
1: सात सुर तो बहुत हो गए मीनाक्षी, जीवन को सुरीला बनाने के लिए तो एक सुर का आना ही काफी है।
0: सुर का आना नहीं, सुर का मिलना।
1: हाँ, शायद ठीक कहती हो। मेरी बेसुरी जिंदगी का शायद यही कारण है कि मेरा और पल्लवी का सुर कभी मिला ही नहीं।
0: वो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं तार ढीला है। पर मैं पूछती हूँ क्यों, आखिर इसका कारण क्या है?
1: कारण मेरे और तुम्हारे सुर के मिलने का कारण क्या है?
0: जीजा जी,
1: मन के तार सितार के तारों की तरह मुर्दा नहीं होते मीनाक्षी, उन्हें कसने के लिए किसी औजार की जरूरत नहीं पड़ती।
0: मैं नीचे जाती हूँ।
1: ठहरो मीनाक्षी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ।
0: कोई ऐसी बात मत कहिए जीजा जी जिसे सुनना मेरे लिए गलत हो।
1: तुम मुझे नाम लेकर क्यों नहीं बुलाती?
0: यही कहना था?
1: नहीं, कहना तो पता नहीं क्या था, लेकिन ये बताओ अपने मेहमान को नैनीताल की सैर नहीं करवाओगे?
0: जी,
1: मेरा मतलब है आज तुम्हारी छुट्टी है, मौसम भी अच्छा है, कहीं घूमने नहीं चल सकते क्या?
0: एक शर्त पर, कि आप मुझसे ऐसी वैसी कोई बात नहीं करेंगे।
1: इस शर्त पर नहीं करूंगा कि तुम मुझसे कोई ऐसी वैसी बात नहीं पूछोगी।
0: जाने दीजिए, शर्तों का बंधन कोई अच्छी बात थोड़ी ही है।

0: ओहो, बोर कर दिया आपने तो।
1: क्यों भाई?
0: पिछले घंटे भर से बस यही पूछे जा रहे हैं, इस पेड़ का नाम क्या है, इस फूल को क्या कहते हैं, ये किस चिड़िया की आवाज है, ये रास्ता कहाँ जाता है। इसके अलावा जैसे करने को कोई बात ही नहीं है।
1: है क्यों नहीं, चलो तुम्हारी बात करते हैं।
0: मेरी? मेरी कौन सी बात?
1: यही कि जब तुम यूं तुनकती हो तो।
0: तुनकती मतलब?
1: हाँ, मतलब जब तुम यूं किसी बात पर चिढ़कर नाक सिकोड़ती हो
0: तो
1: बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे तुम पहाड़न हो।
0: पहाड़न हूँ? ये क्या बात हुई, मैं तो हूँ ही पहाड़न। पहाड़ में पैदा हुई, पहाड़ में पली बढ़ी और पहाड़ में ही एक दिन देखना मरूंगी भी।
1: अरे भाई अब देखो, ये मरने वरने की बात मत करो।
0: अच्छा बाबा, नहीं करूंगी, तो भी रहूंगी तो पहाड़न ही, आपकी तरह पहाड़ थोड़े ही हो जाऊंगी।
1: पहाड़? मैं तुम्हें पहाड़ जैसा दिखता हूँ?
0: हाँ, ज्वालामुखी पहाड़।
1: ज्वालामुखी पहाड़
0: और नहीं तो क्या। जैसे ज्वालामुखी पहाड़ को ऊपर से देखकर कोई सोच भी नहीं सकता कि उसके भीतर कितनी आग है। आपका भी वही हाल है, भला इस तरह आपको हंसता देखकर कौन कहेगा।
1: कहो ना, रुक क्यों गई?
0: कुछ नहीं, ऐसे ही, पागल हूं मैं भी।
1: नहीं मीनाक्षी, पागल नहीं हो तुम, तुम एक बेहद सेंसिटिव लड़की हो। ये पानी की धारा देखती हो, बिल्कुल इस पानी जैसी हो तुम, एकदम स्वच्छ निर्मल। कुछ बोलोगी नहीं?
0: शाम होने वाली है।
1: हाँ, वो नीचे अंधेरा धीरे धीरे सिर उठा रहा है।
0: और ऊपर ऊपर आसमान में भी तो देखिए कितनी रोशनी है, जैसे किसी ने सोने की पुताई कर दी हो।
1: मगर ये केवल थोड़ी ही देर, अभी देखते ही देखते सब कालिक में बदल जाएगा।
0: हमेशा बुझी बुझी निराशा फैलाने वाली नेगेटिव बातें ही करें, ये क्या जरूरी है?
1: कतई नहीं, और खास तौर पर जब तुम साथ हो तब तो बिल्कुल नहीं।
0: तो फिर?
1: तुम्ही ने कहा था कि ज्वालामुखी पहाड़ हूँ मैं क्या करूँ, कभी कभी अनजाने में ही भीतर का लावा फूट पड़ता है।
0: अच्छा पहाड़ साहब, अब इधर से आइए।
1: इधर? मगर पहाड़ जी, ये रास्ता तो लगता है कि किसी भूतिया हवेली की तरफ जाता है।
0: जी नहीं, ये शॉर्टकट है मंदिर का।
1: मंदिर?
0: हाँ, देवी का मंदिर। आइए।

0: कितना अच्छा लगता है ना। यहाँ इस समय रोज इसी तरह पूजा होती है। ये मंत्रों का स्वर, लोबान का धुआं, मंदिर का आंगन, सब कितना अच्छा लगता है, नहीं?
1: मुझे नहीं लगता।
0: अरे क्यों?
1: देवी देवताओं पर मेरा कतई विश्वास नहीं है।
0: एकदम नास्तिक है।
1: टोटल। इन पत्थर की मूर्तों की जगह मैं इंसानों में ज्यादा विश्वास करता हूँ।
0: धीरे बोलो, अगर देवी ने सुन लिया तो नाराज हो जाएंगी।
1: फिर क्या करेंगी नाराज होकर?
0: वो जो देवी बैठी है ना घर में, पल्लू देवी, उसे आपके खिलाफ भड़काकर चंडी देवी बना देंगी। क्यों हंसे क्यों?
1: भाई पल्लवी को तुमने पल्लू देवी अच्छा कहा। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो?
0: कुछ नहीं, आप हंसते हैं तो अच्छा लगता है।
1: अरे हंस लेते हैं हम भी कभी कभी, जब तुम जैसा कोई साथ हो तो।
0: वो नीचे किसी की शादी हो रही है।
1: हाँ, घोड़े पर दुल्हन बैठी हुई है।
0: घोड़े पर नहीं, घोड़ी पर। और दुल्हन नहीं, दूल्हा। जिसे आप घूंघट समझ रहे हैं वो सेहरा है जनाब।
1: अच्छा भाई, वो इतनी दूर है ना, तो मैं समझा के। और क्या है कि ये अंधेरा है ना, तो पेट्रोमैक्स की रोशनी में कुछ ठीक से। वैसे एक सच्ची बात बताऊंगी तुम्हें, मुझे शादी ब्याह के बारे में कुछ भी पता नहीं है, इसलिए ये सेहरा और ये।
0: हद हो गई, आखिर आपने भी तो शादी की थी। घोड़ी पर बैठे थे या मोटर में?
1: कुछ और बात करूं मीनाक्षी।
0: सुबह से देख रही हूँ, जब भी आपकी और पल्लवी की शादी के बारे में कोई बात शुरू करती हूँ आप टाल जाते हैं। आखिर बात क्या है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता।
1: इतने दिनों से देख तो रही हो, अब भी क्या कुछ कहने पर ही समझोगी?
0: समझना नहीं, जानना चाहती हूँ।
1: जानकर क्या करोगी, और उससे होगा भी क्या?
0: होगा भी क्या, शायद ठीक सोचते हैं आप। मेरे किए क्या हो सकता है, और शायद इसीलिए आपकी शादी के बारे में सवाल करने का मुझे कोई अधिकार भी नहीं।
1: नहीं नहीं, वो बात नहीं है, आखिर तुम बहन हो पल्लवी की।
0: हाँ बहन हूँ, मगर मौसेरी। पल्लवी मेरी मौसी की लड़की है।
1: तो क्या हुआ, मैं तो तुम्हें सगा मानता हूँ।
0: सगा? सगा मानते हैं किस रिश्ते से?
1: रिश्तों के क्या नाम होना जरूरी है मीनाक्षी?
0: पता नहीं।
1: कहने को पल्लवी मेरी पत्नी है, पर पत्नी क्या ऐसी होती है? सच पूछो तो मेरी और पल्लवी की शादी दो परिवारों के बीच हुआ एक सामाजिक समझौता है। शादी के बावजूद पल्लवी ने अपनी जिंदगी में कुछ भी खोया नहीं, और मैंने शादी के बावजूद अपनी जिंदगी में कुछ भी पाया नहीं। इसे रिश्ता कौन कहेगा? तुम तो पल्लवी को शुरू से जानती हो ना मीनाक्षी।
0: नहीं तो, आपकी शादी से पहले शायद एक दो बार ही मुलाकात हुई थी। मैं तो बचपन से यहाँ नैनीताल में ही पली बढ़ी, और पल्लवी दिल्ली में रहती थी। बस कभी कभार मौसी के साथ यहाँ घूमने आती थी।
1: लेकिन पल्लवी तो कहती है कि उसकी और तुम्हारी खूब जमती थी।
0: जमती थी? पता नहीं।
1: देखो मीनाक्षी, तुमने पल्लवी के और मेरे बारे में पूछा है, तो एक बात मैं भी पूछूंगा।
0: पूछिए।
1: तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की?
0: जी।
1: अपना सवाल दोहराऊं मैं?
0: बर्फ का पहाड़ बंजर होता है प्रभाकर बाबू, बर्फ में फूल नहीं खिलते।
1: अगर बर्फ पिघलकर धरती में जज्ब हो जाए तो?
0: रोज रोज कहां होता है ऐसा। बस एक बार हुआ था मेरे साथ भी, कई बरस हो गए उस बात को। अब तो लगता है जैसे पिछले जन्म की बात है। तब मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ती थी। पल्लवी गर्मियों की छुट्टी में नैनीताल आई हुई थी, और उस बार

0: आती है साले तू। हाय सच्ची मीना, तेरा गाना सुनकर तो साले दिल का इना मीना डिका हो जाता है।
1: रहने दे, झूठी तारीफ करने से जबान कट जाती है।
0: ओले, ये झूठी तारीफ है? मुझे अगर थोड़ा सा भी गाना आता ना तो हाय हाय हाय आशिकों की लाइन लगा देती।
1: छी, कैसी बातें करती है।
0: अरे तू क्या जाने, हाय हाय हाय सच कहो मीनाक्षी, अगर तो ये चश्मा ना लगाती और तेरे चेहरे पर ये दो चार चेचक वाले दाग नहीं होते ना, तो अपनी सुरीली

0: हड्डी का हो जाता है।
1: रहने दे, झूठी तारीफ करने से जबान कट जाती है।
0: ओले, ये झूठी तारीफ है? मुझे अगर थोड़ा सा भी गाना आता ना तो हाय हाय हाय आशिकों की लाइन लगा देती।
1: छी, कैसी बातें करती है।
0: अरे तू क्या जाने, हाय हाय हाय, सच कहूँ मीनाक्षी, अगर तू ये चश्मा ना लगाती और तेरे चेहरे पर ये दो चार चेचक वाले दाग नहीं होते ना, तो अपनी सुरीली आवाज की रस्सी में 20 लड़के बांध सकती थी तू।
1: लगता है तूने कई बांध रखे हैं।
0: अरे अपन को साला गाना आता ही कहा है मीनाक्षी।
1: नहीं आता तो सीख ले।
0: नॉट ए बैड आइडिया। अच्छा चल ठीक है, इधर ला अपना सितार।
1: सितार नहीं, तानपुरा।
0: अरे हाँ हाँ यार, वो एक ही बात है, सितार कहो या तानपुरा, पर वो किधर गई तेरी सरगम वाली वो कॉपी? पता नहीं कहाँ रख देती है। ये रही। अब बोल बोल ना यार, कौन सा राग गाऊं?
1: अरे नहीं,
0: बोल ना।
1: नहीं नहीं, ये कॉपी मुझे दे।
0: हाँ मेरा राग भी तो सुन लेना कॉपी में से। अरे छुपी रुस्तम, कॉपी में ये फोटो किसका है?
1: मैं कह रही हूँ दे दे ये फोटो मुझे।
0: तो ये बात है बच्चू, इस फोटो का जादू है। हाय हाय, मैं भी तो कहूँ, गले में से ऐसे ऐसे मीठे सुर कैसे फूट रहे हैं।
1: मैं कहती हूँ पल्लू, फोटो मुझे दे दे।
0: अरे देती हूँ बाबा, देती हूँ ना, देख लेते कोई अच्छी तरह से।
1: बस हो गया, अब दे दे।
0: हो गया, ये तो मैं समझ गई जाने मन, पर ये बता मेरी जान, कब हुआ?
1: देख पल्लू, तू
0: कब से चल रहा है तेरा ये मामला?
1: 3-4 महीने से।
0: अच्छा, तो ये भी तो बता दे, कौन है ये तेरा बांका
1: लड़का है?
0: अरे हाँ हाँ, वो तो मैं भी देख रही हूँ, मगर इसका नाम क्या है?
1: शेखर।
0: शेखर तेरी क्लास में पढ़ता है?
1: सीनियर है।
0: ये भी गाना गाता है क्या?
1: नहीं, सुनने का शौकीन है।
0: हाय भाई, है तो बहुत शानदार, पर असलियत में भी इतना खूबसूरत है क्या? सिर्फ फोटो में ही दिख रहा है,
1: देखकर बताना।
0: अरे यार, यही तो मैं पूछ रही हूँ, कब मिलवाएगी?
1: शाम को।
0: अच्छा।

0: कल तुमने अपनी जिस बहन से मिलवाया था, क्या नाम है उसका?
1: पल्लवी।
0: हाँ, पल्लवी। कितना नया नाम है। नहीं
1: नहीं, नया काहे को, हिस्टोरिकल है, चंद्रगुप्त मौर्य के जमाने का। जरा एक मिनट ठहरो ना।
0: क्यों, क्या हुआ?
1: देखो ना, यहाँ से नीचे झील कितनी सुंदर लग रही है, जैसे चांदी का फर्श हो।
0: मालूम है, अगर यहाँ से पांव फिसल गया तो इस चांदी के फर्श तक पहुँचते पहुँचते हड्डी पसली के कितने टुकड़े होंगे।
1: अगर तुम साथ रहो तो फिर हो जाए टुकड़े, किसे परवाह है।
0: जाने दो, आगे चलते हैं।
1: ओके।
0: अच्छा ये बताओ कि अब वो यहीं रहेगी?
1: कौन?
0: अरे वही तुम्हारी हिस्टोरिकल बहन पल्लवी।
1: यहाँ? यहाँ क्यों रहेगी, वो तो दिल्ली में पढ़ती है ना, यहाँ तो सिर्फ छुट्टियां बिताने आई है।
0: मतलब महीने भर रहेगी?
1: हाँ महीने भर तो जरूर रहेगी, मगर क्यों?
0: नहीं ऐसे ही, बहुत सुंदर है तुम्हारी बहन, बिल्कुल जैसे अजंता एलोरा की गुफाओं से निकल कर आई हो।
1: सगी थोड़े ही है, मेरी मौसी की लड़की है।
0: आई नो, सगी होती तो तुम्हारी सूरतें इतनी अलग अलग थोड़ी ही होती। अच्छा एक बात बताओ, तुम ये बालों के जूड़ी से क्या बना लेती हो? पल्लवी की तरफ पोनीटेल क्यों नहीं करती?
1: तुम्हें अच्छी लगती है तो अब किया करूंगी।
0: कल झील में बोटिंग के लिए चले?
1: कल बोटिंग? लेकिन पल्लवी आई हुई है ना।
0: तो क्या हुआ, उसे भी साथ ले लेंगे, एक से भले तो, दो से भले तीन।
2: अरे मीनू की बच्ची, अभी तक किताबों में घुसी हुई, कब तक पढ़ती रहेगी? तुझे मालूम है ना कल मैं दिल्ली वापस जाने वाली हूँ।
1: वो तो ठीक है पल्लू, मगर इम्तिहान भी तो सर पर है।
2: इसीलिए आजकल किताबों का कीड़ा बनी हुई है, बाहर आना जाना सब बंद।
1: तेरे पास भी तो फुर्सत नहीं है मेरे से बात करने की।
2: अरे यार मैं तो आई ही मस्ती मारने हूँ। और फिर अपना तो ये है कि मौज कर लो जितनी कर सकते हो, ये दिन कोई साले लौट कर तो आने वाले हैं।

0: वो हंसी आज भी जैसे मेरे कानों में गूंजती है प्रभाकर बाबू, जैसे वो हंसी पल्लवी की नहीं मेरी तकदीर की थी, जो किसी श्राप की तरह मेरी जिंदगी पर छा गई। कितनी मूर्ख थी मैं, जो आईने में अपनी सूरत देखकर भी किस्मत पर शक नहीं हुआ मुझे। इतना भी ख्याल नहीं आया कि रेगिस्तान में सैर करने कोई नहीं आता, सब अजंता एलोरा जाना चाहते हैं।
1: सब नहीं मीनाक्षी, सिर्फ वो ही जो शेखर होते हैं, और शेखर हर कोई नहीं होता।
0: क्या पता कौन कैसा है, ये परखने की कभी हिम्मत ही नहीं हुई। बाद में एक अजीब सा डर था जिसे सीने में दबाए जिंदगी की डगर चुपचाप चलते चलते 35 बरस पार कर गई हूं, मगर पल्लवी की वो हंसी जैसे आज भी किसी प्रेत की तरह दोनों हाथों से मेरी गर्दन दबाए हुए है।
1: मेरी तरफ देखो मीनाक्षी, मेरी आंखों में देखो, क्या इन आंखों में तुम्हें कहीं झूठ की छाया दिखाई देती है?
0: कहना क्या चाहते हो?
1: दिल की पूरी सच्चाई से मैं ये कहना चाहता हूं मीनाक्षी कि तुम बहुत सुंदर हो।
0: प्रभाकर,
1: एक दिन पल्लवी ने तुमसे शेखर को छीना था, क्योंकि शेखर की नजरों में पल्लवी ज्यादा सुंदर थी, और आज उसी पल्लवी का पति तुम्हारी सुंदरता के आगे बिकने को तैयार है मीनाक्षी।
0: नहीं, सूखे पेड़ से तो किसी को छांव भी नहीं मिलती प्रभाकर बाबू।
1: मैं तुमसे कुछ मांग नहीं रहा हूं मीनाक्षी, मैं तो चाहता हूं कि अपमान के उस प्रेत से तुम्हें मुक्त कर दूं जिसने तुम्हारी गर्दन दबाई हुई है।
0: नहीं हो सकता। अपमान के जिस शहर ने मुझे जीवन भर तड़पाया है, उसे मैं पल्लवी के गले में कैसे उड़ेल दूं? पल्लवी आखिर मेरी बहन है, इस शहर को तो मैं किसी पेड़ की जड़ों में भी नहीं डाल सकती, कभी नहीं। ढूंढ होकर जीने का दर्द मुझसे ज्यादा और कौन जानेगा?

0: सूखा पेड़। अभी आपने ये नाटक सुना। लेखक और प्रस्तुतकर्ता थे लोकेंद्र शर्मा।
1: ये है विविध भारती उजाले।

0: के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। फिल्मी पर्दे पर अनगिनत किरदार नजर आते हैं। जैसे हम याद रखते हैं हीरो को, वैसे ही विलेन को भी नहीं भूल पाते हैं। एक ऐसे ही कलाकार सदाशिव अमरापुरकर, जिन्होंने पर्दे पर विलेन का किरदार निभाकर हमारे दिल में पैदा किया एक खौफ, और दूसरी ओर अपनी कॉमिक अंदाज से ठहाका लगाने पर किया मजबूर। पर फिल्मी पर्दे से दूर कैसा था उनका व्यक्तित्व? पर्दे पर विलेन बनते सदाशिव अमरापुरकर असल जिंदगी में थे कैसे? उनका ये व्यक्तित्व हमारे सामने लाई हैं उनकी बेटी रीमा अमरापुरकर। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में इन दिनों जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की यादों के उजाले हमारे साथ बांट रही हैं उनकी सुपुत्री रीमा अमरापुरकर। आपसे बातचीत कर रहे हैं यूनुस खान। आइए सुनते हैं इस लंबी बातचीत की चौथी और अंतिम कड़ी।
1: पूरे एक दौर की हम बात कर रहे हैं, सदाशिव अमरापुरकर जी की पूरी यात्रा, जहां पर वो एकदम विलेन के रोल से कॉमेडी रोल्स की तरफ चले आते हैं और फिर वो मराठी सिनेमा में अपनी पसंद का अलग अलग तरह का काम कर रहे होते हैं। इतने बरस हो गए थे सिनेमा में काम करते हुए और कई बार एक एक जैसा काम भी हो रहा था। क्या ये वो दौर था 90s का जब उनके भीतर एक तरह का असंतोष आना शुरू हुआ था?
2: डेफिनेटली, क्योंकि ये किसी भी कलाकार के लिए एक ही तरह का काम करना ये एक बहुत बड़ी शिक्षा होती है। मराठी में शिक्षा कहते हैं, उसका मतलब है पनिशमेंट,
1: सजा।
2: सजा किसी भी संवेदनशील कलाकार के लिए ये एक सजा होती है। और रेस्टलेसनेस तो डेफिनेटली उनमें आ ही रहा था, पर जैसा मैंने कहा कि उन्होंने ये मान लिया था कि मुझे मेरा घर, मेरे परिवार के लिए अगर पैसे कमाने हैं तो मुझे ये करना है। ये उन्होंने एक पॉइंट पे मान लिया था और उन्होंने वो निभाया। लेकिन जैसे हमने बात की कि आउट एंड आउट कॉमेडी फिल्में करते वक्त वो वास्तु पुरुष दोगी जैसी फिल्में कर रहे थे, वैसे ही आउट एंड आउट कमर्शियल काम करते वक्त, विलनी का काम करते वक्त भी वो सामाजिक कामों में खुद को बहुत बिजी रखते थे। तो उनकी लाइफ में हमेशा ही दो ट्रैक चलते थे, हालांकि तीन ट्रैक भी कह सकते हो फैमिली का अगर ट्रैक पकड़ा जाए तो, वरना करियर वाइज अगर देखा जाए तो दो ट्रैक्स उनके चलते थे। एक तो जो कमर्शियल काम वो करते थे वो, और दूसरा जो सामाजिक काम करते थे वो। उन्होंने कभी सामाजिक काम की तरफ करियर के तौर पर नहीं देखा, उन्होंने हमेशा उसे एक जिम्मेदारी, एक कलाकार, और अगर मैं आज कुछ हूं, अगर मैं जो कहता हूं, मेरे कहने को अगर कुछ वजन है तो उसका उपयोग मैं किस लिए करता हूं, इसका उन्हें हमेशा ख्याल रहता था और वो करते थे। इसलिए वो सामाजिक कृतज्ञता निधि की हमने बात की, वो उनका चल रहा था। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति में भी वो कार्यरत थे। मुक्तांगन डी एडिक्शन सेंटर जो है पूना में, जो पहला डी एडिक्शन सेंटर महाराष्ट्र में बना, उसमें भी वो इन्वॉल्व थे, बिकॉज डॉक्टर अनिल अवचट और सुनंदा अवचट उनके साथ उन्होंने वो किया था। डॉक्टर आनंद नाडकर्णी के साथ इंस्टीट्यूट फॉर साइकोलॉजिकल हेल्थ, सो मेंटल हेल्थ में भी वो काम कर रहे थे। फिर अहमदनगर में रेड लाइट एरिया में स्नेहालय करके एक संस्था है, आज भी है और बहुत अच्छा काम कर रही है, कि जो कमर्शियल सेक्स वर्कर्स है उनके बच्चों के लिए वो संस्था ने काम करने से शुरुआत की, और आज के दौर में लगभग 1,000-1,500 बच्चों का, जिनका शोषण अलग अलग तरीके से होता है, जो वायलेंस को फेस कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए भी वो संस्था काम करती है और बहुत अच्छे से काम कर रही है। तो अहमदनगर के एक युवक ने जब ये डिसाइड किया कि मुझे ये काम करना है, एक ब्राह्मण युवक ने, ये कहना बहुत जरूरी है बिकॉज ये अगेन 90s का दौर है जब जाति व्यवस्था बहुत स्ट्रांग थी, और जैसा मैंने कहा कि अहमदनगर एक बहुत ही पैट्रियार्कल सिटी है, आज भी है। तो उस वक्त एक ब्राह्मण लड़के ने ऐसी बस्ती में जाना और वहां की औरतों के साथ काम करना या उनसे बातचीत करना, ये बहुत ही खराब नजरिए से देखा जाता था। पर जब गिरीश वो काम कर रहे थे और पापा जब भी नगर जाते थे तो ये जो सारे काम करने वाले लड़के लड़कियां थे, ये पापा को मिलने आते थे कि हम ये काम कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो जब गिरीश आया मिलने, तब गिरीश ने बताया कि मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूं, और गिरीश पापा के कॉलेज प्रोफेसर के बेटे थे, तो इसलिए उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा है। तब पापा ने ये स्टेटमेंट दी हुई थी अहमदनगर के लोकल न्यूज़पेपर्स में कि देखो, ये जो औरतें हैं ये भी हमारे समाज का ही एक घटक है, इसलिए इनके लिए काम करना कोई बुरी बात नहीं है। और फिर अहमदनगर में लोगों का नजरिया धीरे धीरे धीरे धीरे बदलने लगा। फिर पापा स्नेहा

0: लेके ट्रस्टी भी बने। फिर कुछ दिनों के बाद वो वहां से निकल गए क्योंकि उन्होंने कहा कि अब संस्था अगर खुद से चल रही है तो मेरे होने की जरूरत नहीं है। पर वहां पर आमिर खान को ले जाना हो सत्यमेव जयते में, बिल्कुल पहले एपिसोड में स्नेहालय की केस स्टडी है,
1: बिल्कुल,
0: तो आमिर खान को ले जाना हो या श्याम बाबू को ले जाना हो, ऐसे बड़े बड़े लोगों को उस वक्त वो अहमदनगर लेके जाते थे। ये देखो ये ऐसे काम कर रहे हैं बच्चे, इनको ऐसे हम लोगों ने मदद करनी चाहिए, इस तरह से उनका काम चलता था। तो हालांकि कलाकार के तौर पर थोड़े से अनसेटल्ड वो हो रहे थे क्योंकि उनकी जो रेंज थी, जिस तरह काम करने की उनकी क्षमता थी, उतना काम उन्हें उस वक्त नहीं मिल रहा था, उतनी रेंज का काम नहीं मिल रहा था, तो वो था। लेकिन वो इन कामों में खुद को बहुत ज्यादा बिजी रख रहे थे, तो इसलिए वो जो एक डिससैटिस्फैक्शन था वो सैटिस्फैक्शन में इस काम की वजह से वो बदल पा रहे थे।
1: बिल्कुल इम्पोर्टेंट बातें हुई इस पूरे सेक्शन में, और मुझे लगता है कि अब यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं, तो कौन सा गाना होगा?
0: पापा का एक बहुत ही पसंदीदा गाना था, इतनी शक्ति हमें देना दाता।
1: वाह, अंकुश फिल्म का ये गाना। और यहाँ मैं दो क्रेडिट जरूरी तौर पर याद करना चाहूंगा, इसे अभिलाष जी ने लिखा था और कुलदीप सिंह का संगीत।
0: यस,
1: ये गाना सुनते हैं।

0: बहुत मजेदार बातें हुई हैं और चूंकि मेरा काम इन बातों को एक दिशा देना है, मुझे पीछे का एक सूत्र याद है जो हम छोड़ के चले आए थे कि इसकी बात आगे करेंगे, डॉक्टर श्रीराम लागू और सदाशिव अमरापुरकर के रिश्ते की बात।
1: हाँ जी, डॉक्टर लागू अब कैसे बताऊं मैं, जैसा मैंने मेरे शो में भी कहा हुआ है, उन्होंने कन्यादान प्ले जो था वो एक साथ किया,
0: तेंदुलकर वाला,
1: और उसमें डॉक्टर लागू को निर्देशित किया था पापा ने।
0: ये बहुत बड़ी बात मानी जानी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर लागू एक दर्जे के कलाकार थे और उनको डायरेक्ट करना कोई आसान
1: काम
0: नहीं।
1: उन्होंने मानना कि ये युवक है और ये मुझे डायरेक्ट करेगा, ये एक बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट है, अपने आप में एक कॉम्प्लीमेंट है। तो उन्होंने उनके साथ काम किया हुआ था। जैसा मैंने कहा कि डॉक्टर लागू ऑलरेडी सामाजिक कामों में काफी बिजी थे और काफी इन्वॉल्व थे, तो ये जो बात है ना जो पापा के अंदर थी, पर उस बात को हवा देना, उस चिंगारी को हवा देने का काम डॉक्टर लागू और नीलू भाऊ ने किया कि हम कलाकार हैं और हमें समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, तो वो हमें निभानी है। तो इस तरह से पूरी तरह से उन्हें सामाजिक विचारधारा में और सामाजिक कामों में खींचने का काम डॉक्टर लागू ने किया, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगी कि डॉक्टर लागू अगर नहीं होते तो शायद हमारा परिवार फिर से अहमदनगर, मतलब अहिल्यानगर हम जैसे कहते हैं, फिर से अहिल्यानगर जा चुका होता। क्यों? क्योंकि जब हमें वो किराए का घर छोड़ना पड़ा और पापा ने सीएम के पास जाकर तेंदुलकर साहब ने उन्हें चिट्ठी दी थी, तो म्हाड़ा का घर भी अगर लेना हो तो आपको डिपॉजिट भरना पड़ता है, और उस समय इतना पैसा नहीं था पापा के पास कि हम घर ले पाए या डिपॉजिट भर पाए। तब पापा ने जाकर डॉक्टर लागू को रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने 2 मिनट के अंदर लाके उन्हें वो पैसे दे दिए थे और वो फिर वो डिपॉजिट भर पाए और हमारा घर हो पाया। ये एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन डॉक्टर लागू की हमारे परिवार के जीवन में रही है। और दूसरी एक जो बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो डॉक्टर लागू की वजह से पापा करने लगे और कर पाए, वो बात ये थी कि जो भी तुम कहना चाहते हो वो ठीक ठीक कहो। अभी ये हुआ है कि हम लोग काफी डिप्लोमेटिक हो गए हैं। एक समय था जब कलाकार पॉलिटिशियंस सब लोग एक साथ बैठकर एक दूसरे की खिल्ली उड़ाया करते थे, आज वो दौर नहीं रहा। तो वो समय था जब डॉक्टर लागू ने पापा को बताया था कि तुम कलाकार हो, तुम नेशनल लेवल पर काम कर रहे हो, तुम काम बहुत करोगे, अपनी इंडस्ट्री ऐसी है कि आपको सबको खुश रखना होता है, पर ये कभी मत भूलना कि तुम्हें ये जो शोहरत मिली है, तुम ये जो मशहूर हुए हो, ये एक इट्स अ वेपन, इसका इस्तेमाल तुम्हें किस चीज के लिए करना है ये तुम डिसाइड करोगे। तो इसलिए कभी भी जब भी मौका मिले और सच की और तुम्हें खड़ा रहने का चांस मिले तो डेफिनेटली खड़े रहना। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सीख जो डॉक्टर लागू ने खुद के बर्ताव से भी हमेशा सामने लाई हुई है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो वो डॉक्टर लागू से सीखे पापा, ये बहुत जरूरी है। और मुझे खुशी इस बात की होती है कि ये जो सीखे पापा को मिली वो उन तक सीमित नहीं रही, वो उन्होंने अपने बर्ताव से, अपने जीवन से और अपनी बातों से हम तक भी वो पहुंचाई। मुझे याद है जब पापा गुजर गए थे और निखिल वागड़े जी आए थे कि श्रद्धा सभा में, और तब उन्होंने कहा था कि अब हम मराठी न्यूज चैनल्स अगर कुछ गलत हो रहा है तो ऐसा

0: बड़ा नाम बचा ही नहीं है जो हमें रिएक्शन देगा,
1: विरोध करेगा,
0: जो विरोध करेगा, या सामान्य आदमी को, नागरिक को क्या लग रहा है इसके बारे में बात करेगा। ऐसी आवाज ही नहीं बची है। तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज थी जो पापा ने बखूबी निभाई। जब अण्णा हजारे जी का अनशन उन्होंने किया था दिल्ली में, तब भी महाराष्ट्र में वो हवा बनाए रखने में पापा का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है उस वक्त।
1: घर की एक बात मुझे याद आई कि बाद के दिनों में ऐसा हुआ था कि किसी ने उनको सुझाव दिया था कि सरकार कलाकार कोटे से बड़े घर या बंगलो देती है, और उन्होंने रिफ्यूज किया था कि मैं वो नहीं कर सकता।
0: करेक्ट। सो पापा एक ऐसे कलाकार है, आई थिंक एक अकेले ऐसे कलाकार है जिन्हें म्हाड़ा के 2% में से घर मिला था। और जब उन्होंने खुद का घर खरीदा बाद में, तब उन्होंने वो म्हाड़ा को वापस कर दिया।
1: गजब।
0: हालांकि उन्होंने उसके लिए पैसे भी भरे थे, सब कुछ था, पर उनका कहना था कि जब मुझे जरूरत थी तब मुझे ये मिला था, तो आज किसी और को अगर ये जरूरत है तो ये जरूरत पूरी होना ज्यादा जरूरी है।
1: वो आराम से बेच सकते थे, पैसे ले सकते थे।
0: बेचकर वो ले सकते थे, बिकॉज हम वहां पर 7-8 साल रहे थे, तो जो 4 साल का लॉक इन पीरियड होता है वो भी निकल चुका था, तो वो बेच सकते थे, पर उन्होंने नहीं बेचा, उन्होंने वो वापस कर दिया।
1: गजब।
0: और इसी तरह उस समय अंधेरी में, जो अभी बहुत ही बड़ा एरिया है लोखंडवाला का, उस वक्त म्हाड़ा के छोटे छोटे छोटे छोटे बंगले हुआ करते थे, जिनके काफी स्टूडियोज बन चुके थे। फिल्म इंडस्ट्री के काफी लोगों ने वहां पर वो छोटे छोटे म्हाड़ा के घर लेकर बहुत सस्ते में, क्योंकि मिल रहे थे,
1: आज भी मौजूद है,
0: और वहां पर बंगले में स्टूडियोज और ये सब बनाए। तो उस समय जो पापा के सेक्रेटरी थे, उन्होंने कहा सदाजी हम भी ले लेते हैं, एक स्टूडियो बना देते हैं उधर, डबिंग स्टूडियो रहेगा, एडिटिंग स्टूडियो रहेगा, एक इनकम शुरू हो जाएगा। तो पापा ने कहा क्यों मैं करूं ये सब, अगर मैं ये करता हूं तो कोई और जो व्यवसाय के तौर पर करना चाहता है उसका मैं रोजगार छीन रहा हूं, जो मुझे नहीं करना है। तो आपके बच्चों के लिए ये, वो मेरे बच्चों को मैं सिखा रहा हूं, वो बड़े होंगे, उनको जितना कमाना है कमाएंगे, नहीं कमाना है नहीं कमाएंगे, दे डोंट नीड टू डू दिस, मैं उनके लिए जागीरें बना के नहीं रखूंगा, ये उनका एक कहना होता था। तो हाँ, उनको हर बार इलेक्शन जब भी होता था तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी से उनको बुलावा आता था कि आप हमारी ओर से खड़े रहिए, आप हमारी ओर से। पापा ने कभी नहीं किया, या कोई भी सामाजिक संस्था में भी उन्होंने कोई भी डेजिग्नेशन नहीं लिया। तो वो कहते थे जो काम करना है ना वो मुझे बताओ, मैं करता हूं, मुझे ये डेजिग्नेशन नहीं चाहिए, आपने मुझे चेयरमैन बना दिया, सेक्रेटरी बना दिया, ये मुझे नहीं चाहिए, बिकॉज उसके साथ जो जिम्मेदारी आती है, लीगल हैसल्स आते हैं, वो कौन करेगा? बिकॉज जैसा मैंने कहा वो कलाकार थे,
1: बिल्कुल
0: उन्हें उनकी कला में रस था और जो अच्छा काम करना है उसमें रस था।
1: क्या बात है।
0: पापा का ये हमेशा कहना होता था कि मेरे बच्चों को जो भी कमाना है वो खुद के बलबूते पर वो कमा लेंगे, मैं उनके लिए जागीरें नहीं रखूंगा। और ये मेरे ख्याल से ये हमारी फैमिली का ही
1: ट्रेडिशन है,
0: बिकॉज मेरे दादाजी का भी यही कहना था कि मैं तो धर्मादाय कर दूंगा सब कुछ, तुम्हें देखो जो करना है, जैसे खुद का घर चलाना है तुम चलाओ, ऐसे ही पापा का भी था। तो जैसा मैंने कहा कि सामाजिक काम भी दादाजी करते थे, वही हमारे घर में चलता आया है, और ये भी वैल्यूज आई थिंक वहीं से आई हुई है।
1: बिल्कुल। रीमा जी, अब हम अपनी बातचीत के लगभग आखिरी मकाम पर आ पहुंचे, जहां एक कठिन बात करनी है, और वो है कि जब सदाशिव जी बीमार पड़े और वो जो पूरा आखिरी दौर है, जाहिर है वो सब आपने देखा है, उन दिनों को थोड़ा याद करें।
0: उन दिनों को याद करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसा मैंने बिल्कुल शुरुआत में कहा था कि पापा की आवाज उनकी ताकत थी, और जब वो बीमार हुए और उनको इंटरस्टेशियल लंग डिसीज करके एक डिसीज होता है, जिसमें अपने जो फेफड़े होते हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी चली जाती है, तो सांस लेना बहुत मुश्किल होता है, और अगर आप में दमसांस नहीं है तो आप आवाज भी नहीं निकाल पाते। तो इसलिए उनकी आवाज धीरे धीरे धीरे धीरे
1: कमजोर होती गई,
0: और ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही ट्रेजिक था। और उस समय उनकी उम्र ही क्या थी, ही वॉज 63, 63 साल के थे वो, आगे और बहुत 10-15 साल तो कम से कम वो काम कर पाते
1: अगर बिल्कुल
0: उन्होंने डिसाइड किया होता तो। लेकिन वो डिसीज हुआ, सांस लेने में तकलीफ होने लगी, इसलिए वो बात नहीं कर पाते थे, और वो इतने ऑनेस्ट थे कि उनके पास प्रोड्यूसर्स तब भी आते थे कि सदाजी ये छोटा रोल है आप ये कर दीजिए। कई कलाकारों को हम भी जानते हैं जो बीमार होते हुए भी काम करते रहते हैं, पर पापा उनको बोल देते थे कि देखो अगर तुम्हें

0: लगता है मैं उसी तरह से बोलूंगा तो मैं बोल नहीं पाऊंगा, ये मेरी आवाज की हालत है। इस तरह से वो बहुत ओपनली और क्लियरली बात बताते थे। वो टाइम बहुत ही डिफिकल्ट हम सबके लिए था, बिकॉज आप सोचिए कि एक पहाड़ जैसा आदमी जिसको आपने बचपन से इतना स्ट्रांग, इतना क्या कहते हैं,
1: जुझारू
0: एक्चुअली और रियल लाइफ में भी सिर्फ पर्दे पर नहीं देखा हुआ है, वो जब आपके सामने धीरे धीरे वीक होता जाता है तो ये आप सहन नहीं कर पाते, ये आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते। और ये हमारे पूरे परिवार के लिए एक बहुत ही तकलीफ वाला दौर था, पूरे 6 महीने जब वो बीमार थे तब। और मैं क्या कहूं, तब लोगों ने, जैसा मैंने पहले कहा था कि जब आप मशहूर होते हो तो जैसे प्यार भी करते हैं लोग, तो लोग ये भूल जाते हैं कि वो भी एक इंसान है और उसकी भी एक निजी जिंदगी है। तो कुछ घटनाएं ऐसी घटी उस वक्त कि लोग ये चाहते थे, जैसे अभी धर्म जी के बारे में भी हुआ कि उनका आईसीयू में उनका वीडियो निकाला गया, तो वैसे लोग चाहते थे, मुझे चैनल से फोन आते थे कि रीमा उनका एक आईसीयू में एक फोटो निकाल के आप भेजो। ओके, या लोग मिलने आते थे, तो उस समय मोबाइल फोन्स, कैमरा फोन्स आ गए थे, 2014 की बात कर रही हूं मैं। तो हम ये देखते थे कि जो भी अंदर जा रहा है पापा से मिलने, उसके साथ कोई ना कोई हो, बिकॉज हम ये नहीं चाहते थे कि कोई फोन निकाले, वीडियो निकाले, फोटो निकाले और सर्कुलेट करे, बिकॉज वो एक कलाकार थे,
1: ये होना ही नहीं चाहिए।
0: हाँ,
1: कोई भी रीजन हो, नहीं
0: और
1: होना चाहिए।
0: नहीं, और लोग उन्हें जिस तरह से याद लोगों ने रखना चाहिए, वो उनकी बुलंद आवाज, वो उनकी पर्सनालिटी, उनकी एक्टिंग, उनकी दहशत जो पर्दे पे वो पैदा करते थे, वो याद रखे। ये क्यों याद रखना है?
1: बिल्कुल,
0: जैसे इवन धर्म जी के बारे में जब हुआ तो इतना बुरा लगा कि ही मैन ऑफ द इंडस्ट्री,
1: राइट,
0: और उनको इतना वीक दिखाकर आप क्या हासिल कर रहे हैं?
1: देखिए, समय और उम्र किसी को नहीं बख्शते हैं,
0: exactly.
1: तो इसलिए उसका लिहाज कर लेना चाहिए और लोगों को अपनी प्राइवेसी में छोड़ देना चाहिए ऐसे समय।
0: बिकॉज पापा अहमदनगर को अपने दिल में रखे हुए थे, तो ये बात तो पक्की थी कि उनका जो भी अंतिम संस्कार है वो अहमदनगर में होगा। तो जब हम अहमदनगर गए और हमारी जो हवेली है उसके आंगन में ही पापा को रखा हुआ था दर्शन के लिए, तो आप बिलीव नहीं करोगे, लगभग 2-3 किलोमीटर तक लाइन लगी हुई थी और वो लाइन रुक ही नहीं रही थी। अल्टीमेटली एक 4-5 घंटे के बाद हमें ये डिसाइड करना पड़ा कि अभी जाना जरूरी है, बिकॉज ऑलरेडी मुंबई से हम वहां गए थे, काफी समय बीत चुका था। तो उस समय लगभग 50-60 हजार लोग पापा के अंत्य यात्रा में थे, और वो सिर्फ अहमदनगर से थे ऐसा नहीं,
1: दूर दूर से आए थे।
0: और बाद के जो 15-20 दिन है, पूरा महीना जो हम लोग रखते हैं, पूरे महीने तक हमारी हवेली में लोग आ ही रहे थे, माथा टेक ही रहे थे और जा रहे थे। राजस्थान से लोग आए, पश्चिम बंगाल से आए, कहां से आए, कुछ नहीं, सिर्फ उनके दर्शन करने हैं, बस उनकी हवेली देख ली, उनके बच्चों को देख लिया, उनके भाई को देख लिया, बस। ये जो लोगों की दुआ मिली है उस वक्त और ये जो प्यार हमें दिखा है, क्योंकि पापा बाहर जाकर किस किस के लिए क्या क्या करते थे ये कभी घर आकर हमें बताते नहीं थे, पर उसके बाद आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं जाता कि पापा की याद किसी ने ना निकाली हो, कोई ना कोई वो याद निकालता ही है। और हर एक 2-3 महीने में ऐसा कुछ किस्सा पता चलता है कि अरे पापा ने ये भी किया था, पापा ने ऐसा भी किया था, ये भी मदद की थी, ये कब किया था उन्होंने।
1: गजब।
0: तो ये जो बात है कि जब इंसान, हम उसके बच्चे होते हैं, हम एक तरीके से उसको देखते हैं, वो मेरे लिए मेरे पिताजी थे, वो एक हीरो थे, बहुत महान कलाकार थे, अग्रीड, लेकिन मेरे लिए वो सिर्फ मेरे पापा थे। तो मेरी कुछ पर्सनल शिकायतें, कुछ रिलेशनशिप इश्यूज वो उनके साथ थे ही, मैं ना नहीं कहूंगी, लेकिन अब लगभग 11 साल हुए हैं और अभी 11 साल के बाद भी एक दिन ऐसा नहीं गुजरता जब उनका कोई रेफरेंस ना निकलता हो। तब आपको पता चलता है कि जो इंसान आप अपने पिताजी समझते थे वो सिर्फ आपके पिताजी नहीं थे,
1: वो पूरे संसार के लिए क्या थे।
0: एग्जैक्टली और सिर्फ एक कलाकार भी नहीं थे वो, ही वॉज सो मच मोर। तो एक थोड़ी सी समझ आ जाती है कि फिर आप इंसान को एक ही दायरे में ना देखें, उसके कई मायने हैं और उन सारे मायनों में आपने देखना चाहिए इंसान को। तो ये आज भी मैं सीख रही हूँ उनसे, आज भी सिखा रहे हैं वो मुझे।
1: क्या बात है।
0: जैसे आज हम बातचीत कर रहे हैं तो मुझे लगा नहीं था मैं इतनी देर बात कर पाऊंगी, लेकिन जब एक एक एक एक एक आप पूछते गए तो ऐसी भी काफी सारी चीजें मैंने कही जो आज तक मैंने

0: पर नहीं कही थी।
1: बिल्कुल,
0: अर्थात आकाशवाणी घर ही है हमारा। अभी मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि हमने रुकना चाहिए।
1: यहाँ एक गाना बजाते हैं, रहे ना रहे हम महका करेंगे।

0: रीमा जी, उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम ऐसा है जिसमें हम यादों के उजाले बिखेरते हैं। आपकी यादों में पिताजी किस तरह से सामने आए, ये सुनते हुए और आपसे बातें करते हुए लगातार मुझे सदाशिव जी की बातें याद आ रही थी जो विविध भारती में उनके आने पर उन्होंने बताई थी और बहुत दिलचस्प बातें थी। तो अब तक आपने पिताजी के बारे में बताया, अब संग्रहालय से पिताजी की आवाज निकालते हैं और हम सब मिलकर सुनते हैं सदाशिव अमरापुरकर की बातें। और हाँ, ये बातचीत हमारी साथी कांचन प्रकाश संगीत ने सदाशिव जी से की थी बरसों पहले, तो संग्रहालय से ये आया ऑडियो।
1: अब देखिए ना, मेरे मन में ऐसी घटा छाई है, ये प्रश्नों की घटा है।
2: अच्छा।
1: और पता नहीं अब ऐसा लग रहा है कि कौन सा प्रश्न बरस पड़ेगा। बताइए ना कि कहाँ से शुरू करें, कि आज आपकी अभी यहाँ से निकल के किस शूटिंग में आप जा रहे हैं, यहाँ से शुरू करें और पीछे चले जाएं, या आप अपने बचपन के दिनों को याद करेंगे?
2: नहीं, जो आपको अच्छा लगे वहीं से शुरू करें।
1: तो आप अपने बचपन की ही याद ताज़ा करें और कुछ बताएं कि कैसे थे वे आपके दिन।
2: मैं एक बहुत छोटे से गांव में पैदा हुआ जिसका नाम अहमदनगर, ना वो शहर है ना वो देहात था। तो ऐसे छोटे से गांव में जब मेरा जन्म हुआ और बचपन बहुत अच्छा गया, खेल कूद में गया, स्कूल में जाते थे, लेकिन सिर्फ पास होने तक के मार्क हमें मिलते थे। और हमारे पिताजी की एक ही इच्छा थी कि बेटे तुम कभी फेल मत होना, हमेशा पास होना। और ग्रेजुएट

0: उसके बाद नौकरी की जरूरत नहीं है, हम कुछ भी व्यापार वगैरह कर लेंगे, लेकिन शिक्षा जरूर लेना। तो ये बात अच्छी थी क्योंकि सिर्फ पास होना था तो 40-50% हमें मार्क्स मिलते थे और बचा हुआ टाइम हम खेल कूद में हर चीज में गुजारते थे और हर मौसम का मजा लेते थे। इमलियों के दिन आते थे तो इमलियां खाते थे, आम के दिन आते थे तो बहुत आम खाते थे, चुराते भी थे। हमारा खेत भी था, उसमें भी बहुत दौड़ धूप करते थे।
1: और जामुन खा के आपका गला नहीं बैठ जाता था?
0: सब कुछ होता था सब कुछ होता था। और हमारे जो रिश्तेदार थे वो और भी देहातों में रहते थे, छुट्टियों के दिन हम उनके साथ गुजारते थे तो उनके साथ जंगल में घूमते थे, प्राणी पंछी सब देखते थे, बकरियों से खेलते थे, उनका दूध पीते थे। गाय को बछड़ा जब होता है तो क्या होता है, ये अनुभव मैंने वहां लिया और मुझे एहसास हुआ कि जब हम पैदा हुए थे तो हमारी माँ को कितनी तकलीफ हुई। तो इस तरह का बहुत अच्छा, बहुत जिसको हम समृद्ध कहेंगे, ऐसा मेरा जीवन बचपन का गुजरा है और उसका फल बहुत अच्छा है। आज जब मैं कहीं भी जाता हूँ, आउटडोर शूटिंग में जाता हूँ या किसी से मिलता हूँ और जब उसको देखकर मुझे एहसास होता है कि ये कहाँ कहाँ से गुजरा होगा ये इंसान, ये आदमी, तो इंसान को समझना, इंसान को जान लेना और उसके बारे में सोचना, ये सब मुझे बचपन में मिला, ये संस्कार। मेरे पिताजी छोटे से व्यापारी थे तो हर तबके के लोग, हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग हमारे घर आते थे। तो मैं मंदिर में खेला हूँ, मस्जिद में खेला हूँ, हमारे पीछे मस्जिद थी उसके पीछे आज भी चर्च है तो वहीं उसी ग्राउंड पे खेला हूँ। तो मेरे लिए तो कभी धर्म की बात, जाति की बात आई नहीं और ये एक बड़ा अच्छा संस्कार मेरे गांव ने मेरे ऊपर किया है।
1: तो अहमदनगर ही में आपका स्कूल का जो है पूरी पढ़ाई लिखाई वहीं पे हो गई और आप इर्द गिर्द जाते रहे हैं?
0: अहमदनगर में ही मेरी पढ़ाई हुई, स्कूल की, कॉलेज की, वहीं मैंने थिएटर किया, एक्टिंग की। मेरे गांव में पानी कम है लेकिन मेरा गांव छोटा है, मेरे गांव के रास्ते गलत है, मतलब खराब है। हमारा गांव चांद बीबी के नाम गांव से पुकारा जाता है और मुझे तो लगता है कि आज भी अगर चांद बीबी आई तो बिना हिचक के उसी रास्ते पर अपने महल में चली जाएगी उस जमाने के रास्ते वहां पर है
1: जी।
0: और क्रिएटिव है
1: जी।
0: और मुझे हमेशा ये बात अच्छी लगी है कि मेरे जीवन के हर मोड़ पर मुझे ऐसे इंसान मिले जिसकी वजह से मेरा जीवन दिन ब दिन संस्कारित होते गया
1: जी। ये जो आपका संस्कारित बचपन है वही आपका साथ आज भी दे रहा है
0: जी,
1: है ना सदाशिव जी? इसी बात पे आपकी पसंद का कोई एक गीत हम क्यों ना सुन लें?
0: जी जी जरूर सुनते हैं। पिक्चर का नाम है पोस्ट बॉक्स नंबर 999।
1: अरे वाह, बहुत पुरानी फिल्म है ये।
0: हाँ, और उसके बोल है मेरे दिल में है इकबाल।

0: आप बता रहे थे कि नगर में रह के ही आपने अपना कॉलेज का भी पूरा जो जीवन है वहाँ पे आपका आपकी शिक्षा दीक्षा वहाँ हुई और इसके साथ साथ वहाँ पे थिएटर भी आपने शुरू किया, वो सब बातें बताइए ना।
1: हाँ,
0: तो आप बहुत शरीर बालक रहे, बहुत शरारती रहे, तो कॉलेज में जाके क्या धमाके किए, क्या हंगामे किए?
1: नहीं, वैसे मैं शरारती तो स्कूल में था, मतलब पढ़ाई में दिल नहीं लगता था और मेरे दोस्तों को बताता था कि चलो यार घूमने चलते हैं। और मुझे याद है कि स्कूल में एक दिन मैंने पूरे स्कूल को मेरे साथ लेकर, मतलब हमारी पूरी जो कक्षा को लेकर मैं बाहर निकला था और दिन भर हम घूमकर शाम को घर लौटे थे।
0: पिटाई नहीं हुई थी?
1: और दूसरे दिन जब हम स्कूल गए तो सब बच्चों ने कहा कि सदाशिव ने कहा इसलिए हम निकले। और मैं, मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैंने कुछ गलती की है। मैंने कहा हाँ, हम बहुत बोर हो गए थे, पढ़ाई में दिल नहीं लगता था, तो ऐसा लगा थोड़ा घूमकर आए, इसलिए मैंने इनको कहा और ये सब मेरे साथ आए। हम बाजारों में घूमे, दुकानें देखी, फ्रूट्स देखे, फिर उसके बाद मिठाई की दुकानें देखी और शाम को घर लौटे, इसमें क्या बुरा है? लेकिन उस वक्त वो बहुत बुरा था, तो इसकी शिक्षा भी मुझे बहुत मिली। और स्कूल में मैं बहुत क्रिकेट खेलता था, मैं हमारी स्कूल की टीम में था, लेग स्पिनर था, बैटिंग भी करता था और क्रिकेट में इतना मन लगा हुआ था कि मुझे लगता था कि मैं
0: क्रिकेटर बन जाऊंगा।
1: और जैसे मैं कॉलेज में आया तो हमारे कॉलेज की एक परंपरा रही है, हमारे कॉलेज की गैदरिंग में वन एक्ट प्ले कॉम्पिटिशन होती है
0: जी।
1: आज भी चल रही है वो और बहुत अच्छी चीज है। उन्होंने बहुत बड़े बड़े कलाकार इस देश को दिए हैं, महाराष्ट्र को दिए हैं। तो उसमें एक बात थी कि बच्चे ही, मतलब विद्यार्थी ही एकांकी लिखते थे, विद्यार्थी डायरेक्शन करते थे और सब विद्यार्थी मिलकर वो वन एक्ट प्ले करते थे और इसकी कंपटीशन थी और उस जमाने में बहुत बड़ा प्राइज उसके लिए रखा गया था
0: जी।
1: मुझे मतलब रखा जाता था, आज भी रखा जाता है। और उसमें मुझे एक काम करने का मौका मिला, हम कहेंगे कि वो बिच्छू एक्टिंग का उसी वक्त हमें काटा। और उसमें मुझे 10 रुपये का प्राइज मिला
0: उस समय।
1: हाँ, और तब से मेरा क्रिकेट छूट गया और मेरी एक्टिंग शुरू हो गई।
0: लेकिन बिच्छू ने काटा आपको और इसीलिए शायद आप विलेन बन गए, ऐसा तो नहीं हुआ?
1: नहीं। नाटक करता रहा, धीरे धीरे नाटक में इतना मन लगने लगा, उसके वजह से पढ़ने लगा, किताबें आईं, फिर किताबों में मन लगने लगा और दोस्त मिलने लगे, रात रात जागते रहे, बातें करते रहे। बहुत तूफानी दिन थे, हमारे पैर जमीन पर नहीं थे
0: जी।
1: हम मतलब हवा में दौड़ते थे
0: और यूथ फेस्टिवल्स वगैरह में बहुत सारे प्राइजेस भी आपने जुटाए होंगे।
1: जी, यूथ फेस्टिवल में बहुत प्राइजेस लुटाए और हर बार हमारी एकांकी आती थी और उसको काफी प्राइजेस मिलते थे। और जब हमारी गैदरिंग होती थी तो हमें 20-25 प्राइज लेने स्टेज पर जाना पड़ता था और वो हमारे लिए सबसे खुशी की बात रहती थी
0: जी।
1: और इसी दौरान आज जो मेरी पत्नी है सुनंदा, वो तो स्कूल से हमारे साथ थी। प्रॉब्लम ये थी कि वो पहले बेंच पे बैठती थी, मैं लास्ट बेंच पे बैठता था क्योंकि वो बहुत होशियार थी और हम तो बस पिछले

0: पिछड़े हुए जाति के लोग
1: तो वो पलट के नहीं देखती थी।
0: उस वक्त उन्होंने नहीं देखा, लेकिन बाद में जब हम कॉलेज में इकट्ठा हुए तो धीरे धीरे उनका ध्यान हमारी तरफ गया। हमारे अंदर हम दोनों एक दूसरे को चाहने लगे और बाद में हमने शादी भी कर ली। उस वक्त एक फिल्म आती थी जिसका नाम था आराधना और उसका गाना था मेरे सपनों की रानी कब आएगी।
1: तो गई गीत सुन लेते हैं जी।

0: चलिया।
1: लेकिन आप आगे ये बताइए ना, थिएटर की जो बात है वो वहाँ से आपकी शुरुआत हो गई, और कितने साल, मतलब जब आपके मन में ये सुखबुगाहट होने लगी थी कि मुझे ये सब कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी है, तो आपके मन ने ये भी ठान लिया कि आगे जाके एमए वगैरह नहीं करना है, कौन सा विषय था आपका?
2: नहीं, मैं बीए होने के बाद मैंने यही सोचा कि मैं थिएटर करता रहूंगा, प्रोफेसर बनूंगा, और प्रोफेसर बनने के बाद कॉलेज में थिएटर करूंगा, क्योंकि हमारे कॉलेज में मधुकर तोरणमल

0: थे, जो प्रोफेसर थे और थिएटर भी करते थे, तो वही आदर्श मेरे सामने था। इसलिए मैंने सोशियोलॉजी लेके पुणे गया, पुणे यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ। लेकिन उस वक्त भालभा केलकर के साथ पीडीए में नाटक करता रहा
1: जी।
0: रात भर जागते थे, पैदल यूनिवर्सिटी वापस आते थे, और एक दिन भी मैं क्लास में गया नहीं। उस वक्त हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट विद्याधर पुंडलिक जी थे, तो एक दिन पीडीए का एक प्रोग्राम था, तो उसमें उनको एज अ चीफ गेस्ट बुलाया था। तो मेरा नाम सुनकर उन्होंने कहा कि देखो, मुझे आपका नाम कुछ याद आ रहा है। मैंने कहा यस सर, आप मुझे सिखाते हो। मैं सिखाता हूं तुम्हें? मैंने कहा जी हाँ, लेकिन मैंने तो कभी क्लास में आपको देखा नहीं। हाँ बिल्कुल याद आया, मैं जो हर रोज ये लेता हूँ, हाँ रोल कॉल लेता हूँ, उसमें आपका नाम होता है, लेकिन आप कभी दिखे नहीं। तो मैंने कहा देखो, ये पीडीए में मैं नाटक कर रहा हूँ, रिहर्सलें करता हूँ, 11 बजे खत्म होती है, उस तब तक वो पीएमटी की बस नहीं होती, फिर पैदल यूनिवर्सिटी तक जाना पड़ता है, तो रात को लेट सोते हैं, तो सवेरे लेट उठते हैं, तो आपका पीरियड हो जाता है। अरे बोले एक काम करो, नाटक करते हो अच्छा है, लेकिन बीच में कभी कभी आया करो, ताकि मैं आपका रोल कॉल में नाम लिख दूंगा। अच्छा लगा सुनकर। मैंने कहा सर क्या करूं, मैं नाटक के सिवा जी नहीं सकता। तो उन्होंने कहा ये अच्छी बात है, आप आगे बढ़िए। और थिएटर करने लगा, तो फिर उसके बाद उसी वक्त 1 साल हुआ था, तो मुझे आपकी आकाशवाणी की तरफ से एज ए अनाउंसर नौकरी मिली।
1: वाह।
0: तो मैं परभनी में अनाउंसर था 6 महीने,
1: जहाँ पे कृषि विद्यापीठ है
0: जी। और फिर वो नौकरी छोड़ी मैंने, क्योंकि तबीयत खराब हो गई।
1: आपको कैसे लगता था जब माइक्रोफोन के सामने, मुझे लगता है उस समय शायद पहली बार आप स्टूडियो में अकेले बैठ के बात कर रहे होंगे श्रोताओं के साथ, तो कैसा लगा था आपको?
0: नहीं, अच्छा लग रहा था, लेकिन सामने पैक्स बैठते थे।
1: मतलब प्रोग्राम ऑफिसर
0: जी, और वो हमेशा ध्यान से सुनते थे कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। और उस जमाने में गांव में हमें बड़ी इज्जत थी, नए होकर भी, क्योंकि वहाँ एक मराठी प्रोग्राम था आपली आवड़, और वो हम सुनाते थे,
1: मतलब जैसी आपकी फरमाइश पे जैसे जी, होता है हेलो फरमाइश।
0: और उस वक्त हम अगर तेल लेने जाएं, किसी होटल में चाय पीने जाएं, तो वो होटल मालिक या तेल देने वाला या सब्जी देने वाला हमें कहता था साहब 2 रुपये कम दो, 1 रुपया कम दो, 8 आना कम दो, लेकिन हमारा नाम लो। तो हमें बड़ा अच्छा लगता था, हम कहते थे नहीं नहीं भैया, पैसे क्यों कम लेते हो, मेहनत करते हो, ले
1: लेकिन
0: लो।
1: बहुत अच्छा लगता होगा नहीं ऐसा, जब समाज में लोगों से प्यार मिलता है, इज्जत मिलती है। तो लेकिन आपने छोड़ तो दी वो नौकरी
0: जी, छोड़ दी। और उस वक्त मैंने वहां पर एक फिल्म आई थी प्यासा,
1: पुरानी
0: बहुत गुरुदत्त जी की, और वो प्यासा फिल्म से मैं बहुत प्रभावित हुआ था।
1: ये प्यासा फिल्म से कौन सा गीत आपको बहुत अच्छा लगा?
0: मुझे सभी गीत अच्छे लगे।
1: अभी एक बहुत अच्छा काम करते हैं, जो आपकी पसंद का गीत हम सुनते हैं, और हमारे श्रोताओं को भी बहुत अच्छा लगेगा
0: जी।
1: वो प्यासा फिल्म से आप कह रहे थे
0: जी जी
1: जी।

0: ये सदाशिव जी की आवाज देखिए ना, इंसान चला जाता है, यादें रह जाती हैं, और विविध भारती में तो ऐसा होता है कि आवाजें रह जाती हैं, और कितनी ही आवाजों के उजाले हमारे स्टूडियो को और हमारे संग्रहालय को रोशन करते हैं। रीमा जी, बहुत सारी बातें हुई हैं और अब वो वक्त है जहां आपको एक बहुत जरूरी काम करना है, और वो ये काम करना है कि एक बेटी होने के नाते कहना है कि इतने वर्ष बाद भी क्या हैं आपके पिता आपके लिए। हो सकता है कि ये एक ऐसी बात हो जो आप उनसे कभी ना कह पाई हो, अपने घर आकाशवाणी में आप कह पाएंगे।
1: एक बेटी होने के नाते मैं सबसे पहले तो ये कहूंगी कि मैं बहुत बहुत बहुत नसीबों वाली हूं कि पापा जैसे पिताजी मुझे मिले। ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूं कि वो बहुत बड़े कलाकार थे, मैं ये इसलिए कह रही हूं कि उन्होंने कभी भी हमें शब्दों में सिखाया नहीं। उन्होंने जो भी किया उसमें से वो चाहते थे और वो हमें खुला छोड़ देते थे कि तुम्हें जो सीखना है इसमें से सीखो। इसी वजह से आज भी, अभी उन्हें गुजरे हुए 11 साल हो गए, आज भी जब कोई घटना याद आती है, कुछ किस्सा याद आता है, तो जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे उसमें से जो मैं सीखती हूं वो मैच्योर होता जाता है, वो नया नया मुझे सीखने को मिलता है। और जैसा मैंने कहा कि मैं लकी इसलिए भी हूं कि ये आजादी उन्होंने मुझे दी, हम सब बहनों को इनफैक्ट दी, कि आपको जो करना है वो आप करो, सिर्फ सही करो, कभी भी कुछ गलत मत करो जिससे किसी इंसान को दुख पहुंचे या कुछ गलत हो। उनका सिर्फ एक ही कहना होता था कि आप जो करते हो वो करने के बाद रात में जब आप घर पे आते हो और बिस्तर पर लेटते हो तो एक भी मिनट आपका ऐसा नहीं गुजरना चाहिए कि यार ये मैंने क्या किया। बिस्तर पर लेटते ही आपकी आंखें बंद हो जाए और आपको नींद आ जाए शांति से, ऐसा आपका बर्ताव पूरे दिन में हो, फिर वो आपके काम में हो, पर्सनल रिलेशनशिप्स में हो, कहीं पर भी हो। तो ये जो सीख है, ये जो पापा ने दी है, और ये उन्होंने, जैसा मैंने कहा कि शब्दों में नहीं, उनके खुद के बर्ताव से उन्होंने हमें सिखाई है। और साथ ही मैं ये कहूंगी कि उन्होंने जो लॉयल्टी उनके अंदर थी वो उनकी बीवी के प्रति उनकी लॉयल्टी थी, उनके पिताजी के प्रति उनकी लॉयल्टी थी, हम बच्चों के प्रति उनकी लॉयल्टी थी, वैसी ही लॉयल्टी उनके काम के प्रति भी उनकी थी। जितना जितना वक्त गुजरता जा रहा है उतना उतना मैं ये समझ पा रही हूं कि उनके जीने के और उनकी पर्सनालिटी के काफी सारे ऐसे पहलू थे जो जब वो थे तब मैं समझ नहीं पा रही थी। तो मैं पापा से ये कहना चाहूंगी कि पापा, आपने जो भी करके रखा है एज एन आर्टिस्ट, एज अ फादर, वो शायद समझते समझते पूरी जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन आज भी रोज कुछ ना कुछ ऐसा याद आता है, कुछ ना कुछ ऐसा मिलता है, आपके कोई मीम हो या कोई रील हो कि एक ऊर्जा मिलती है आगे जाने की, और ये ऊर्जा हमारे साथ इतने प्रकार से है आपके होने से, ये नसीब वालों को ही मिलता है। एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ग्लैड कि आप मेरे पापा थे। मैंने बहुत झगड़ा किया हुआ है पापा के साथ, काफी बार हम काफी झगड़ते थे, लेकिन वो भी एक फ्रीडम उन्होंने हमें दिया था, उनसे झगड़ा करने का फ्रीडम। बुरा लगता है कि मेरी बेटी उन्हें मिल नहीं पाई, खैर वो अलग अलग तरीके से उसे मिलते रहते हैं।
0: क्या बात है रीमा जी, पिताजी इतने मशहूर कलाकार थे और उनका कामयाबी का झंडा बहुत बुलंद था। जब आपके सामने करियर

0: का सवाल आया तो उनके सामने जाके क्या ऐसा कुछ हुआ कि मैं भी इंडस्ट्री में?
1: हाँ, एक्चुअली जैसा मैंने कहा कि मैंने मास्टर्स इकोनॉमिक्स में किया है पूना से, कोकले इंस्टीट्यूट से. तो पापा एकदम सेट थे कि अभी सबसे छोटी बेटी है वो इकोनॉमिक्स कर रही है, वो शायद उसमें पीएचडी करेगी, हो गया, एवरीथिंग इज सेट. पर मैं जब पूना में जॉब कर रही थी तब पुणे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल शुरू हुआ और तब जाके मैंने राशोमान देखी अकीरा कुरोसावा की. और सिनेमा की ताकत जो है वो सडनली मुझे ऐसे लगा कि यार ये करना चाहिए. मैंने अगर पीएचडी किया तो मैं रिसर्च पेपर लिखूंगी, वो किसी मैगजीन में छपके आएगा, खत्म. ऐसा कुछ करना चाहिए. और मैंने जाकर पापा से ये कहा तो सबसे पहले तो पापा की रिएक्शन थी, पर तुझे तो इकोनॉमिक्स करना था. मैंने कहा हाँ करना था लेकिन अभी मुझे ये करना है. तो फिर वो कहते थे फिर तू एक्टिंग कर ले. सर मुझे एक्टिंग नहीं करनी. क्यों एक्टिंग क्यों नहीं करनी? बिकॉज वो एकदम ऑफेंड हो गए कि एक्टिंग क्यों नहीं करनी तुझे. तब मैंने उन्हें वो औरंगाबाद वाला किस्सा याद दिलाया कि आपको याद है आप अजंठा नहीं देख पाए थे, तो मुझे कैमरा के सामने नहीं जाना है, मैं कैमरा के पीछे रह के जो भी करना है करूंगी. ओके
0: राइट.
1: तो फिर पापा ने कहा कि ठीक है फिर आपको अगर करना ही है ये तो उसमें पहले आपको सीखना जरूरी है. फिर न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी में मैं जाकर सीख कर आई, फिर मैंने असिस्टेंटशिप की और फिर मेरा करियर जैसे बनना था वैसे बना. पर अगेन जैसे पापा का सामाजिक एक ये रहता था वैसा इनडायरेक्टली डायरेक्टली मुझ में भी है. तो मैं एनजीओ के साथ ज्यादा काम करती हूँ, कमर्शियली मैं थोड़ा कम काम करती हूँ.
0: बहुत सारी बातें पिताजी के बारे में हुई और कई ऐसे पहलू सामने आए जिनके बारे में शायद कभी किसी ने नहीं जाना था. तो इसीलिए सार्थक होता है ये कार्यक्रम जिसका नाम उजाले उनकी यादों के है. तो आपके जरिए यानी रीमा की यादों के जरिए पिताजी सदाशिव अमरापुरकर की यादों के उजाले आपने सजाए. बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में आने के लिए और हमसे ये लंबी बातचीत करने के लिए.
1: थैंक यू सो मच. ऐसे होता है ना कभी कभी डर लगता है कि हम बहुत ज्यादा उनकी बातें करेंगे तो रो देंगे, इसलिए कई बार हम खुद से भी दूर भागते हैं और बातें नहीं करते हैं. पर यहाँ बुलाकर वो पुराने दिन किस्से घटनाएं और पापा उनको याद दिलाया, थैंक यू सो मच. मुझे नहीं लग रहा था कि मैं इतनी देर बात कर पाऊंगी लेकिन आपने जिस तरह से मुझसे बातचीत की है वो बहुत ही मुझे इट हैज बीन एन एनरिचिंग एक्सपीरियंस.
0: थैंक यू वेरी मच. शुक्रिया.
2: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की सुपुत्री रीमा अमरापुरकर से यूनुस खान की बातचीत की चौथी और अंतिम कड़ी. कार्यक्रम का संपादन नेहा शर्मा, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कामले. अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे किसी और मशहूर हस्ती की यादों के उजाले लेकर. अब दीजिए इजाजत. नमस्कार.

तमाम सुनने वालों को नमस्कार, और मैं हूं आपके साथ, मेरा नाम है सलमा, और हम लेकर आए हैं आपके लिए दिल की बातें, दिलदार की बातें, उल्फत की बातें और कुछ प्यार भरे चुनिंदा नख्मात की सौगात कार्यक्रम छाया गीत में। जज्बातों में कहीं आग सी लगी हो जैसे, एक नदी झूम के सहरा में बही हो जैसे, कानों में आपने कुछ मेरे कहा लगता है, सीने में झनकार सी उठी हो जैसे। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर बनकर, हर गली लगता है अब तेरी गली हो जैसे। अपने आगोश में हमको यूं छुपा लीजिए, जिंदगी आपके पैकर में ढली हो जैसे।

ये हवा, रंग, तबस्सुम, ये महकती खुशबू खूब फैले हैं फिजा में। तेरे परचम सारे तेरे दर पे ही रहूं है यही तमन्ना मेरी, बीत जाए तेरी गलियों में ही मौसम सारे। नींद आती नहीं देखा है जब से तुमको, तेरी आंखों में नजर आते हैं मरहम सारे।

मैं तुम्हारी आंखों से एक बार खुद को देखना चाहती हूँ, तुम्हारी पसंद को समझकर खुद को बेहतर और संवारना चाहती हूँ। मुझे तुम्हारे दिल में गहरे, बहुत गहरे डूब कर निकलना है और वहां से समेट कर लाई गई मोहब्बत की खुशबू को लेकर बीच आंगन में किसी फूल की तरह खिल उठना है, नए रंग और नई खुशबू के साथ। और मैं जब जब भी ऐसा सोचती हूँ, मुझे दुनिया दूर तक खूबसूरत

0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं छाया गीत। इस बार जब आओ तुम यहाँ उदास सूनी झील में चांद तारों को साथ लेकर, तो मैं भी नजर आऊंगी तुम्हें के चाहत लौट कर आने के वादे पर एतबार करती है। तो जैसे बारिश की बूंदें जमी पर गिर के समा जाती हैं उसमें, वैसे ही समा जाऊंगी मैं भी तुम में।
1: तड़प ये दिन रात की कसत ये।

लिखा, नदी में चलती नाव पर भी लिखा, कुछ लिखा किनारे बैठकर, ख्वाबों में तैरते हुए बहते हुए लिखा, कुछ मझधार में लिखा, कुछ लिखा डूबकर, और लिखा कि प्यार नहीं सिखाता प्यार से इनकार, और सिखाता है प्यार ही डूबना प्यार में। ये प्यार घाटे का वो सौदा है आखिर में जो फायदे से भर देता है। मुनाफे की किताबों में इसका कोई खाता नहीं, फिर भी ये दिवालिये दिल को मोहब्बत के बेशकीमती खजानों

0: रहूंगी मैं तुम्हारे साथ, जिस तरह जिंदगी के साथ सांसें, जमी के साथ आसमां, नदी समंदर के साथ लहरें पानी, फल फूलों के साथ डाली, चिड़ियों के साथ चंचल चहकार, सूरज के साथ रोशनी, खेत खलियानों के साथ हरियाली, बगिया के साथ माली, राजा के साथ रानी, मोहब्बत के साथ मेल मिलाप के जज्बात, उसी तरह रहूंगी मैं तुम्हारे साथ।
1: तू प्यार,
2: तू प्रीत,
1: तू चैन,
2: तू रात,
1: जीना।

0: साथियों, अब वक्त आ गया है कार्यक्रम से रुखसत हो जाने का। आज की मुलाकात बस इतनी। अब दीजिए सलमा को इजाजत। शुक्रिया, नमस्कार।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। तराने डे पुराने कार्यक्रम लेके हम हाजिर होंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: सिनेमा रोड रावपुरा वडोदरा।
1: हर रोज सुबह 7 बजे सुनिए कार्यक्रम भूले बिसरे गीत, जिसके प्रायोजक है वीको वज्रदंती। मजेदार नहीं असरदार, भारत का गम एक्सपर्ट।

तराने नए पुराने कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज कार्यक्रम में आपके साथ है आपकी दोस्त प्रीति शर्मा। दोस्तों, आज अभिनेता प्राण की पुण्यतिथि है, तो उनको विविध भारती परिवार की तरफ से श्रद्धांजलि देते हैं और उनको याद करते हुए कार्यक्रम में कुछ गाने उनकी ही फिल्मों से शामिल कर रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गाना मन्ना डे की आवाज में उनकी ही फिल्म से।

शीशीए किते करता ऐसा काए को होता, शीशीए किते करता ऐसा काए को होता। देख ले जिस दिन माइकल को रात को सेठ नहीं सोता, खुद चोरी करता है लेकिन चोर से डरता है, फिर न कहना माइकल दारू पी के दंगा करता है।

चोर बड़े जंगल में है मोर बड़े शहर में है चोर बड़े अपने व्यवस्था यहाँ पड़े हुए हैं और बड़े माइकल तो बस लोगों की खाली जेब कतरता है।

पैसा चाहिए आखिर जीने के लिए, लोग दीवाना है जो यूं इस पैसे पे मरता है, फिर न कहना माइकल दारू पी के दंगा करता है।

से चार हो सकते हैं, चार से आठ हो सकते हैं, आठ से साठ हो सकते हैं। जो करता है पाता है, अरे अपने बाप का क्या जाता है। जोशी पड़ोसी कुछ भी बोले बोले, हम तो खुश नहीं बोलेगा। हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है, हम बोलेगा तो

0: गाइए ना।
1: दिल की उमंग है जवान,
0: गाइए ना, क्या मुश्किल है, सरगम बताऊं।

अभी आप सुन रहे थे अभिनेता प्राण की फिल्मों के गाने। तराने नए पुराने कार्यक्रम का शेष भाग आप सुनेंगे समाचारों के बाद। यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। थोड़ी ही देर में समाचार होंगे।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। अमेरिका, ब्रिटेन और 12 अन्य पश्चिमी तथा एशियाई देशों ने 2016 के मध्यस्थता निर्णय के आधार पर दक्षिण चीन सागर में चीन के व्यापक दावों को अवैध बताया है। इन 14 देशों के संयुक्त बयान में कहा गया है कि विवादित जलक्षेत्र में क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डालने वाली कार्रवाई अस्वीकार्य है। 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के बयान में इसे विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में ऐतिहासिक निर्णय बताया गया है। हालांकि चीन ने इस निर्णय को खारिज करते हुए कहा है कि यह अमान्य है और इसका कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं है। उसने दोहराया है कि वो इसे न तो स्वीकार करता है और न ही मान्यता देता है। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि पोत

0: पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप क्षेत्र के समुद्री मार्गों पर निर्बाध और सुरक्षित नौवहन तथा व्यापार जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। अमेरिका ने आज सुबह ईरान पर फिर से हवाई हमले किए। ये हमले होर्मुज जलडमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर ईरान के हमले के बाद किए गए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि हमलों में ईरान के लगभग 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। उसके बाद ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इस बीच ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने अगली सूचना तक होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की है। देशभर में पौधे लगाने के लिए आज व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत उत्तर प्रदेश में आज 35 करोड़ पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे लगाना बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने से चिंतित है।
1: वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा, वनों की कटाई, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। इस अभियान के तहत आज उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज इंदौर में एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इसका लक्ष्य राज्यभर में 21,00,000 पौधे लगाना है। इस अभियान के अंतर्गत 51,000 वर्षा जल संचयन इकाइयां स्थापित करने की भी योजना है। सरकार ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से वाहन के ईंधन टैंक में समस्या संबंधी दावे का खंडन किया है। सोशल मीडिया पर वायरल फर्जी तस्वीर में ऐसा दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को झूठा बताया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि तेल विपणन कंपनियों द्वारा आपूर्ति किया जा रहा E20 पेट्रोल भारतीय मानक ब्यूरो के निर्धारित मानकों के अनुरूप है। लंदन के लॉर्ड्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम और इंग्लैंड के बीच एकमात्र टेस्ट के तीसरे दिन का खेल जारी है। भारत ने अपनी दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक 4 विकेट पर 250 रन बना लिए हैं। इससे पहले इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 170 रन पर सिमट गई। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला डबल्स फाइनल्स में चीन की गुआ खानयू और फ्रांस की क्रिस्टीना मेल्डोनोविक की जोड़ी का मुकाबला कनाडा की गैब्रिएला डाब्रोवस्की और ब्राजील के लुइसा स्टेफिनी से जारी है। पुरुष सिंगल्स का फाइनल आज इटली के यानिक सिनर और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव के बीच खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM बैंड 93.9 मेगा हर्ट्स पर विविध भारतीनु आ वडोदरा केंद्र आप सांभळी रह्या छो। श्रोता मित्रों, पूजा प्लस मात्र मंगल मुहूर्त नक्की करो, दूल्हे राजा ने अमे सजावीशुं। पधारो अमारा दूल्हे राजा डिपार्टमेंट मां, पूजा प्लस रावपुरा वडोदरा। दोस्तों, आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, और आइए आप सुनते हैं कार्यक्रम तराने नए पुराने का शेष भाग।
3: प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता
4: है। यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: इस गाने के साथ ही तराने नए पुराने कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: तराने नए पुराने।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए अब आपको बता दें आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा झरोखा के अंतर्गत। आपसे कुछ ही देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम संध्या रंजन। 6:45 पर सुनिए संगीत सरिता श्रृंखला शास्त्रीय संगीत फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका भाग 12। कलाकार हैं बांसुरी वादक पंडित रोनू मुजुमदार, संवादिका ममता सिंह, संपादन सहायक झवना सोलंकी, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। विशेष जयमाला में आज सुनिए सैनिकों की शौर्य गाथा शाम 7:00। आज आप सुनेंगे महावीर चक्र से सम्मानित सिपाही इमली आकुम एओ की शौर्य गाथा। 7:45 पर सुनिए इंद्रधनुष में साज और आवाज। रात्रि 8:00 हवा महल में सुनिए हास्य नाटिका कॉलोनी कल्याण मंडल। लेखक एमपी लेले, निर्देशक स्वतंत्र कुमार।

Escucha. चित्रलोक का समय रहेगा रात्रि 8:15 पर, रात्रि 9 बजे सुनिए आपके लिए। आज के फनकार आप सुनेंगे रात्रि 9:30 पर। कार्यक्रम केंद्रित है निर्माता निर्देशक बिमल रॉय पर, प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। रात्रि 10 बजे सुनिए छाया गीत, आलेख और स्वर यूनुस खान का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। टलती जाए रात आप सुनेंगे रात्रि 10:30 पर, और रात्रि 11 बजे कार्यक्रम होगा विविधा। ये थे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। आइए अब आपको बता दें कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। कल सुबह 6:05 पर सुनिए वंदन वार, सुबह 6:30 और शाम 6:30 पर सुनिए कार्यक्रम विवरण झरोखा में। रामचरितमानस आप सुनेंगे 6:35 पर। कल प्रसारित होगा भाग 248। सुबह 6:45 पर सुनिए संगीत सरिता, सुनिए नई श्रृंखला सायंकालीन संधि प्रकाश राग, कलाकार गायिका विदुषी आरती अंकलीकर का पहला भाग, प्रस्तुति रूपाली रूपक। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण होगा शाम 6:45 पर। भूले बिसरे गीत आप सुनेंगे सुबह 7 बजे, 7:30 पर सुनिए हम है राही प्यार के, सुबह 8:15 और दोपहर 2 बजे सुनिए त्रिवेणी, आलेख और स्वर दीपा महेश्वरी का, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। चित्रलोक आप सुनेंगे सुबह 8:30 पर। आज की फनकार का समय रहेगा 9:30। कार्यक्रम केंद्रित है निर्माता निर्देशक प्रकाश मेहरा पर, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। सुबह 10 बजे पिटारा में सुनिए उजाले उनकी यादों के, इसमें सुनिए रीमा अमरापुरकर से यूनुस खान की बातचीत का भाग 4, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कामले। रंग तरंग आप सुनेंगे सुबह 11 बजे और रात्रि 11 बजे। यादों की महफिल सजेगी दोपहर 12:05 पर। दोपहर 1 बजे कार्यक्रम होगा सुरीला सफर, सदाबहार नगमे आप सुनेंगे दोपहर 2:30 पर। दोपहर 3 बजे कार्यक्रम होगा सखी सहेली, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। दोपहर 4 बजे सेहतनामा में सुनिए प्रोस्टेट और अन्य बीमारियां, इस विषय पर डॉक्टर उमेश ओझा से ममता सिंह की बातचीत का पहला भाग, संपादन सहयोग काजल बदरगे, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। छाया गीत आप सुनेंगे शाम 5 बजे, 5:30 पर सुनिए तराने नए पुराने। शाम 6:35 पर कार्यक्रम होगा संध्या रंजन, जयमाला का प्रसारण होगा शाम 7 बजे, 7:45 पर सुनिए इंद्रधनुष के अंतर्गत एक ही फिल्म से, कल की फिल्म है अदालत। हवा महल का समय रहेगा रात्रि 8 बजे। कल हवा महल में सुनिए हास्य नाटिका दादाजी का चश्मा, लेखक चंद्रशेखर पांडे, निर्देशन राजेश रेड्डी। चित्रलोक आप सुनेंगे रात्रि 8:15 पर। रात्रि 9 बजे सुनिए आपके लिए 9:30 पर कार्यक्रम होगा आज के फनकार। कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेता प्राण पर। छाया गीत आप सुनेंगे रात्रि 10 बजे, आलेख और स्वर जयंत पात्रिकर का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। और रात्रि 10:30 पर सुनिए ढलती जाए रात। ये थी रूपरेखा आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की झरोखा के अंतर्गत। ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनिए कार्यक्रम संध्या रंजन।

अभी आपने सुना साया फिल्म का गाना के और श्रेया घोषाल की आवाजों में। गीत सईद कादरी का था, संगीत अनु मलिक का। आइए अब सुनते हैं मोहम्मद रफी और साथियों की आवाज में अमर फिल्म का गाना। गीत शकील बदायूनी ने लिखा है, संगीत नौशाद का है।

0: संगीत सरिता कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार। आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सिंह। लीजिए सुनिए इस श्रृंखला की 12वीं और अंतिम कड़ी।
1: श्रोताओ नमस्कार। पंडित जी आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
2: नमस्कार
1: पंडित जी। ये जो बांसुरी दिख रही है, पांच तरह की बांसुरी है इसमें, तो ये जो एक तो शंख बांसुरी है
2: जी,
1: और एक सबसे छोटी वाली बांसुरी को क्या कहेंगे?
2: ये हाई पार सप्तक।
1: गजब,
2: यहाँ तक चला गया। इसके ऊपर भी मैं जा सकता हूँ।
1: हाँ।
2: थोड़ी सी शार्प हो जाएगी।
1: अरे गजब,
2: मैं पीछे।
1: हाँ।
2: सिक्किम का जो ये है
1: जी, जी, जी, बिल्कुल। हाँ

0: जी क्या बात है, बढ़िया। और उससे जो बड़ी वाली है उस वो कौन सी?
1: ये पन्ना बाबू की बनाई हुई मेन क्लासिकल सोलो इसमें बसता है
0: जी।
1: पन्ना बाबू के बांसुरी जो बनाई है ये, उनको श्रद्धांजलि देते हुए मैं थोड़ा सा हंस ध्वनि आपको सुना रहा
0: हूं। जी जी सुना।
1: और बंदिश मेरे गुरुजी की है
0: जी। प्लीज
1: कल्पेश भाई आप शुरुआत करिए।

0: वाह, राघवन सिद्ध ध्वनि पे ये बांसुरी की तान थी, अद्भुत थी, मोहित कर दिया, मंत्रमुग्ध कर दिया आपने। तो हम आखिर में विदा के रूप में विदा नहीं करेंगे, बल्कि आप इस कड़ी को, इस श्रृंखला की विदा में आमद करेंगे कि आप फिर आते रहिए।
1: बहुत अच्छी बात कही आपने। हमारे शास्त्रीय संगीत में एक परंपरा है, राग भैरवी से अंत करते हैं
0: जी।
1: आज की कड़ी आखिरी कड़ी है, इसी उम्मीद के साथ जा रहा हूँ कि फिर आना है
0: जी।
1: तो भैरवी में एक जगजीत सिंह जी के भी बहुत सारे सुपरहिट गजलों में मैंने बजाया, उस स्टेज में गाते थे फयाज खान साहब को याद करके
0: जी।

0: अद्भुत तान छेड़ी आपने पंडित जी, और साथ में जो गायन का सुर भी साधा, बड़ा ही मोहक था, बहुत अच्छा लगा। तीन ताल में निबद्ध ये बंदिश थी, अजीत जी ने बड़ी खूबसूरती से इसे अंजाम दिया, और आज ये इस श्रृंखला की आखिरी कड़ी है। अब हमें तो ऐसा लग रहा है कि इस कड़ी को, इस श्रृंखला को खत्म न होने दें, और कड़ियां इसमें जोड़ते जाएं और मालाएं पिरोते जाएं, लेकिन समय की बाध्यता है। तो आज इस आखिरी कड़ी में हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं, सबको धन्यवाद कहते हैं। अजीत पाठक जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बड़े मनोयोग से आपने तबला संगत की, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद, नमस्कार। कल्पेश जी, आपने बहुत ही मोहक ढंग से बांसुरी पर संगत कर रहे थे पंडित जी के साथ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: नमस्कार, धन्यवाद।
0: रोनू दादा, आज इस श्रृंखला में जितनी कड़ियां पिरोई गई हैं, इन कड़ियों में जो बांसुरी की तान आपने छेड़ी है, जो जानकारियां दी हैं, इसके लिए मेरे पास फिलहाल शब्द नहीं है, बस इतना श्रोताओं को बता दें कि ये अद्भुत श्रृंखला है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपका ममता जी, हम लोग भी यहाँ पर आकर बहुत प्रसन्न हुए, और लगा ही नहीं कि कैसे पूरा दिन बीत गया, और हम चाहते हैं कि विविध भारती के स्टूडियो में बार बार आएं और इसी तरीके से माँ सरस्वती की सेवा करें।
0: जी, हम सबका सौभाग्य है, पूरे विविध भारती परिवार की ओर से आप सभी का बहुत बहुत आभार, नमस्कार,
1: धन्यवाद।
3: शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। श्रोताओं, संगीत सरिता कार्यक्रम में आज आपने सुनी इस श्रृंखला की 12वीं और अंतिम कड़ी। इस श्रृंखला के लिए आमंत्रित कलाकार थे सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार। आपसे बातचीत की ममता सिंह ने। आपको बता दें, बांसुरी संगत कल्पेश सांचला की और तबला संगति अजीत पाठक की। श्रोताओं, आपको ये श्रृंखला कैसी लगी? हमारे फेसबुक पेज के माध्यम से अपने उद्गार हम तक अवश्य पहुंचाएं। आपको बता दें, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी किरण बंग, संपादन सहयोगी झरना सोलंकी, और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती विशेष जयमाला कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: ब्रो लग्नानी शॉपिंग थई?
2: हा वरसाद मा।
1: यस अने ए पण पूजा प्लस साथे डिजाइनर अने स्पेशल वेडिंग कलेक्शन पर छे अप टू 50% ऑफ। विजिट पूजा प्लस नवरन सिनेमा रोड रावपुरा वडोदरा।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा।
2: किसने कहा है? किशोरदन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, तो मुझे वो गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।

0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।
1: विशेष जयमाला।

0: आजादी जरा याद करो कुर्बानी।
1: प्रस्तुत है विशेष जयमाला, सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

फौजी साथियों, विशेष जयमाला कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। अपने साथियों के साथ सिपाही इमलियाकुम ने इस जगह पर दुश्मन की पोजीशन और लोकेशन को ट्रैप करने का एक खाका तैयार किया। एक खास स्ट्रेटजी के तहत दुश्मन पर धावा बोलने की रणनीति अपने साथियों को समझाई और चल दिए मिशन की कामयाबी के रास्ते।

गौरतलब है कि शत्रुओं ने लगभग 17,000 फीट की ऊंचाई पर डेरा जमाया था। उनकी एक्चुअल पोजीशन क्या है, तादाद दुश्मनों की कितनी है, उनके हथियारों का जखीरा कितना है, इस बात का आकलन सिपाही इमल्याकुम आओ ने अपने तजुर्बे से कुछ हद तक लगाया। लक्ष्य को किसी भी तरह से हासिल करना और पॉइंट 4875 पर तिरंगा फहराना ही अब सिपाही इमल्याकुम और उनके साथियों का मिशन था। सिपाही इमल्याकुम ने इन बर्फीली ढलानों पर अपने सैनिकों के साथ पोजीशन ली। सैनिकों में कुछ गोरखा जवान भी साथ थे जो खुकरी और क्लीवर चलाने में दक्ष थे। वो तारीख थी

8 जुलाई सन 1999 जब दिन में ही इस मिशन को अंजाम देने का निर्णय इमलियाकुम आओ ने लिया और नागा बटालियन को पहली रक्षा पंक्ति में तैनात किया। उधर चोटी पर बैठे दुश्मन सैनिक भी लामबद्ध तरीके से हमले की फिराक में थे। परिस्थितियां अत्यंत विपरीत थीं। सर्दी की धुंध और बर्फीले पहाड़, बेहद संकरे नाले जो बर्फ पे पैर टिकाने और आगे बढ़ने का रास्ता थे। भारतीय सैनिकों की सुगबुगाहट पाकर ऊंचाई पर बैठे शत्रुओं ने मोर्टार और रखे हुए असलाहों और ऑटोमेटिक हथियारों से रह रहकर हमले शुरू किए।

भारतीय सैनिकों पर ऊपर से मोर्टार्स दागे गए, लेकिन ये मिशन जितना खतरनाक था हमारे सैनिकों के हौसले उतने ही बुलंद। हालात की नज़ाकत को देखते हुए, अपने सैनिकों को सावधान करते हुए, दुश्मन सैनिकों को चकमा देते हुए सिपाही इमलियाकुम बड़ी चतुराई से आगे बढ़ते रहे। बर्फीली ढलान से आगे बढ़ते हुए चोटी तक के फासले को तय किया। यहीं दुश्मनों द्वारा कब्जा की गई इस दुर्गम ऊंचाई पर डेरा डाले दुश्मनों की पहली लाइन के एक संतरी को बड़ी फुर्ती से इमलियाकुम ने मौत की घाट उतारा। अफरा तफरी में एक और दुश्मन संतरी आगे बढ़ा, इसे भी सिपाही इमलियाकुम ने मौत की नींद सुला दिया। दुश्मन केंद्र में खलबली मच गई और शत्रु सैनिकों ने इमलियाकुम और उनके सिपाहियों पर मशीन गन और ऑटोमेटिक हथियारों से हमले करने शुरू किए।

0: बिना वक्त गवाए भारतीय सैनिकों ने भी उन पर अपनी मशीन गन का मुंह खोल दिया। सिपाही इम्लियाकुम घायल होने के बावजूद आगे बढ़ते रहे, अपनी गोलियों से कई दुश्मनों को मौत की नींद सुलाया, उन पर हथगोलों से निशाना साधते हुए उन्हें मार गिराया। दुश्मन अब काफी करीब था। घायल अवस्था में उन्होंने दुश्मन के साथ गुत्थम गुत्था में कुछ और को मार गिराया और कई को अपनी संगीन का निशाना बनाया। उनकी इस फुर्ती और हौसले को देखते हुए दुश्मन खेमे में अफरा तफरी मच गई। फौजी साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं भारतीय सेना के जाबाज फौजी सिपाही इम्लियाकुम आओ की शौर्य गाथा। इस कार्यक्रम का बाकी हिस्सा आपको सुनवाएंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
1: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को

विशेष जयमाला कार्यक्रम की शौर्य गाथा की इस कड़ी में आज आप सुन रहे हैं भारतीय सेना के जाबाज फौजी सिपाही इमलियाकुम आओ की शौर्य गाथा। बर्फीली ढलान की आड़ में कुछ भारतीय सैनिकों ने मोर्चा संभाला। धीरे धीरे ये बर्फीली वादियां दोनों तरफ की गोलाबारी से गूंज उठी और सफेद बर्फ की हसी वादियों में लहू का लाल रंग साफ नजर आने लगा। आगे बढ़ते भारतीय सैनिकों में कई हताहत हुए और कुछ ने मातृभूमि की

आन बान और शान में अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया। जो बिछड़ गए उनके जज्बों को सलाम कर साथ ही सैनिक मोर्चों पर डटे रहे। जैसे ही शत्रु सैनिकों के अड्डे की थाह का पता चला, सिपाही इमलियाकुम ने भारतीय सैनिकों के साथ दुश्मनों पर तेजी से धावा बोल दिया और अपनी मशीन गन से ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए कबायलियों की खाल में छुपे शत्रुओं को निशाना बनाया। बस एक ही एहसास, बस एक ही मिशन, देश की सुरक्षा और सामने आ रहे दुश्मनों का खात्मा।

दुश्मनों के बलाबल का अब तक सिपाही इम्लियाकुम को काफी कुछ आकलन हो चुका था। शत्रुओं को निशाना बनाते भारतीय सैनिकों ने ये धावा दिन के उजाले में इतनी फुर्ती से अंजाम दिया कि बर्फीले नाले में कई दुश्मन सैनिकों को मौत की नींद सुला दिया। शत्रु खेमों में भगदड़ मचने से कई शत्रु सैनिक दुम दबाकर इधर उधर भागते हुए हमारे सैनिकों का निशाना बने। कई का सफाया भागने के दरमियान हो गया। अब तक सिपाही इम्लियाकुम आओ भी बुरी तरह घायल हो चुके थे, लेकिन दुर्गम परिस्थितियां कब हमारे सैनिकों का रास्ता रोक पाती हैं? मंजिल करीब थी। दुश्मन अपने हथियारों और मोर्टार ठिकानों को छोड़ भाग खड़ा हुआ। बचे सैनिकों को मौत की घाट उतार दिया गया। 20 मिलीमीटर और 21 मिलीमीटर मोर्टार्स के साथ गोला बारूद और हथियारों का एक बड़ा जखीरा, साथ ही कुछ खुफिया दस्तावेज सिपाही इम्लियाकुम ने अपने कब्जे में लिए और दुश्मन के एक बड़े डंप को नष्ट कर दिया। नागालैंड की सरजमीन के एक छोटे से गांव मोकोकचुंग के एक मध्यम वर्गीय परिवार से आए सिपाही इम्लियाकुम आओ ने अपने साहस और पराक्रम से शौर्य की अजीम शान दास्तान लिखी, जिस पर देश को हमेशा गर्व रहेगा।

इस करिश्माई जीत को दर्ज करने के बाद भी इम्लयाकुम ने सेना में कई और सफलताएं हासिल की और लगातार नई ऊंचाइयां छूते रहे। साथियों, 8 जुलाई सन 1999 को कारगिल युद्ध के दौरान 0.4875 को अपने कब्जे में लेने, इस आमने सामने की लड़ाई में कमाल के युद्ध कौशल, सैन्य संचालन क्षमता, सफल कूटनीति और अदम्य साहस के लिए सिपाही इम्लयाकुम आओ को भारत सरकार ने महावीर चक्र से सम्मानित किया।

साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम में शौर्य गाथा की इस कड़ी में आपने सुनी महावीर चक्र से सम्मानित भारतीय सेना के शेर दिल जवान फौजी सिपाही इमलियाकुम आओ की शौर्य गाथा। शोध आलेख और स्वर था संगीता श्रीवास्तव का, प्रस्तुति सहयोग दीपक केसावलेकर और इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, जय।

0: आइए हवा महल में आज सुनते हैं हास्य नाटिका कॉलोनी कल्याण मंडल, लेखक एमपी लेले, निर्देशक स्वतंत्र कुमार ओझा।
1: नौ बजने को आई, आप तो लगता है जैसे घर का एक एक बर्तन पानी से भर लेंगे।
2: जी फरमाइए, क्या कह रहे थे?
1: कुछ नहीं, मैंने कहा जरा जल्दी कीजिए, और भी तो लोग खड़े हैं कुएं पर पानी भरने।
2: जल्दी अब आओ, क्या जल्दी करूं, कुएं का पानी आपके कहने से ऊपर तो नहीं आ जाएगा।
1: हाँ,
2: कि 50 हाथ के बजाय 25 हाथ रस्सी ढीलने से काम बन जाए।
3: अरे ओ पप्पू, अरे पप्पू, मम्मी से कहना वो बाल्टी कोठी में उलट कर ले आए जल्दी से, तो उसे भी लगे हाथ भर दूं।
1: कमाल है, ये तो ऐसे जम गए हैं जैसे कुआं इनके ही बाप दादों का बनवाया हुआ।
4: आ भाई, अब कित कित से झगड़ा मोल लो। इस कॉलोनी का तो यही हाल है, इस कुएं की मोटर खराब हुए आज 4 रोज हो गए।
1: हाँ, यही तो
4: सबसे रोज की इल्लत हो गई है। सुबह उठते ही पहले 2 बाल्टी पानी के लिए कुएं पर समय बर्बाद करो।
1: और क्या, देखिए ना, 1 घंटा हो गया लाइन में खड़ा हूँ मैं।
5: गोपाल जी वर्मा,
1: गोपाल जी,
5: अरे पानी के लिए क्यों लगा रहे?
1: क्या करे साहब,
5: अरे पर आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं, मुझे कहला देते। अरे अपने लिए रोज 10 खींचनी पड़ती हैं, दो आपके घर डलवा देता।
1: क्या बात कर रहे हैं?
5: अरे वैसे एक बात है वर्मा साहब।
1: हाँ सर।
5: अरे कुएं की मोटर खराब होने से सभी को थोड़ी परेशानी जरूर हुई, पर इस बहाने कॉलोनी के लोगों की शक्ल सूरत तो देखने को मिली।

0: वरना
1: सही बात है,
0: वरना यहाँ का कोई भला मानुस अपने तड़पे से कभी बाहर ही नहीं निकलता था। क्यों? ठीक कह रहा हूँ श्रीमान जी?
2: जी बिल्कुल, मजा फरमाते हैं आप जगत भाई। अब मैं वर्मा जी से भी यही बात कह रहा था
1: कि इस कॉलोनी का तो बुरा हाल है,
3: बहुत बुरा।
2: न कोई कोऑपरेशन है, न कोई सोशल एक्टिविटी। वरना देखिए वो पड़ोस की कॉलोनी कुरुक्षेत्र,
0: नाम है कुरुक्षेत्र, पर कैसे भले लोग रहते हैं वहाँ। वरना एक अपनी कॉलोनी है, ये उल्टे काम। अरे कोई किसी को पूछने वाला नहीं है भैया।
1: क्यों माणिकचंद जी, आप तो दफ्तर में क्लब के सेक्रेटरी हैं, कुछ करिए ना इस कॉलोनी के लिए भी। क्यों जगत भाई?
0: अरे राम भजो भाई, राम भजो। अरे इतना ही हर कोई समझे तो दुनिया बदल जाए। पर माणिकचंद जी, ए वर्मा साहब ने जो क्लब की बात कही है, अरे वैसा कुछ करिए ना अपनी कॉलोनी के लिए। अरे कुछ तो राहत मिले इस मनहूसी से, और कुछ नहीं तो कम से कम कुएं की मोटर ही सुधर जाए।
1: ठीक है, हाँ माणिकचंद जी, अब तो आपको कुछ करना ही होगा। अच्छा अब मैं तो चलता हूँ, शाम दफ्तर से लौटने में मिलेंगे।
0: हाँ भैया, मिलो सब जनी और कुछ तय कर लो आफतदारी में, तो सभी का भला है। अच्छा जय गोपाल जी। अब
4: जी हो सिंह साहब, घर पर विराजते हैं क्या?
5: कौन है? ठहर जाओ, उन्हें दरवाजा खोलना।
6: आइए आइए। क्यों जगू बन्ना, कैसे कष्ट कीता भाई?
0: कोई खास बात नहीं, आप तो जानते ही हैं, आज चार रोज से कॉलोनी में नल का पानी बंद है।
6: अच्छा?
0: हाँ, वो कुएं से पानी खींच लाने में बाल बच्चेदार परेशान हो रहे, बस उसी चक्कर में आए हम। और इन्हें तो आप जानते ही होंगे, शुभ नाम है माणिकचंद जी, सेल टैक्स में मुलाजिम है।
6: नमस्कार।
2: नमस्कार साहब, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर।
0: तो सिंह साहब, कॉलोनी के तमाम बाशिंदों की एक मीटिंग करनी है।
2: दरअसल बात ये थी कि पानी की इस दिक्कत का कोई हल निकाला जाए, और फिर लोगों ने चाहा तो कॉलोनी के लोगों का एक क्लब बनाया जाए।
6: क्या कहा, इस कॉलोनी वाले ना क्लब?
2: जी।
6: चलिए साहब, यहाँ से लोग भी हैं इस काबिल, ना किसी में एटिकेट्स है ना मैनर्स, तरह तरह के लोग यहाँ रहते हैं भाई। क्लब के लिए तो कुछ स्टैंडर्ड के लोग हों। खैर जहाँ तक पानी की दिक्कत का सवाल है
2: जी,
6: जगत भाई आप तो जानते हैं हमारे घर पर आजकल पानी की जरूरत ही क्या पड़ती है।
2: अच्छा,
6: सारे बाल बच्चे छुट्टियां में पीलीभीत गए हुए हैं, एक दो बाल्टी बड़ी मुश्किल के नाल जरूरत पड़ती है, नौकर ले आता, अपना तो बस यार काम चल ही जाता है।
2: सो तो ठीक है सिंह साहब, पर सवाल तो पूरी कॉलोनी का है।
6: माफ कीजिए साहब, सानू ना उलझाओ इन ठल्लेबाजों की हरकत है यार। कॉलोनी वालों से अपना वास्ता ही की पड़ता है जो इन झंझटों में बढ़कर अपना अननेसेसरी समय बर्बाद करें हम। अच्छी बात है माणिकचंद जी, अभी मुझे जरा पिक्चर जान दी जल्दी है।
2: अच्छा,
6: फिर और कोई बात होगी तो फिर मिल लेंगे।
2: अच्छा अच्छा, माफ करिएगा। आपका खामखा तकलीफ दी।
6: कोई गल नहीं यार, इसमें तकलीफ कैसी बादशाह। अच्छा नमस्कार।
0: जय गो।
2: देखा जगत भाई आपने, मैंने कहा था ना कि कैसे कैसे स्वार्थी जीव बसते हैं इस कॉलोनी में, क्या खास सोशल एक्टिविटी होगी यहाँ?
0: अजीत छोड़िए माणिकचंद जी, सब कोई एक से थोड़े ही होते हैं। अरे वो भी मान जाएंगे, बड़े काम का आदमी है, और फिर इसी लाइन से निपटाते चलेंगे हर घर को। सुबह से शीघ्रम कल ही रख लो शाम को मीटिंग।
2: अरे पर लोग तो तैयार हों, अब फिर मीटिंग रखोगे कहाँ?
0: और कहाँ, अरे भाई कुएं पर रख लो, मैं लगवा दूंगा दरी।
2: पर
0: अब किस बात की पर परंतु लगा रहे हो माणिकचंद जी? अरे ऐसे थोड़े ही हम हिम्मत हारने वाले, बस अब निकल पड़ो और जो मिले उसे मीटिंग की खबर देते चलो। चलो चलो।
2: खैर आप कहते हैं तो चलो।
0: आज की ये सभा किस लिए बुलाई गई है आप में से हर कोई जानता है। गरज ये कि अपनी कॉलोनी में आज कई रोज से पानी की समस्या हो गई है। कुएं की मोटर बिगड़ने से नल में पानी नहीं आता, और ये एक ही कुआं होने से।
7: ओ वहाँ से आप ये सारे बयान किसकी जानकारी के लिए दे रहे हैं? यहाँ का तो हर बच्चा बच्चा इन बातों को पहले से ही जानता है। अरे भाई हम इनका यहाँ भाषा सुनने थोड़े ही आए हैं, फिजूल वक्त किसके पास रखा है यहाँ पर?
0: भाइयों जरा शांति रखिए, मैं यहाँ भाषण देने खत्म।

0: नहीं खड़ा हुआ हूँ, मैं तो आपके सामने कॉलोनी की दिक्कतों के बारे में।
1: हाँ हाँ, जो कुछ कहना हो जल्दी से कहिए, औरों को भी तो कुछ बातें कहनी होंगी।
0: कमाल करते हैं आप,
1: क्या कमाल
0: कर... खा बीच में ठोके जा रहे हैं। अरे मुझे कुछ कहने तो दीजिए।
1: तो कहिए ना, रोकता कौन है आपको?
0: चुप किया, मैं कहता हूँ बैठ जाइए।
2: अरे, अरे जगत भाई, किससे उलझ रहे हैं आप? ये लोग तो पेशा और पार्टीबाज लोग हैं, आप तो सेठ रूपचंद को सदारत करने के लिए कहिए और बैठ जाइए।
0: हाँ हाँ,
2: वो खुद संभाल लेंगे।
0: हाँ वही। तो भाइयों, मैं इस कॉलोनी के सेठ रूपचंद जी से निवेदन करता हूँ।
1: रूपचंद जी
3: मने घनी खुशी है कि आज थाने मने अठे अध्यक्ष बनाए हो। मने ऐसो काम को रिवाज कोनी है, वास्ते बाबू मानक चंद सभा को मारी तरफ से काम चलावे गो।
2: भाइयों भाइयों, अभी जगत भाई ने कॉलोनी में पानी की दिक्कत का आपके सामने बयान किया है। वो मसला तो खैर अहम है ही, लेकिन कॉलोनी में रहने वाले हम में से कुछ लोगों का ख्याल है कि कॉलोनी की खुशहाली के लिए काम करने वाली एक संस्था बनाई जाए। उपस्थित भाइयों से मैं प्रार्थना करता हूँ कि वे इस बारे में अपनी अपनी राय रखें। जो लोग बोलना चाहते हैं वे अपना नाम वर्मा साहब को नोट करा दें। नुक्कड़ वाले कामेश्वरी प्रसाद आपके समक्ष अपना विद्वत्तापूर्ण भाषण देंगे, आइए कामा बाबू।
4: सज्जनों भाई, सुनो भाई, बड़ी खुशी की बात है कि कॉलोनी के लोग आज यहाँ पहली बार इकट्ठे हुए हैं। भाई हमारे देश में पुराने जमाने से ऐसी सभाओं की परंपरा है और गांव में अब भी चौपाल पर सभाएं होती हैं, लोग बाग हुक्का चिलम पर मिलते हैं। अब ये शहर है तो मैं यहाँ के आयोजकों से इतना कहूँगा कि कम से कम ऐसे अवसर पर आगे से पान पत्ते का इंतजाम करो।
2: भाइयों, अब 7 नंबर वाले श्री घोष बाबू, जिन्होंने इस कॉलोनी में पहला प्लाट बनाया था, आपसे 4 शब्द कहेंगे।
5: देवी हो
6: क्या लोचा, एक खाने तो सब मरद है, मैं तो भूल ही गए। बा बा बा, कॉलोनी में सब मरद लोग रहता है। जा, जा, हाँ तो आप लोगों से आज यहाँ को मुलाकात करके हमको अपूर्व खुशी होता है। बाबू मानिक चंद जब सकाल को हमसे मिला और बोला कि कॉलोनी के वास्ते एक ठो सामाजिक संस्था खोलना चाहता है, तो आम ही बोला खोलो। गुड, किंतु यही शुभ समय हम केवल इतना ही बोल नहीं सकता जी, कॉलोनी में जखन हम प्रथम मकान बनवाने को आरंभ किया ना, तब हमने कुएं से प्लॉट ऑफ दी 400 फीट पाइपलाइन नीचे के खर्चा से डाला था, नीचे के खर्चा से। ऑफ कोर्स उसका उपयोग बाद को सब लोगों ने किया, सही जन्ने यही हमारा दरखास्त कॉलोनी को है जे सामाजिक संस्था हमको कुछ टाका माने रुपया क्षतिपूरण बाबद कर दे। यही चंद कथा बोल के हम अपना भाषण बंद करता है, धन्यवाद।
2: भाइयों शांत रहिए, अब श्री जमुना बाबू जिनसे आप सभी भली भांति परिचित हैं, कुएं की मोटर सुधरवाने के बाबत अपने सुझाव रखेंगे। जमुना बाबू आइए, बोलो बोलो।
7: देखिए आप शायद मानेंगे कि जहाँ तक छोटी मोटी मछली की बात है, आप सब लोगों से इस मामले में मैं बहुत अधिक जानता हूँ, पर अपनी कॉलोनी में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मुझसे कुछ कहने में पता नहीं क्या शर्म लगती है, वरना मैं चाहूँ तो इस मोटर को अभी 1 मिनट में सुधार दूँ, पर मैं अपने आप ऐसा क्यों करूँ? आखिर कोई मुझसे कहे तो।
8: अरे जनाब, इसके कहने की राह देख रहे हो? कोई बंगाल का निमंत्रण ले आएगा आपके?
7: वाह साहब वाह, मैं अपने आप क्यों ऐसे काम में अपनी गर्दन अटका लूं? आखिर सारी कॉलोनी का मामला है। आपको याद होगा पीछे मैंने इस मोटर में एक नया वाशर डाला था, आप मोटर खोलकर देख सकते हैं कि वो अभी भी दोबारा बिगड़ा नहीं होगा, पर यहाँ के लोग बाग किसी का एहसान मानने को तैयार ही नहीं, कहने लगे जमुना लाल जी ने इस काम में बड़े दिन लगा दिए।
8: तो क्या गलत कहा था, जरा सा वाशर डालने के लिए 10 दिन मोटर आपके घर खुली पड़ी थी।
7: आप भी कमाल

0: बिना देर लगे कोई काम अच्छा होता है? इसलिए मैंने पक्का निश्चय कर लिया है कि कॉलोनी का कोई बचने काम हाथ में नहीं लूंगा। धन्यवाद।
1: देखिए भाइयों, अब हमारी कॉलोनी के एक बुजुर्ग कार्यकर्ता श्री शंकर दास जी हमें सामाजिक कार्य के विषय में उपदेश देंगे। आइए आइए शंकर दास जी, आइए।
2: बहुत दिनों से मैं ऐसे मौके की तलाश में ही था कि आप लोगों के सामने अपनी बात रखूं। मुझे खुशी है कि कुएं की मोटर खराब हुई और आपने इस मीटिंग का आयोजन किया।
3: मीटिंग कहीं ऐसी चलती रहेगी कहीं? अरे वो कहीं काम की बात हो रहेगी? अरे मारे दुकान जानो है, अरे टेम वही चाले हो, हिसाब मिलानो है, सारी पूंजी संभालनी, और यो कहीं?
4: हाँ हाँ सेठ साहब, अभी नहीं जाता हूँ। अरे भाई महाराज, ये क्या धूमधाम मचा रखा
1: है? हाँ तो भाइयों, अब मैं हमारे सुनिए, अब मैं हमारे प्रमुख कार्यकर्ता श्री वर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वे प्रस्तावित संस्था की योजना पर प्रकाश डालें।
5: अध्यक्ष महोदय और कॉलोनी वासियों, मेरा सुझाव है कि हम एक संस्था खोलें,
6: बिल्कुल,
5: जिसका नाम कॉलोनी कल्याण मंडल रखा जाए। प्रस्ताव मंजूर है? हाँ तो सुनिए, मंडल के साधारण सदस्य कॉलोनी में रहने वाले सभी परिवारों के मुखिया यानी के गृहपति होंगे। सुनिए, और हर साधारण सदस्य हर महीने 5 रुपए चंदा देगा।
7: 5 रुपए हमारे किस लिए देंगे?
8: कॉलोनी कल्याण मंडल, एमपी लेले की लिखी यह हास्य नाटिका अभी आपने सुनी। निर्देशक थे स्वतंत्र कुमार ओझा। ये झलकी आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति थी।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक्ट में रुकावट करती है
2: जी।
1: या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: चित्रों कार्यक्रम का शेष भाग ब्रेक के बाद।

ब्रेक के बाद कार्यक्रम चित्रलोक में आपका फिर से स्वागत है। आइए अब सुनते हैं काइट्स फिल्म का गाना के की आवाज में। गीत नासिर फराज का है, संगीत राजेश रोशन का।

आइए अब सुनते हैं अमित मिश्रा और शिल्पा राव की आवाजों में ए दिल है मुश्किल फिल्म का गाना। गीत अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखा है, संगीत से सवारा है प्रीतम ने।

0: अकबर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
2: कार्यक्रम के अंत में सुनिए अरिजीत सिंह की आवाज में केदारनाथ फिल्म का गाना, गीत अमिताभ भट्टाचार्य का है, संगीत अमित त्रिवेदी का।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं नवीन सक्सेना। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत पर हमले के बाद पश्चिम एशिया क्षेत्र में तुरंत तनाव कम करने का आह्वान किया। अमरीका ने कहा हॉर्मुज जलडमरू मध्य सभी जहाजों के लिए खुला और अमरीकी सेना नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैयार। वियतनाम में नौका दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीयों के पार्थिव शरीर हो ची मिन शहर पहुंचे, उन्हें जल्द से जल्द भारत लाया जाएगा। उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण में नया इतिहास रचा। चीन में अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 3 स्वर्ण सहित कुल 16 पदक जीते और लंदन में विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष सिंगल्स फाइनल में यानिक सिनर और अलेक्जेंडर जोरेव का मैच जारी। अरब समाचार विस्तार से। भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से मुक्त और बिना रुकावट के नौवहन और वाणिज्य को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है।
1: भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है जबकि 1 लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर द्वारा रणनीतिक जलमार्ग को अगले आदेश तक बंद करने की घोषणा

0: कुछ घंटों बाद अमरीकी सेंट्रल कमान ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य सभी वैध आवागमन चाहने वाले जहाजों के लिए खुला है। ये बयान अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संवाददाता सम्मेलन में ये कहने के बाद आया है कि होर्मुज जलडमरू मध्य वाणिज्यिक जहाजों के लिए खुला है। अमरीकी सेंट्रल कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि जलडमरू मध्य से समुद्री यातायात सुचारू रूप से चल रहा है और अमरीकी सेनाएं ईरानी आक्रामकता, उत्पीड़न, धमकियों और मनमानी घोषणाओं के बावजूद नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैनात हैं। उन्होंने कहा कि ईरान का होर्मुज जलडमरू मध्य पर कोई नियंत्रण नहीं है और सुरक्षित पारगमन मार्ग खुले हैं। इससे पहले ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर हमला करने और उसे आग लगाकर चालक दल को जहाज छोड़ने के लिए मजबूर करने के बाद अमरीका ने ईरान पर नए हवाई हमले किए। वियतनाम में नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन शहर पहुंच गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने बताया कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पार्थिव शरीरों को यथाशीघ्र भारत भेजा जाएगा। हो ची मिन शहर स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास वियतनाम के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है। इस नाव में 32 भारतीय पर्यटकों सहित 36 लोग सवार थे। दुर्घटना में घायल 16 भारतीय स्वदेश लौट रहे हैं। गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति का वियतनाम के फूक्वाक स्थित अस्पताल में उपचार चल रहा है। इस बीच वियतनाम के प्रधानमंत्री ली मिन होंग ने दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और 12 अन्य पश्चिमी तथा एशियाई देशों ने 2016 के मध्यस्थता निर्णय के आधार पर दक्षिण चीन सागर में चीन के व्यापक दावों को अवैध बताया है। इन 14 देशों के संयुक्त बयान में कहा गया है कि विवादित जल क्षेत्र में क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डालने वाली कार्रवाई अस्वीकार्य है। 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के बयान में इसे विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में ऐतिहासिक निर्णय बताया गया है।
1: इन बयानों में 12 जुलाई 2016 को हेग में संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन के तहत स्थापित न्यायाधिकरण के मध्यस्थता निर्णय का जिक्र किया गया है। उन्होंने इस ऐतिहासिक निर्णय को अंतिम और कानूनी रूप से बाध्यकारी बताया है। हालांकि चीन ने इस निर्णय को खारिज करते हुए इसे अमान्य बताया। उसने कहा कि इसका कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं है। चीन ने दोहराया कि वह इसे न तो स्वीकार करता है और न ही मान्यता देता है। एक वर्ष पहले विवादित जल क्षेत्र में तनावपूर्ण गतिरोध के बाद दक्षिण चीन सागर तनाव का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। यहां चीन और फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान के बीच बार बार क्षेत्रीय गतिरोध होते रहते हैं। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देशभर में पौधे लगाने के लिए आज व्यापक अभियान चलाया गया। इसके तहत उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में नया इतिहास रचा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लिंक एक्सप्रेसवे के निकट नीम, पीपल और बरगद के पौधे लगाकर राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया।
2: कार्यक्रम के दौरान जनभवन की नक्षत्र वाटिका में कुल 29 चंदन के पौधे लगाए गए। पौधारोपण अभियान में जनभवन के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ साथ बालिका गृह की लड़कियों ने भी हिस्सा लिया। इस अभियान में कई मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों के साथ साथ स्वयंसेवी संस्थाओं के सदस्यों, विभिन्न विभागों के लोगों, विद्यार्थियों और आम जनता ने भी भाग लिया। ये अभियान राज्य के 75 जिलों में चलाया गया। राज्य ने इस वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर 5 करोड़ से ज्यादा पौधे भी लगाए। उत्तर प्रदेश में इस साल अब तक कुल 40 करोड़ 29 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं। ये अभियान 27 विभागों के आपसी सहयोग से चलाया गया, जिसमें वन विभाग ने 15.5 करोड़ पौधे लगाने का सबसे बड़ा लक्ष्य पूरा किया। लखनऊ से सुशील तिवारी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से रेशमा तिवारी।
0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज इंदौर में एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इसका लक्ष्य राज्य भर में 21 लाख पौधे लगाना है। इस अभियान के अंतर्गत 51,000 वर्षा जल संचयन इकाइयां स्थापित करने की भी योजना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे लगाना बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने से चिंतित है।

जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा जलवायु संकट गहराएगा और ये नुकसान 2100 तक बढ़कर जीडीपी में जो कमी हो रही 20% तक पहुंच सकता है। आप कल्पना कीजिए क्या होगा, यह आर्थिक संकट इतना बड़ा होगा कि इसको मुकाबला करना फिर कठिन हो जाएगा। और इसलिए वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना

0: सभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए। हमारी संवाददाता ने बताया कि गृहमंत्री ने 2029 के चुनाव तक निर्वाचन क्षेत्रों में पौधे लगाने की गतिविधि को 20% तक बढ़ाने की दीर्घकालिक पर्यावरणीय रूपरेखा पर बल दिया।
1: गृह मंत्री ने बरगद, पीपल, जामुन और अर्जुन जैसे स्वदेशी पौधे लगाने पर जोर दिया, जिससे शहर के तापमान में 5% की कमी आएगी और भावी पीढ़ियों के लिए एक रहने योग्य पर्यावरण सुनिश्चित होगा। उन्होंने पर्यावरण स्थिरता में योगदान देने के लिए हर घर और आवासीय सोसाइटी से सोलर रूफटॉप अपनाने का भी आह्वान किया। इस पर्यावरण अभियान के तहत आज 101 नए ऑक्सीजन पार्क का भी उद्घाटन किया गया और उनकी जानकारी देने वाली एक विशेष ई बुक भी जारी की गई। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए AMTS और BRTS के बेड़े में आज 333 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की गई, जिससे अहमदाबाद BRTS देश का पहला 100% इलेक्ट्रिक और शून्य प्रदूषण वाला बेड़ा बन गया है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारत ने चीन के ओर्डोस में खेली जा रही एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपना अभियान 16 पदकों के साथ संपन्न किया। इनमें 3 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत ने आज अंतिम दिन 2 स्वर्ण और 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। भारतीय महिला टीम ने 4x400 रिले में स्वर्ण पदक जीता, जबकि भाला फेंक में भारत के आनंद सिंह ने स्वर्ण और शिवम लोहाकरे ने कांस्य पदक हासिल किया। भारतीय पुरुष टीम ने 4x400 रिले और महिला टीम ने 4x400 मीटर रिले में रजत पदक जीते। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का फाइनल मुकाबला इटली के यानिक सिनर और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव के बीच जारी है। इससे पहले चीन की गुआओ हान्यू ने और फ्रांस की क्रिस्टीना मिलाडेनोवा की जोड़ी ने महिला डबल्स का खिताब जीता। उन्होंने फाइनल्स में कनाडा की गैब्रियला डाब्रोवस्की और ब्राजील की लुइसा स्टेफनी को 6-3, 7-5 से पराजित किया। उधर लंदन के लॉर्ड्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को एकमात्र टेस्ट में 457 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में तीसरे दिन इंग्लैंड ने ताजा समाचार मिलने तक 3 विकेट पर 23 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने अपनी दूसरी पारी 7 विकेट पर 341 रन बनाकर घोषित कर दी। इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 170 रन की बना सकी। सरकार ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से वाहन के ईंधन टैंक की सिमी समस्या संबंधी दावे का खंडन किया है। सोशल मीडिया पोस्ट पर वायरल फर्जी तस्वीर में ऐसा दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को झूठा बताया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि तेल विपणन कंपनियों द्वारा आपूर्ति किया जा रहा E20 पेट्रोल भारतीय मानक ब्यूरो के निर्धारित मानकों के अनुरूप है। निर्धारित मानकों के अनुरूप होने पर इथेनॉल और पेट्रोल पूरी तरह से घुलनशील हैं। नई पीढ़ी के प्रशासनिक और ई गवर्नेंस सुधारों के विषय पर 2 दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन कल से मेघालय के शिलांग में शुरू हो रहा है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा मेघालय सरकार इसका आयोजन कर रखे हैं। ये सम्मेलन देशभर के नीति निर्माताओं, प्रशासकों, प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों और शासन से जुड़े लोगों को एक मंच पर लाएगा, ताकि वो लोक प्रशासन और डिजिटल गवर्नेंस के भविष्य पर चर्चा कर सकें। सम्मेलन में 300 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने निर्माण क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूल तकनीक अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के 172वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसी भी भवन या संरचना के निर्माण के दौरान उसकी मजबूती से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वो भारतीय उद्योग जगत के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भी करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और टिकाऊ विकास पर विशेष ध्यान देते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल कल स्पेन पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 16 तारीख को आकाशवाणी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम का 136

एपिसोड होगा। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800117800 पर कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं। वो नरेंद्र मोदी ऐप या माई गॉव ओपन फोरम के माध्यम से भी ऑनलाइन अपने सुझाव दे सकते हैं। नागरिक 1922 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर और SMS से प्राप्त लिंक का अनुसरण करके सीधे प्रधानमंत्री को अपने सुझाव भेज सकते हैं। आगामी एपिसोड के लिए सुझाव इस महीने की 24 तारीख तक स्वीकार किए जाएंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया मंगलवार को देशभर में लगभग 668 करोड़ रुपए लागत वाली 7 कर्मचारी राज्य बीमा ESI स्वास्थ्य परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत पर हमले के बाद पश्चिम एशिया क्षेत्र में तुरंत तनाव कम करने का आह्वान किया। अमरीका ने कहा होर्मुज जल डमरू मध्य में सभी जहाजों के लिए खुला और अमरीकी सेना नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैयार। वियतनाम में नौका दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीयों के पार्थिव शरीर हो ची मिन शहर पहुंचे, उन्हें जल्द से जल्द भारत लाया जाएगा। उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण में नया इतिहास रचा। चीन में अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 3 स्वर्ण सहित कुल 16 पदक जीते और लंदन में विम्बल्डन टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष सिंगल्स फाइनल में यानिक सिनर और अलेक्जेंडर ज़ेवरेव का मैच जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं किशोर कुमार और अलका याग्निक के गाए कामचोर फिल्म के इस गाने के साथ। गीत इंदिवर का है, संगीत राजेश रोशन का।
1: तुमसे बढ़कर दुनिया में

हर रोज शाम सुनिए सदाबहार हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम छाया गीत, जिसके प्रायोजक है विको वज्रदंती, मजेदार नहीं असरदार, भारत का गम एक्सपर्ट।

आइए अब सुनते हैं किशोर कुमार और अलका याग्निक की आवाजों में पिघलता आसमान फिल्म का गाना। गीत माया गोविंद ने लिखा है, संगीत कल्याण जी आनंद जी का है।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला गाना आत्मा राम फिल्म से है। इसे गाया है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने। गीत विश्वेश्वर शर्मा का है, संगीत है शंकर जयकिशन का।

आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में हम सब उस्ताद हैं फिल्म का गाना। गीत असद भोपाली ने लिखा है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का,

कार्यक्रम के अंत में सुनिए स्वयंवर फिल्म का गाना मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में, गीत गुलजार का है, संगीत राजेश रोशन का।

इस गाने के साथ ही प्रीति शर्मा को कार्यक्रम आपके लिए समाप्त करने की अनुमति दीजिए और आप सुनते रहिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

आप सुन रहे हैं विविध भारती। आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मल।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

बिमल रॉय के पिता हेमचंद्र रॉय की पूर्वी बंगाल के सुआपुर में जमींदारी थी, जो आज के बांग्लादेश का हिस्सा है। बचपन की पढ़ाई लिखाई हुई थाना धामराय के अरमानी टोला स्कूल में। बचपन में बिमल दा को चित्रकारी करने और वायलिन बजाने का शौक था। उन दिनों सुआपुर की जमींदारी में दुर्गा पूजा के मौके पर मंचित किए जाने वाले नाटकों में भी बिमल रॉय भाग लिया करते थे। इन्हीं में से एक नाटक था मिस्र कुमारी। 1957-58 में इसी कथा को बिमल दा ने सेल्यूलॉयड पर उतारा था। ये फिल्म थी यहूदी।

बिमलदास जिन दिनों ढाका के जगन्नाथ कॉलेज में पढ़ रहे थे, पिता हेमचंद्र रॉय का देहांत हो गया। जमींदारी की देखभाल करने वाले मैनेजर ने अमानत में खयानत करते हुए जमीन जायदाद हड़प ली और बिमलदास का परिवार सब कुछ लुटाकर खाली हाथ कोलकाता चला आया।

वक्त की इस बेरहम मार से घायल बिमलदा को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर परिवार के लिए रोजी रोटी जुटाने की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। दक्षिण कोलकाता के चक्रबेलिया रोड पर उन्होंने एक किराए का मकान ले लिया और संघर्ष में जुट गए रोजी रोटी के।

0: बिमलदा रोज ही न्यू थिएटर्स और अन्य स्टूडियोज का चक्कर काटने लगे। बस किराए के पैसे बचाने के लिए पैदल चलते। खैर, न्यू थिएटर्स में बिमलदा संपर्क में आए प्रमथेश बरुआ के, जिन्होंने बिमलदा को फिल्म अधिकार की स्टिल पब्लिसिटी से संबंधित काम की जिम्मेदारी सौंपी। न्यू थिएटर्स में बिमलदा फिर नितिन बोस के सहायक हो गए और न्यू थिएटर्स में ही उन्होंने सिनेमेटोग्राफी के साथ साथ निर्देशन की बारीकियां सीखी। सिनेमेटोग्राफर के रूप में काम करते हुए बिमलदा ने न्यू थिएटर्स की जिन फिल्मों को सेल्यूलॉइड पर उतारा वो थी गृहदाह, माया, मुक्ति, बड़ी दीदी, अभिनेत्री और प्रमथेश चंद्र बरुआ निर्देशित देवदास।
1: दुख के

न्यू थिएटर्स के श्रेष्ठतम छायाकारों में शामिल बिमल दा अपने अनुभवों के आधार पर फिल्म निर्देशन में अपनी प्रतिभा को आजमाना चाहते थे। जल्द ही उन्हें मौका मिला और उन्होंने न्यू थिएटर्स के लिए निर्देशित की फिल्म उदेर पौथे। फिल्म की नामावली में स्थापित नाम थे कंपोजर आरसी बोराल और तत्कालीन बांग्ला रंगमंच के नामी कलाकार विश्वनाथ भादुड़ी के। कई लोगों ने इस फिल्म के बुरी तरह फ्लॉप हो जाने की भविष्यवाणी कर डाली। फिल्मों से जुड़े लोगों और समीक्षकों ने भी इसके विरोध में ही विचार व्यक्त किए। 1 सितंबर 1944 को फिल्म उदेर पौथे कोलकाता के चित्रा सिनेमाघर में रिलीज हुई और इस फिल्म ने न्यू थिएटर्स की पहले की सभी फिल्मों की कामयाबी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। चित्रा सिनेमाघर में यह फिल्म एक वर्ष तक हाउसफुल चली। इसकी लोकप्रियता को देखते हुए इसका हिन्दी संस्करण बनाया गया हमराही। इसके बाद बिमल दा ने जो दो और फिल्में निर्देशित की वो बुरी तरह असफल रहीं। फिल्में थी अनजानगढ़ और मंत्रमुग्धा। न्यू थिएटर्स के लिए उन्होंने आखिरी फिल्म निर्देशित की पहला आदमी, जिसके प्रीमियर के लिए बिमल दा जब मुंबई आए तो दादर के चेतना सिनेमा में उनकी मुलाकात हुई अपने मित्र हितेन चौधरी से, जिन्होंने सावक वाचा और अभिनेता अशोक कुमार को बिमल दा के नाम की सिफारिश की फिल्म निर्देशन के लिए। और इस तरह मुंबई में बिमल दा ने बॉम्बे टॉकीज के लिए पहली फिल्म निर्देशित की मां। यह फिल्म जिस अमरीकी फिल्म से प्रेरित थी वो थी ओवर द हिल्स। लीला चिटनिस को दी गई मुख्य भूमिका और रोमांटिक लीड में अनुबंधित किया गया तब की एक जूनियर आर्टिस्ट मीना कुमारी को, जिनके बदले बाद में श्यामा को रख लिया गया और उनके नायक बनाए गए भारत भूषण। मुंबई में अपनी इस पहली फिल्म के लिए बिमल दा को मिले कोई 25,000 रूपए। इस बीच अभिनेता अशोक कुमार बॉम्बे टॉकीज से नाता तोड़ चुके थे। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की कृति परिणीता के अधिकार उनके पास थे। अशोक कुमार यानी दादा मुनि ने परिणीता के निर्देशन के लिए बिमल दा को अनुबंधित कर लिया। यह फिल्म बेहद कामयाब रही और बिमल दा की प्रतिभा को मिला सम्मान और सराहना।

भारतीय महानगरों में यूरोपीय सिनेमा की चर्चित फिल्में भी दिखाई जाने लगी थी, जिनके माध्यम से भारतीय फिल्मकार परिचित हुए। डी सिका, रोजेलिनी और कुरुसावा जैसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के फिल्मकारों की कृतियों से एक दिन बिमलदा, ऋषिकेश मुखर्जी और एक दो अन्य साथी मुंबई के इरोस थिएटर में फिल्म रोशमोन देखकर बेस्ट की डबल डेकर बस से मालाड लौट रहे थे। सब खामोश थे। ऋषिदा के मन में सवाल उठ रहा था, ऐसी फिल्म हम क्यों नहीं बना सकते। उन्होंने बिमलदा से अपने मन की बात कही। बिमलदा ने फौरन कहा, लिखेगा कौन। खैर, आपसी बातचीत के बाद तय हो गया कि ऐसी एक फिल्म बनाई जाएगी और इस तरह रोशमोन की प्रेरणा से बेस्ट की

0: डबल डेकर बस में जन्म हुआ बिमल रॉय प्रोडक्शंस का। इस बैनर की पहली फिल्म थी दो बीघा जमीन। फिल्म दो बीघा जमीन गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की इसी शीर्षक की एक कविता से प्रेरित थी, जिसे लिखा था सुप्रसिद्ध संगीतकार सलिल चौधरी।
1: गुरु तक तक तक तक तगन तगन गिन गिन रे, जग जग जग जग जगन जगन गिन गिन रे।
2: Gur jag jag, gur jag jag, gur tak tak, gur tak tak, gur jag jag, gur.

सन 1953 में ये फिल्म केवल 4 हफ्तों के लिए मुंबई के मेट्रो थिएटर में रिलीज की गई, जहां इसके प्रीमियर में आए फिल्म इंडस्ट्री के नामी गिरामी सितारे। फिल्म के प्रीमियर के आंखों देखा हाल की रेडियो के लिए कॉम्पेयरिंग कर रहे थे बलराज दत्त, यानी जाने माने अभिनेता सुनील दत्त।

दो बीघा जमीन को हालांकि उदेर पौधे जैसी कामयाबी नहीं मिली, लेकिन इस फिल्म की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हुई। चीन और तत्कालीन सोवियत संघ में भी इस फिल्म को सराहा गया। 1954 में कान फिल्म महोत्सव में इसे सोशल प्रोग्रेस के लिए मिला कार्लोवी वेरी पुरस्कार। ब्रिटिश अखबार मैनचेस्टर गार्जियन और न्यू क्रॉनिकल में भी समीक्षकों ने इस फिल्म की भूरी भूरी प्रशंसा की। निरूपा रॉय और बलराज साहनी के अभिनय, शैलेंद्र के गीतों, सलील चौधरी के संगीत और बिमल दा के निर्देशन ने दो बीघा जमीन को बना दिया हिंदी सिनेमा का एक मास्टरपीस।

लेकिन नौकरी असफल रही। बिमलदा अपने बैनर के भविष्य को लेकर चिंतित हो गए। 1954 में बिमलदा ने अपने दोस्त हितेन चौधरी के लिए फिल्मांकन किया बिराज बहू का। अपने बैनर के लिए बिमलदा ने शरद बाबू के उपन्यास देवदास के अधिकार प्राप्त कर लिए। इसी उपन्यास पर प्रमथेश बरुआ की फिल्म का छायांकन बिमलदा ने ही किया था, जिसमें नायक थे कुंदनलाल सहगल।

अपने बैनर तले निर्मित की जाने वाली फिल्म देवदास में पारो और चंद्रमुखी की भूमिकाओं के लिए विचार किया गया नरगिस और मीना कुमारी के नामों पर, लेकिन चुना गया सुचित्रा सेन और वैजयंतीमाला को। नायक की भूमिका के लिए चुने गए दिलीप कुमार। चुन्नीलाल की भूमिका दी गई मोतीलाल को। गीतकार थे साहिल लुधियानवी और संगीतकार सचिन देव बर्मन।

बिमल रॉय प्रोडक्शंस का भविष्य इस फिल्म के जरिए दांव पर लगा हुआ था। '58 में निर्मित पुनर्जन्म पर आधारित फिल्म मधुमति बेहद कामयाब रही और मधुमति ने बिमल रॉय प्रोडक्शंस को गहरे आर्थिक संकट से निकालकर किनारे पहुंचा दिया।

1959 में निर्मित बिमलदा की फिल्म सुजाता एक और बेहद खूबसूरत और मासूम सी फिल्म है। सुनील दत्त और अभिनेत्री नूतन की जोड़ी के काम को इस फिल्म में बहुत पसंद किया गया। फिल्म सुजाता बिमलदा की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में गिनी जाती है।

0: विमलदा ने 1960 में बनाई फिल्म परख, जो लीक से हटकर फिल्म थी और इसे भी लोगों ने खूब पसंद किया।
1: सजनों

बंदिनी बिमलदा की एक और बेहतरीन कृति है। नूतन, अशोक कुमार और धर्मेंद्र अभिनीत ये फिल्म हिंदी सिनेमा की अनमोल धरोहर है। इसी फिल्म से बतौर गीतकार शुरुआत की थी गुलजार ने।

0: गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की कृति पर विमल दा ने बनाई एक और मर्मस्पर्शी फिल्म काबुलीवाला।
1: मेरे प्यारे वतन है मेरे बिछड़े।

बिमलदा ने बाहर के जिन बैनरों की फिल्में निर्देशित की वो थी अनजानगढ़, मंत्रमुग्धा, जिसमें उनके सह निर्देशक थे सुदीश घटक। इनके अलावा पहला आदमी, माँ, परिणीता, विराज बहु, बाप बेटी और यहूदी। बतौर कैमरामैन और सहायक कैमरामैन उनकी डॉक्यूमेंट्रीज थी हाउ केरोसिन टिन्स आर मेड, ग्रैंड ट्रंक रोड और बंगाल फैमी। बतौर कैमरामैन बिमलदा ने जिन कथा फिल्मों का छायांकन किया उनके नाम हैं मीरा, गृहदाह, नाला थांगल, देवदास, माया, मुक्ति, चंबे दी गली, बड़ी दीदी, अभिनेत्री, उदयर पौथे और हमराही। हमराही उदय पौथेर का ही हिंदी संस्करण थी। बिमलदा की अधूरी फिल्म सहारा को उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी ने चैताली नाम से पूरा किया। बिमलदा एक और फिल्म बनाना चाहते थे, अमृत कुंभेर सौंधाने, लेकिन ये फिल्म एक सपना बनकर ही रह गई। 8 जनवरी सन 1966 को बिमलदा की जिंदगी की रील चलते चलते थम गई। जिंदगी मौत की बंदिनी बन गई। बिमलदा नहीं रहे, लेकिन अपनी महान कृतियों के रूप में वो जो कुछ छोड़कर गए हैं उसके लिए सिनेमा उनका सदैव ऋणी रहेगा।

0: अच्छा यह गीत आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।
1: छाया गीत के प्रायोजक है वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

छाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। मन की उड़ान धरती और आसमान के परे, मन की उड़ान शहरों, समंदरों, पहाड़ों और घाटियों के पार जाती है। खींचा चला जाता रहा मन तुम्हारी तरफ, तुम्हारे आने से बहुत पहले से, बहुत पहले से तुम्हारा था ये मन तुम्हारी तरफ। खींचा चला जाता रहा सदियों से, सदियों के सफर में तुम हो हमारे मन का सुकून।

तुम्हें देखना सिर्फ तुम्हें देखना नहीं है, जब तुम्हें देखते हैं हम तो अपने सपनों को जीते जागते देखते हैं। हम देखते हैं तुम्हारी आंखों की चमक, तुम्हारे बिखरे बालों की अदा, तुम्हारा अपने ख्यालों में खो जाना, तुम्हारा गुनगुनाना, होठों में उंगली दबाकर दूर कहीं देखते।

बुजुर्ग ने जब कहा था लफ्ज बातचीत का सबसे कमजोर जरिया है, तब शायद ये बात समझ में नहीं आई थी। पर वक्त के साथ समझ गए हम कि सब कुछ भाषा में नहीं कहा जा सकता, सब कुछ होठों पर लाना जरूरी नहीं है। एक अदृश्य सा पुल है जो एहसास बनाते हैं, और इससे खूबसूरत कुछ नहीं हो सकता।

तुम्हारे साथ मौसम सुहानी हो जाती है, तुम्हारे साथ बारिश गुनगुनाती है, तुम्हारे साथ ठंड बहुत अलग है और तुम्हारे साथ गर्मियां भी चमकीली हैं। ये बारिश तुम्हारे बिना बस बरसता हुआ पानी है। पानी और बारिश में फर्क होता है।

में सपनों की बारात झूमे।

कहीं कोई आवाज नहीं हुई, कुछ टूटा जरूर पर बेआवाज। दिल टूटने की आवाज नहीं होती, दिल बेआवाज टूटता है।

समय सिकुड़ जाता है कभी और कभी फैल जाता है। विज्ञान इसे भली न माने, पर देखो ना, तुम्हारे साथ के लम्हे कितने कम हैं और तुम्हारे बिना कितना लंबा हो जाता है वक्त। वक्त का ये सिकुड़ना और फैलना बेचैन करता है हमें, पर थाम भी तो नहीं सकते हम वक्त को। ये वो मुसाफिर है जिसे बस चलते ही जाना है।

दुनिया की रीत है, प्यार की राहों में दुनिया अड़चने खड़ी करती है, पर प्यार करने वाले तमाम रास्तों, रस्मों और तरीकों से अलग अपने नए रास्ते तैयार करते हैं। प्यार की राहें बस राहें होती हैं उनके लिए, इन पथरीली राहों पर सुनहरी जिंदगी उनका इंतजार करती है।

गीत इतना ही। इजाजत दीजिए यूनुस खान को, नमस्कार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। भारत ने कहा है कि होर्मुज जल डमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जल मार्गों से मुक्त और बिना रुकावट के नौवहन और वाणिज्य जहाजों को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है।
1: भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर द्वारा रणनीतिक जलमार्ग को अगले आदेश तक बंद करने की घोषणा के कुछ घंटों बाद अमेरिकी सेंट्रल कमान ने कहा कि होर्मुज जल डमरू मध्य सभी वैध आवागमन चाहने वाले जहाजों के लिए खुला है। ये बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संवाददाता सम्मेलन में ये कहने के बाद आया कि होर्मुज जल डमरू मध्य वाणिज्यिक जहाजों के लिए खुला है। अमेरिकी सेंट्रल कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जल डमरू मध्य से समुद्री यातायात सुचारू रूप से चल रहा है और अमेरिकी सेनाएं ईरानी आक्रामकता, उत्पीड़न, धमकियों और मनमानी घोषणाओं के बावजूद नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैनात हैं। ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाकर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। ईरान ने जॉर्डन में एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर भी हमला करने का दावा किया। इस तनाव ने क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक ऊर्जा बाजारों को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। वियतनाम में नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन्ह शहर पहुंच गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने बताया कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरा होने के बाद पार्थिव शरीरों को यथाशीघ्र भारत भेजा जाएगा। हो ची मिन्ह शहर स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास वियतनाम के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है। इस नाव में 32 भारतीय पर्यटकों सहित 36 लोग सवार थे। दुर्घटना में घायल 16 भारतीय स्वदेश लौट रहे हैं। गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति का वियतनाम के फूसकॉक स्थित अस्पताल में उपचार चल रहा है। इस बीच वियतनाम के प्रधानमंत्री ली मिन हंग ने दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। देश भर में पौधे लगाने के लिए आज व्यापक अभियान चलाया गया। इसके तहत उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में नया इतिहास रचा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लिंक एक्सप्रेसवे के निकट नीम, पीपल और बरगद के पौधे लगाकर राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की लागत की विरासत परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। इस अभियान के तहत आज उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज इंदौर में एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया।

इसका लक्ष्य राज्यभर में 21 लाख पौधे लगाना है। इस अभियान के अंतर्गत 51,000 वर्षा जल संचयन इकाइयां स्थापित करने की योजना है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कल एमपीटेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य वैश्विक क्षमता केंद्र, डेटा केंद्र और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग मेघालय सरकार के सहयोग से कल शिलांग में नेक्स्ट जनरेशन प्रशासनिक और ई गवर्नेंस सुधार विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। भारत ने चीन के आउटडोर्स में खेली जा रही एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपना अभियान 16 पदकों के साथ संपन्न किया। इनमें 3 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत ने आज अंतिम दिन 2 स्वर्ण और 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।